माल जोबन छोड़ वैसी रहो पैनन खाया, नानक कमाणा संग जुलिया। नह जाए किरत मिटाया, फाथो मिर्ग जिवै पेख रहन चंद्रायण। सुखो दुख पए नित पाप कमायण, पापा कमाने छड़ै नाही लै चले कत गलावया। हर चंदौरी देख मूठा कूड़ से जा रावया, लभ लोभ अहंकार माता गर भया समायण। नानक मिर्ग अज्ञान बिनसे न मिटाय अवन जायण, के मिठै मख मवा क्यों लय उडारी। हस्ती गर्त पया क्यों तरिया तारी, तरन दुहेला पया खिन मैं खसम चेतना आयो। दुखा सजाई गणत नाही किया अपना पायो, गुजा कमाणा प्रगट होवा ईत उतै खुआरी। नानक सतगुर बाज मूठा मन मुखो अहंकारी, हर के दास जीवे लग प्रभ की चरणी। कंठ लगाए लिए ते ठाकर सरणी, बल बुद्ध ज्ञान ध्यान अपना आप नाम जपाया। सा संगत आप होवा आप जग तराया, राख लिए रखण हारे सदा निर्मल करणी। नानक नरक न जाहे कबहू हर संत हर की सरणी। आसा महला पंजवा, वंज मेरे आलसा हर पास बेनंती। रावो सवा परणा प्रभ संग सोहंती, संगे सोहंती कंत स्वामी दिन सरैणी रावी है। साच तार जीवा प्रपेख हर गुण गावी है। बिरहल जाया दर्श पाया आम्यो दृष्ट सिंचंती, बिनवंत नानक मेरी इच पुन्नी मिले जिस खोजंती।

नानक जिन करतै कारण किया सो जाणै करतार। पौड़ी बिन सतगुर कहने ना पायो, बिन सतगुर कहने ना पाया। सतगुर विच आप रखियो नूं कर प्रगटिया सुनाया, सतगुर मिलिया सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिउ चित लाया, जग जीवन दाता पाया। श्लोक महला पहला। हौं आया हौं गया, हौं जमया हौं मुआ, हौं दिता हौं लया, हौं खटिया हौं गया। हौं विच सचियार कूड़ियार, हौं च पापुन विचार, हौं विच नरक सुरग अवतार। हौं विच हसै हौं विच रोवै, हौं विच भरीऐ हौं विच धोवै, हौवें जाति जनसी खोवै। हौं विच मूर्ख हौं विच सियाणा, मोख मूत की सार ना जाना। हौं विच माया हौवें छाया, हौं मैं कर कर जंतो पाया। हौं मैं बूझै तां दर सूझै, ज्ञान में हूणा कथ कथ लूझै।

दरवाटे ऊपर खर्च मंगा जब देता खाहे दीवाने को कल में का हमा तुमा मेल दर ले लेखा पीड़ छुट नान का ज्यो तेल पौड़ी आपे ही करना की ओ कल आपे ही तै तारी है देखे किता अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो विसारी है अपना हथी अपना आपे ही काज सवारी है सलोक महला दूजा एक नहीं आस की दूजे लगे जाए नानक आसे कांडी है सद ही रह समाए चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा होए आसक एहो नाया की है जे लेखे वरतै सोए महला दूजा सलाम जवाब दोवें करे मुंडो कुथा जाए नानक दोवें कूड़िया थाए ना काई पाए पौड़ी जित सेवे है सुख पाई है सो साहिब सदा संभाली है जित कीता पाई है अपना सा काल बुरी क्यों काली है मंदा मूल ना की चई दे लम्मी नजर निहाली है ज्यो साहिब ना लाहारी है ते वेहा पासा टाली है किछ लाहे उपर काली है सलोक महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले गर्भवाद गल्ला करे कनेरिया खसम ना पाए साध आप गवाए सेवा करे ता किश पाए मान नानक जिसनो लगा तिस मिले लगा सो प्रवान महला दूजा जो जी

को निर्जास वस्तु अंदर वस समावै दूजी होवै पास साहिब सेती हुक्म ना चलै कही बने अरदास कूड़ कमाणे कूड़ो होवै नानक सिफत विगा।

नानक सेवक कंडीय जे सेती खसम समाए पौड़ी नानक अंत न जापनी हर ताके पारा वार आप कराए साखती फिर आप कराए मार। एक ना गली जंजीरिया एक तुरी चढ़े बिसियार आप कराए करे आप हों कैस्यों करी पुकार नानक करना जिन किया

तुर छोड़ी तन्ने पाए, नानके की बाहरी होर दूजी नाहीं जाए। सो करे जेत सैर जाए सुध एक ओंकार, सत नाम करता पुरख निरभाव निर्वैर अकाल मूर्त, अजूनी सह भंगुर प्रसाद, राग आसा बाणी भगतां की, कबीर जियो नाम देव जियो रविदास जियो आसा श्री कबीर जियो, गुरचरण लाग हम बिनवता पूछत कह जियो पाया, कवन काज जब उपजै बिन सह कहो मोहे समझाया, देव करो दया मोहे मार्ग लावो, जित पै बंधन टूटै जन्म मरण दुख फेड़ कर्म सुख, जी जन्म ते छूटै रहाओ, माया फास बंद नहीं फारै आर मन सुन ना लूके, आपा पद निर्वाण ना चीके चीनिया इन बिद अप्यो ना चूके, कही ना उपजै उपजी जाणै भाव अभाव बिहूणा, उदय अस्त की मन बुद्ध नासी तो सदा सहज लिवलीणा, ज्यों प्रतबिंब बिंब कौ मिली है उदक कुंभ बिगराना, कहो कबीर ऐसा गुण भ्रम भागा तौ मन सुन समाना, आसा गज साडे तै तै तोतिया तेहरे पायन तग, गली जिना जप मालिया लोटे हख ने बग, ओए हर के संतना आखिया बानारस के ठग, ऐसे संत नामो को पावे डाला स्यों पेडा गटकावे, रहाओ बसन मांज चरावे ऊपर काठी तोए जलावे, बसदा खोद करे दोए चूले सारे मान सखावे, ओए पापी सदा फिरे अपराधी मुखों परस कहावे, सदा सदा फिरे अभिमानी सगल कुटुंब डुबावे, जित को लाया तित ही लागा तैसे कर्म कमावे, कहो कबीर जे सतगुर भेटै पुनरप जन्म ना आवै, आसा बाप दिलासा मेरो कीना से सुखाली मुखे अमृत दीना, तिस बाप कहो क्यों मनो विसारी आ गै गया ना बाजी हारी, मुई मेरी माई हों खरा सुखाला पैरो नहीं दगली लगे ना पाला, रहाओ बल तिस बापै जिन हों जाया पंचा ते मेरा संग चुकाया, पंच मार पावा तल दीने हर सिमरन मेरा मन तन पीने, पिता हमारो वड गोसाई तिस पिता पह हों क्यों कर जाई, सतगुर मिले ता मार्ग दिखाया जगत पिता मेरा मन पाया, हों पूत तेरा तू बाप मेरा एक ठाहर दुहां बसेरा, कहो कबीर जन एक को बुझिया गुरप्रसाद मैं सबके सूझिया, आसा एकत पत्र पर उरकट कुरकट एकत पत्र पर पानी, आस पास पंच जोगिया बैठे बीच नगट दे रानी, नगटी को ठनगन बाडाडू किना बबेकी काटी तू, रहाओ सगल माहे नगटी का वासा सगल मार अवहेरी, सगलिया की हों बहन भाण जी जिन्हें बरी तिश्चेरी, हमरो परता बड़ो बबेकी आपे संत कहावे, ओह हमारे माथे कायम और हमरे निकट न आवे, नाको काटी कानो काटी काट कूट कै डारी, कहो कबीर संतन की बैरनो तीन लोक की प्यारी, आसा जोगी जति तपी सन्यासी बहुत तीर्थ भ्रमना, लुंजत मुंजत मोन जटा तार अंत तउ मरना, ताते सेवी अले रामना रसना राम नाम हित जाके, कहां करे जमना, रहाओ आगम निर्गम ज्योतक जाने बहु बहु ब्याह करना, तंत मंत्र सब औखद जाने अंत तउ मरना, राज भोग अरछतर सिंहासन बहु सुंदर रमना, पान कपूर सुबासक चंदन अंत तउ मरना, वेद पुराण सिमरत सब खोजे कहू ना उबरना, कहो कबीर यो राम मैं जंपो मेट जन्म मरना।

पहर चोलना गधा नाचै पैसा भगत करावै। राजा राम ककरिया बरे पकाए कने बुजन हार खाए रहाओ। बैठ सिंह कर पान लगावै कीस गलौरे लियावै कर कर मुसरी मंगल गावै कछुआ शंख बजावै। बंस को पूत बियाहन चलिया सोए ने मंडप छाए रूप कन्या सुंदर बेदी ससै सिंह गुण गाए। कहत कबीर सुनोरे संताओ कीटी पर्वत खाया कछुआ कह अंगार पे लोरो लूकी शब्द सुनाया। आसा बटुआ एक बहत्तर आधारी एको जिसे द्वारा नवे खंड की प्रथमी मांगे सो जोगी जग सारा ऐसा जो

दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा श्री कबीर जियो के चौपदे एक तुके सनक सनंद।

तन कर मटकी मन माहे बिलोई, इस मटकी मैं शब्द संजोई। हर का बिलोबना मन का बिचारा, गुरप्रसाद पावै अमृत धारा। कहो कबीर नदर करे जे मीरा, राम नाम लग उतरे तीरा। आसा बाती सुकी तेल निखूटा, मंदल ना बाजै नट पै सूता। बुझ गई अगन नानक से धुआं, रव रहया एक अवर नहीं दुआ। रहाओ टूटी तंत ना बजै रबाब, भूल बिगारियो अपना काज। कथनी बदनी कहन कहावन, समझ परी तो बिसरियो गावन। कहत कबीर पंच जो चूरे, तिनते नाही परम पर दूरे। आसा सुत अपराध करत है जेते, जननी चीत ना राख स्थेते। रा मैया हो बारक तेरा, काहे ना खंड से अवगन मेरा। रहाओ जे अत क्रोप करे करताया, ता पी चीत ना राख समाया। चिंत पवन मन परयो हमारा, नाम बिना कैसे उत्तर सपारा। देह बिमल मत सदा शरीरा, सहज सहज गुण रवै कबीरा। आसा हज हमारी गोमती तीर, जहां बसै पीतंबर पीर। वाहो वाहो क्या खूब गावता है, हर का नाम मेरे मन पावता है। रहाओ नारद सारद करै खवासी, पास बैठी बीबी कबला दासी। कंठे माला जेवा राम, सहंस नाम लै लै करो सलाम। कहत कबीर राम गुण गावो, हिंदू तुर्क दो समझावो। आसा श्री कबीर जियो के पंच पदे नौ, दो तुके पंज एक ओंकार। सतगुर प्रसाद पाती तोरै मालनी, पाती पाती जियो। जिस पाहन कौ पाती तोरै, सो पाहन निर्जियो। पूली मालिनी है ओ, सतगुर जागता है दे ओ। रहाओ ब्रह्म पाती बिसंडारी, फूल शंकर दे ओ। तीन देव प्रतख तोरै, करै किसकी से ओ। पाखान गढ़ कै मूर्त कीनी, दे कै छाती पाओ। जे एह मूर्त साची है, तो गण नहारे खाओ। पात पहत यार लापसी, कर करा का सार। भोग नहारे भोगया इस मूर्त के मुखशार। मालन पुली जग पुलाना, हम पुलाने नाहे। कहो कबीर हम राम राखे, कृपा कर हर राय। आसा बारह बरस बालपन बीते, बीस बरस कष्ट अपना कियो। तीस बरस कष्ट देवन पूजा, फिर पछताना बिरद पयो। मेरी मेरी करते जन्म गयो, सायर सोख भुजंग बलियो। रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे, लूणे खेत हथवार करे। आयो चोर तुरंत ले गयो, मेरी राखत मुक्त फिरे। चरण शीस कर कंपन लागे, नैनी नीर आसार बह। जेहवा बचन शुद्ध नहीं निकसै, तबरे धर्म की आस करे। हर जियो कृपा करै लिव लावै, लाहा हर हर नाम लियो। गुर प्रसादी हर तन पायो, अंते चलद्या नाल चलियो। कहत कबीर सुनो रे संतो, अंतन कछुऐ लै ना गयो। आई तरब गोपाल राय की, माया मंदिर छोड़ चलियो। आसा काहू दीने पाठ पटंबर, काहू पलंग निवारा। काहू गरी गोदरी नाही, काहू खान परारा। अहे रखवाद ना।

आओ बजाम नहारो कहां गयो जनेहो मंदर कीना साखी शब्द सुरत नहीं उपजै खिंच तेज सब लीना श्रवणन बिगल पय संग तेरे इंद्री का बल थाका चरण रहे कर टर्क परे है मुखो नानक सहबाता थाके पंच दूत सब तस कर आप अपने भ्रमते थाका मन कुंचर और थाका तेज सूत धर रमते मृतक पय दस बंद छूटे मित्र भाई सब छोरे कहत कबीरा जो हर त्यावै जीवत बंधन तोरे आसा एक तुके चार सरपनी ते ऊपर नहीं बलिया जिन ब्रह्मा बिशन महादेव शलिया मार मार सरपनी निर्मल जल पैठी जिन त्रिभवन डसियले गुर प्रसाद डीठी रहाओ सरपनी सरपनी क्या कहो पाई जिन साच पछानिया तिन सरपनी खाई सरपनी ते आन शूश नहीं अवरा सरपनी जीती कहां करे जमरा एह सरपनी ताकी कीती होई बल अबल क्या इस्ते होई एह बस्ती ता बस्त शरीरा गुरप्रसाद सही तरे कबीरा आसा कहां स्वान कौ सिमरत सुनाए कहां सागत पै हर गुण गाए राम राम राम रमे रम रही है सागत स्यो भूल नहीं कही है रहाओ कौआ कहां कपूर चराए कह बिसियर कौ दूध पी आए सत संगत मिल बिबेक बुद्ध होई पारस परस लोहा कंचन सोई सागत स्वान सब करे कराया जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया अमृत लै लै नीम सिंचाई कहत कबीर ओआ को सहज ना जाई आसा लंका सा कोट समुंद सी खाई तेह रावण कर खबर ना पाई क्या मांगो कि थिर ना रहाई देखत नैन चल्यो जग जाई रहाओ एक लख पूत सवा लख नाती तेह रावण कर दिया ना बाती चंद सूरज जाके तप्तर सोई बैसंतर जाके कपरे धोई गुरमत रामै नाम बसाई आश्चर रह ना कथू जाई कहत कबीर।

एक अचंभव सुनो तुम भाई, देखत सिंह चरावत गाई रहाओ। जल की मछली तरवर ब्याई, देखत कुतरा लै गई बिलाई। तले रे बैसा ऊपर सूला, तिसके पेड़ लगे फल फूला। कोरे चार भैंस चरावन जाई, बाहर बैल गोन कर आई। कहत कबीर जो इस पद बूझे, राम रमत ते सबके सूझे। बाईस चौपदे तथा पंच पदे, आसा श्री कबीर जियो के। ते पदे अठ दो तुके सत, एक तुका एक। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, बिंद ते जिन पिंड किया, अगन कुंड रहाया। दस मास माता उधर राखे।

राम राय सो दूलो पायो अस बड़ भाग हमारा। सोर नार मुन जन कौत के आए कोट ते तीसो जाना। कह कबीर मोए ब्याह चले है पुरख एक भगवाना। आसा सास की दुखी ससुर की प्यारी जेठ के नाम डराओ रे। सखी सहेली ननद गहेली देवर कै ब्रह जराओ रे। मेरी मत बौरी मैं राम बिसारे ओ किन बिद रहन रहो रे। सेजा रम तो नैन नहीं पेखो एहो दुख का सौ कहो रे रहाओ। बाप साहब का करै लड़ाई माया सदमतवारी। बड़े भाई कै जब संग होती तबो ना प्यारी। कहत कबीर पंच को झगरा जगरत जन्म गवाया। झूठी माया सब जग बांधया मैं राम रमत सुख पाया। आसा हम कर सूत तने नित ताना कंठ जने उत मारे। तुम तो वेद पढ़ो गायत्री गोविंद हृदय हमारे। मेरी जेहबा बिसन नारायण हृदय बसै गोविंदा। जम द्वार जब पूस बवरे तब क्या कैस मुकंदा रहाओ। हम गोरु तुम ग्वार गुसाई जन्म जन्म रखवारे। कबहू ना पारो तार चरायो कैसे खसम हमारे। तू बामन मैं का सीत जुल्हा बूजो मोर ज्ञाना। तुम तो जाचे भूपत राजे हर सौ मोर त्याना। आसा जग जीवन ऐसा सुपने जैसा जीवन सुपन समान। साच कर हम गांठ दीनी छोड़ परम निधान। बाबा माया मोह हित कीन जिन ज्ञान रतन हरलीन रहाओ। नैन देख पतंग उर्जै पस ना देखै आग। काल फासना मुग्ध चेतै कनक कामन लाग। कर विचार बिकार पर हर तरन तारन सोए। कह कबीर जग जीवन ऐसा दुती नाही कोए। आसा जो मैं रूप किए बहु तेरे अब फुन रूप ना होई। तागा तंत साज सब थाका राम नाम बस होई।

तृष्णा गागर फूटी, काम चोलना पया है पुराना, गया परम सब छूटी। सर्वभूत एक कर जानिया, चूके बाद बिबादा, कह कबीर मैं पूरा पाया, पहे राम प्रसादा। आसा रोजा तरह मनावे अल्लाह, स्वादत जी संघार है, आपा देख अवर नहीं देख, काहे कौ चख मार है। काजी साहेब एक तो ही मैं तेरा, सोच विचार ना देख, खबर ना करे दीन के बौरे, ताते जन्मया लेख रहाओ। साज कते बखाने अल्लाह, नार पुरख नहीं कोई, पड़े गुणे नाही किश बौरे, जो दिल में खबर ना होई, अल्लाह गैब सगल घट पीतर, हृदय लिहो बिचारी। हिंदू तुर्क दुहू मह एक, कह कबीर पुकारी, आसा ते पदा एक तुगा,

आराम बड़े मैं तनक लहोरिया रहाओ। तन पर एक संग बसेरा, सेज एक पै मिलन दुहेरा। तन सुहागन जो पी पावै, कह कबीर फिर जन्म न आवै। आसा श्री कबीर जियो के दो पदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हीरा हीरा बेद पवन मानो, सहजे रहा समाई। सगल जोत इन हीरे बेदी, सतगुर बचनी मैं पाई। हर की कथा अनाहद बानी, हंस होए हीरा ले पछानी। रहाओ कह कबीर हीरा अस देखियो, जग में रहा समाई। गुप्ता हीरा प्रगट पायो, जब गुरगम दिया दिखाई। आसा पहली क्रूप कुजात को लखनी, साहुरे पे ये बुरी। अब की स्वरूप सुजान सुलखनी, सहजे उदर तरी। भली सरी मुई मेरी पहली बरी, जुग जुग जीवाओ मेरी अब की तरी। रहाओ कहो कबीर जब लहरी आई, बड़ी का सुहाग टरयो। लहरी संग पहिया मेरा, जेठी और तरयो। आसा मेरी बहुरिया को तनिया नाओ, ले रखियो राम जनिया नाओ। इन मुंडियां ने मेरा घर तुंदरावा, बिटवे राम रमऊआ लावा। रहाओ कहत कबीर सुनो मेरी माई, इन मुंडियां ने मेरी जात गवाई। आसा रहो रहो री बहुरिया, कुंगट जिन काड अंत की बार लहगी ना याड। रहाओ कुंगट कांड गई तेरी आगे, उनकी गैल तुहे तो जन लागे। कुंगट काडे की यह बड़ाई, दिन दस पांच बहु पले आई। कुंगट तेरो तो पर साच, हर गुण गाए कूद अर नाच। कहत कबीर बहु तब जीतै, हर गुण गावत जन्म बतीतै। आसा करवत भला ना करवट तेरी, लाग गले सुन बिनती मेरी। हौ वारी मुख फेर प्यारे, करवट दे मोको काहे कौ मारे। रहाओ जौ तन चीरा अंग ना मोरो, पिंड पर तो प्रीत ना तोरो। हम तुम बीच भयो नहीं कोई, तुम्हें सो कंत नार हम सोई। कहत कबीर सुनो रे लोई, अब तुमरी प्रतीत ना हुई। आसा कोरी को कहूं मर्म ना जाना, सब जग आनत ना होता ना। रहाओ जब तुम सुन ले वेद पुराना, तब हम इतनक पसरे ताना। तरने आकाश की कर गए बनाई, चंद सूरज दो साथ चलाई। पाई जोर बात एक कीनी, तै तांती मन माना। जो लाहे कर अपना चीना, कट ही राम पिछाना। कहत कबीर कार गह तोरी, सूते सूत मिलाए कोरी। आसा अंतर मैल जे तीर्थ नावै, तिस बैकुंठ ना जाना। लोकपतीने कछू ना होवै, ना ही राम एना।

नित नित मेंढकन आवै, जैसे मेंढक तैसे ओए नर, फिर जोनी आवै। मनो कठोर मरै बानारस, नरक ना बांचिया जाई। हर का संत मरै हाड़म्बै, ता सगली सैन तराई। दिन सनारैन, वेद नहीं शास्त्र।

की एक अनेक व्यापक पूरक जत देखो तत सोई माया चित्र विचित्र विमोहत बिरला बूझै कोई। सब गोबिंद है सब गोबिंद है गोबिंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत सहंस जैसे ओत पोत प्रभ सोई रहाओ। जल तरंग अरफेन बुदबुदा जल ते भिन्न ना होई। एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन ना होई। मिथ्या भरम अर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया। सुकृत मनसा गुरु उपदेसी जागत ही मन मानिया। कहत नाम देव हर की रचना देखो हृदय विचारी। घट घट अंतर सर्व निरंतर केवल एक मुरारी। आसा आनी ले कुंभ भराई ले उदक ठाकर कौ स्नान करो। बयालीस लख जी जल मैं होते बीठर पहला काय करो। जतर जाओ तत बीठल पहला महा

आसा सेख फरीद जियो की बाणी एको अंकार सतगुर प्रसाद दिलो मोहब्बत जिन सही सचिया जिन मन होर मुख होर से कांडे कचिया रते इश्क खुदाए रंग दीदार के विसरिया जिन नाम ते पोए भारतीय रहाओ आप लिए लड़ लाए दर दर वेस से तिन धन जने दी माओ आए सफल से पर्वत गारिया पार अगम बेअंत तू जिन्ना पछाता सच चुम्मा पैर मूह तेरी परै खुदाए तू बख्शंदगी सेख फरीद खैर दीजै बंदगी आसा बोलै सेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे एहो तन हो सी खाक निमाणी गौर करे आज मैं लावा सेख फरीद टाक मकुंजड़िया मनोम चिंदड़िया रहाओ जे जाना मर जाई है घुम ना आई है झूठी दुनिया लग ना आप वंजाई है बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए जो गुर दसै वाट मुरीदा जोली है शैल लगंदे पार गोरी मन तीरिया कंचन वन्ने पासे कलवत चीरिया सेख है आती जग ना कोई थिर रया जिस आसन हम बैठे केते बैस गया कतक कूंजा चेत डाओ सावन बिजलियां सियाले सोहंदियां पिर गल बाहड़ियां चले चलन हार विचारा ले मनो गंडें दिया शे मां तुड़न दिया हिक खिनो जिमी पुछे असमान फरीदा खेवट किन गए जालन गोरा नाल उलामे जी सहे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाव निरवैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंग गुर प्रसाद राग गुजरी महला पहला चौप दे कर पहला तेरा नाम करी चन नाठिया जे मन उरसा होए करनी कुंगू जे रलै कट अंतर पूजा होए पूजा कीचै नाम ते आई है बिन नावे पूज ना होए रहाओ बाहर देव पखाली है जे मन तो वै कोए झूठ लह जियो मन जी है मोख पयाना होए पशु मिले चंगे आईया खड़ खावे अमृत दे नाम विहुणे आदमी त्रिग जीवन कर्म करे नेड़ा है दूर ना जाने आओ नित सारे संभाले जो देवै सो खावना कहो नानक साचा है गुजरी महला पहला नाभ कमल ते ब्रह्मा उपजे वेद पड़े मुख कंठ सवार ताको अंतना जाई लखना आवत जात रहे गोबार प्रीतम क्यों बिसरे मेरे प्राण आधार जाकी भगत करे जन पूरे मुन जन सेवै गुर विचार रहाओ राव सस दीपक जाके त्रिपवन एका ज्योत मुरार गुरमुख होए सो अहिरस निर्मल मन मुख रहने आधार सिद्ध समाध करै नित झगरा दोह लोचन क्या हेरै अंतर ज्योत सब तुन जागै सतगुर चगर नवेरै सुर नर नाथ बेअंत जोनी साचै महल अपारा नानक सहज मिले जग जीवन नदर करो निस्तारा राग गुजरी महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्रिग अवेहा जीवना जित हर प्रीत ना पाए जित कम हर विसरै दूजे लगे जाए ऐसा सतगुर सेवी मना जित सेवे है गोविंद प्रीत उपजै अवर विसर सब जाए हर सेती चित गह रह जरा का पौ ना हो वही जीवन पदवी पाए रहाओ
ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿਉਂ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਉਪਜਿਆ, ਵੇਖ ਜੈਸੀ ਭਗਤ ਬਣੀ, ਆਪ ਸੇਤੀ ਆਪ ਖਾਇਆ, ਤਾਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵਾ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਈ, ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੂੜੈ ਕੀ ਪਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੈ, ਤਾਂ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਿਆ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਗੁਰ ਆਗੈ ਜੀਉ ਧਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਚਿਤ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਹਰ ਕੀ ਤੁਮ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ। ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਈਐ, ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਜੀ। ਹਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੀਤ ਹੈ, ਹਰ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭੀਜੈ, ਇਹਾ ਸੇਵ ਬਣੀ ਜੀਓ ਰਹਾਓ। ਹਰ ਮੇਰਾ ਸਿਮਰਤ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਹਰ ਕੀ ਮੈਂ ਭੂਖ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੈ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਸਾਕ ਅੰਤ ਹੋਏ ਸਿਖਾਈ। ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਰਾਸ ਕੂੜੀ ਹੈ, ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਧਨ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਚਾਲੈ, ਜਹਾਂ ਹਉ ਜਾਉ ਤਹਿ ਜਾਈ। ਸੋ ਝੂਠਾ ਜੋ ਝੂਠੇ ਲਾਗੇ, ਝੂਠੇ ਕਰਮ ਕਮਾਈ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਹੋਵਾ, ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਜੁਗ ਮਾਹੇ

हर का तन मनो सब हर कै वस है शरीर रहाओ। भगत जना को सरदा आप हर लाई, विचे ग्रस्त उदास रहाई। जब अंतर प्रीत हर स्यों बन आई, तब जो किश करे सो मेरे हर पर पाई। जित कार काम हम हर लाए, सो हम करै जो आप कराए। जिनकी भगत मेरे प्रभ भाई, ते जन नानक राम नाम लिवलाई। गुजरी महला पंजवा, चौप दे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काहे रे मन चितवै उद्दम, जा अहर हर जियो परया। सैल पत्थर मैं जनते उपाए, ता का रिजका गह कर तरिया। मेरे माधव जी सत संगत मिले से तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया। सूके कष्ट हरिया रहाओ, जनन पिता लोग सुत बनता। कोई न किसकी तरिया, सिर सिर रिजक सवाहे ठाकरो। काहे मन पौ करिया, उड़ै उड़िया वैसै कोसा। तिस पाछै बचरे शरिया, उन कमन खलावै कमन चुगावै। मन मैं सिमरन करिया, सब निधान दस अठ सिधान। ठाकुर कर तल धरिया, जन नानक बल बल सदबल जाइयै। तेरा अंत ना पारा वरिया। गुजरी महला पंजवा, चौप दे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। किरिया चार करै खटकर्मा, इतरा ते संसारी। अंतर मैल न उतरै हो मैं, बिन गुर बाजी हारी। मेरे ठाकर रख ले वो कृपा धारी, कोट मदे को विरला सेवक। होर सगले व्यवहारी रहाओ, शास्त वेद सिमरत सब सोदे। सब एका बात पुकारी, बिन गुर मुक्त ना को उपावै। मन वेखो कर बिचारी, अठ साठ मज्जन कर इसनाना। भ्रम आए तर सारी, अनक सोच करै दिन राती। बिन सतगुर अंधियारी, धावत धावत सब जगत आयो।

सास सास तेरा नाम सुमारा तुम ही कौ प्रभ आही, नानक टेक पई करते की होर आस बेडानी लाही। गुजरी महला पंजवा कर कृपा अपना दर्श दीजै, जस गावो निस्यार पोर केस संग दास पगचारो एह मनोरथ मोर। ठाकुर तुझ बिन बिया ना होर, चित चित वो हर रस न्यारा दो निरखो तुमरी ओर रहाओ। दयाल पुरख सर्व के ठाकर बिनो करो कर जोर, नाम जपै नानक दास तुमरो उदर से आखी फोर। गुजरी महला पंजवा ब्रह्म लोक अर रुद्र लोक, आई इंद्र लोक ते ताए साध संगत को जोहे ना सकै मल मल धोवै तो पाए। अब मोहे आए परयो शरणाए, गुहज पाव को बहुत पर जा रे मोको सदगुर दियो है बताए रहाओ। सिद्ध साधक अर जख किन्नर नर रही कंठ उर जाए, जन नानक अंग किया प्रभ करता है जा कै कोट ऐसी दास आए। गुजरी महला पंजवा आप जस मिटै होवै जग कीर्त, उंदर गै बैसन पाई है जम की त्रास नास होए खिन मैं, सुख अंध सेती कर जाई है जाते काल न बिरथी जाई है। आठ पहर सिमरो प्रभ अपना मंत्र सदा त्याई है रहाओ। मोहे सरन दीन दुख भंजन तू देह सोई प्रभ पाई है, चरण कमल नानक रंग राते हर दास है पैज रखाई है। गुजरी महला पंजवा विश्वंपर।

आओ मात पिता सुत मीत भाई तिस बना नहीं कोए ईत ऊत जी नाल संगी सर्व रव्या सोए कोट जतन उपाव मिथ्या कछ न आवै काम शरण साधु निर्मला गत होए प्रभ कह नाम आगम दयाल प्रभु ऊचा शरण साधु जोग तिस प्राप्त नानका जिस लिखिया तुरसन जोग गुजरी महला पंजवा आपना गुण सेव सदी रमह गुण गोबिंद सास सास याराद हर हर लह जाए मन की चिंद मेरे मन जाप प्रभ का नाओ सुख सहज आनंद पावे मिली निर्मल थाओ रहाओ साध संग उधार एहो मानो आठ पहरे आराद काम क्रोध अहंकार बिनसै मिटै सगले उपाद अटाला छेदा भेद स्वामी सरन ता की आओ चरण कमल आराद हृदय एक सिउं लिव लाओ पार ब्रह्म प्रभ दया धारी बख्श लीने आप सर्व सुख हर नाम दिया नानक सो प्रभ जाप गुजरी महला पंजवा गुर प्रसादी प्रभ ते आया गई शंका टूट दुख नेरा।

जाप ताप अनेक करनी सफल सिमरत नाम कर अनुग्रह आप राखे पहे पूर्ण काम। सास सास ना बिसर कब हूं ब्रह्म प्रभ समरथ गुण अनक रसना क्या बखाने अगंत सदा अकथ। दीन दर्द निवार तारण दयाल कृपा करण अटल पदवी नाम सिमरण दृढ़ नानक हर हर शरण। गुजरी महला पंजवा अहम बुद्ध बहु सगन माया महा दीर्घ रोग हर नाम औखद गुर नाम दीनो करण कारण योग। मन तन बांछिया जन तूर कोट जन्म के लह पातक गोविंद लोचा पूर रहाओ। आदि अंते मध्य आसा कुकरी बिकराल गुर ज्ञान कीर्तन गोविंद रमण काटी है जमजाल। काम क्रोध लो मो मूठे सदा आवा गवन प्रभ प्रेम भगत गोपाल सिमरन। मिटत जोनी पवन मित्र पुत्र कलत्र सुर रिद तीन ताप जलंत जप राम रामा दुख निवारे मिले हरजन संत। सर्ब बिद भ्रम ते पुकारे कत नाही छोट हर चरण सरन अपार प्रभ के दृढ़ गही नानके ओट। गुजरी महला पंजवा कर चौथा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आराध श्री धर सफल मूर्त करण कारण योग गुण रमण श्रवण अपार महिमा फिर ना होत बियोग। मन चरण अरबिंद उपास काल कलेश मिटंत सिमरन काड जम दूत फास रहाओ। सत्र दहनो हर नाम कहनो अवर कछ ना उपाओ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुआओ। गुजरी महला पंजवा तू समरथ शरण को दाता दुख भंजन सुख राए जाहे कलेश मिटे पै परमा निर्मल गुण प्रभु गाए। गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाओ रहाओ। सतगुर सेव लगे हर चरनी वड़े भाग लिव लागी कवल प्रकाश पय साध संगे दुर्मत बुद्ध त्यागी। आठ पहरो हर के गुण गावे सिमरै दीन दयाला आप तरह संगत सब उदरै बिन से सगल जंजाला। चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी ओत पोत प्रभ साथ शरण परयो नानक प्रभ तुमरी दे राख्यो हर हाथ। गुजरी अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक नगरी पंच चोर बसियले बरजत चोरी तावै त्रह दस माल रखे जो नानक मोख मुक्त सो पावै। चेताओ बास देव बनवाली राम हृदय जप माली रहाओ। उर्द मूल जिस साख्त लाहा चार बेद जित लागे सहज पाए जाए ते नानक पार ब्रह्म लिव जागे। पार जात कर अंगन मेरा पुहप पत्र तत डाला सर्ब जोत निरंजन संभू छोडो बो जंजाला। सुन सिखवंते नानक बिनवै छोडो माया जाला मन विचार एक लिव लागी पुनरप जन्म ना काला। सो गुरु सो सिख कथियले सो वै जे जाने रोगी तिस कारण कामना तंदा नाही तंदे गिरही जोगी। काम क्रोध अहंकार तजियले लोभ मोह तिस माया मन तत अवगत ते आया गुर प्रसादी पाया। ज्ञान ध्यान सब दात कथियले सेत बरन सब दूता ब्रह्म कमल मद तासर साधं जगत नाही सूता। महा गंभीर पत्र पाताला नानक सर्व जो आया उपदेश गुरु मम पुनः न गर्म बेख तज अमृत पी आया। गुजरी महला पहला कवन कवन जाचे प्रभ दाते ताके अंत न परै सुमार जैसी पूख होए अब अंतर तू समरासा देवनहार। ऐ जी जप तप संयम सच आधार हर हर नाम देह सुख पाई तेरी भगत परे पंडार रहाओ। सुन समाद रह लिव लागे एका एकी शब्द विचार जल थल धरण गगन तह नाही आपे आप किया करतार। ना तद माया मग ना छाया ना सूरज चंद ना जोत्या पार
ਸਰਬ ਲੋਚਨ ਸ਼ਬਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਚਨ ਅਭਿਯੰਤਰ ਏਕਾ ਨਜ਼ਰ

आपन चाहे सो भगत कहिए, अपना प्यार आप लाए, आपे गावे आप सुनावे। इस मन अंधे को मार्ग पाए, अंधन नाचे सख्त निवार, सेवकर नींद ना होई। सख्ती कर जगत सूता, नाचे टापे अवरो गावे, मनमुख भगत ना होई। सुर नर विरत पख करमी नाचे, मुनजन ज्ञान बिचारी। सिद्ध साधक लिव लागी नाचे, जिन गुरमुख बुद्ध विचारी। खंड ब्रह्मांडो त्रै गुण नाचे, जिन लागी हर लिव तुम्हारी। जी जंत सबे ही नाचे, नाचे खानी चारी। जो तुद भावै से ही नाचे, जिन गुरमुख शब्द लिव लाए। से भगत से तत् ज्ञानी, जिसको हुक्म मनाए। एहा भगत सच्चे सिउ लिव लागे, बिन सेवा भगत ना होई। जीवत मरै ता शब्द विचारे, ता सच पावै कोई। माया कै अर्थ बहुत लोक नाचे, को विरला तत् विचारी। गुर प्रसादी सोई जन पाए, जिन को कृपा तुम्हारी। एकदम साचा विसरै, सा वेला बिरथा जाए। साहे साहे सदा संभालिए, आपे बक्से करे रजाए। सही नाचे जो तुत पावे, जे गुरमुख शब्द विचारी। कहो नानक से सहे सुख पावे, जिन को नजर तुम्हारी। गुजरी महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर बिन जियरा रह ना सके, जो बालक खीरिया धारी। आगम्या गोचर प्रभ गुरमुख पाई है, अपने सतगुर कह बलिहारी। मन रे हर कीर्त तरतारी, गुरमुख नाम अमृत जल पाई है। जिन को कृपा तुम्हारी, रहाओ सनक सनंदन नारद मन सेवै। अंदर जपत रह बनवारी, शरणागत प्रहला जन आए। तिनकी पै सवारी, अलख निरंजन एको वरतै। एका ज्योत मुरारी, सब जाचक तू एको दाता। मंगे हाथ पसारी, भगत जना की उत्तम बाणी। गावे कथ कथा नित न्यारी, सफल जन्म भया तिनकेरा। आप तरे कुलतारी, मन मुख दुबदा दुर्मत व्यापे। जिन अंतर मोह गुबारी, संत जना की कथा ना पावे। ओए डूबे सन परवारी, निंदक निंदा कर मल धोवे। ओह मल पख माया तारी, संत जना की निंदा व्यापे। ना उरवार ना पारी, एहो परपंच खेल किया। सब करता है हर करता है सब गल तारी। हर एको सूत वरतै जुग अंतर, सूत खिंचै एक अंकारी। रस निरसन रस गावै हर गुण, रसना हर रस धारी। नानक हर बिन अवर ना मांगो, हर रस प्रीत प्यारी। गुजरी महला पंजवां कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राजन मैं तू राजा कहिए, भूमन मैं भूमा। ठाकर मैं ठकराई तेरी, कोमर सिर कोमा। पिता मेरो बड़ो तनी अगमा, उसत कमन करी जय करते। पेख रहे बिस्मा रहाओ, सुखियन मैं सुखिया तू कहिए। दातन सिर दाता, तेजन मैं तेजवंशी कहिए। रसियन मैं राता, सूरन मैं सूरा तू कहिए। भोगन मैं भोगी, ग्रस्तर मैं तू बड़ो ग्रस्ती। जोगन मैं जोगी, करतन मैं तू करता कहिए। आचारन मैं आचारी, साहन मैं तू साचा साहा। वापारन मैं वापारी, दरबारन मैं तेरो दरबारा। शरण पालन टीका, लक्ष्मी केतक गनी ना जाइए। गाना सको सिका, नामन मैं तेरो प्रभ नामा। ज्ञानन मैं ज्ञानी, जुगतन मैं तेरी प्रभ जुगता। इशनानन मैं इशनानी, सिद्धन मैं तेरी प्रभ सिद्धा। कर्मन सिर कर्मा, आज्ञा मैं तेरी प्रभ आज्ञा। हुक्मन सिर हुक्मा, ज्यों बुलावै त्यों बोले स्वामी। कुदरत कमन हमारी, साह संग नानक जस गायो। जो प्रभ की अत प्यारी, गुजरी महला पंजवां कर चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद।
नाथ नर हर दीन बंधव पतत पावन देव पै त्रास नास कृपाल गुणनिध सबर स्वामी सेव। हर गोपाल गुर गोबिंद चरण सरण दयाल केशव तार जग पव सिंध रहाओ। काम क्रोध हरण मद मोह दहन मुरार मन मकरंद जन्म मरण निवार धरणी तार पत राख परमानंद। जलत अनक तरंग माया गुर ज्ञान हर रिद मंत शेद अहम बुद्ध करणा मैं चिंत मेट पुरख्यानंत सिमर समर्थ पल मुहूर्त प्रभ ध्यान सहि समाद दीन दयाल प्रसन्न पूर्ण जाचिय रज साध। मोह मिथन दुरंत आसा बासना बेकार रख धर्म परम बिदार मंते उदर हर निरंकार। तनाड आड़ पंडार हर निद होत जिना ना चीर खल मूड खल मुग्ध मूड कटाक श्री तर पय गुणमतीर। जीवन मुक्त जगदीश जप मानो तार रिद प्रतीत जी दया मया सर्वत्र रमण परमहंस रीत। देत दर्शन सरवण हर जस रसन नाम उचार अंग संग भगवान परसन प्रभ नानक पतत उदार। गुजरी की वार महला तीजा सकंदर ब्रह्म की वार की तुनी गावनी एक ओंकार सदगुर प्रसाद श्लोक महला तीजा। एहो जगत ममता मोवा जीवन की बिद नाहे गुर कै पाणे जो चलै ता जीवन पदवी पाहे। ओए सदा सदा जन जीवते जो हर चरणी चित लाए नानक नदरी मन वसै गुरमुख सहि समाए। महला तीजा अंदर सहसा दुख है आपे सिर तंदै मार दूजे पाए सुते कवे ना जागे माया मोह प्यार। नाम ना चेतै शब्द नामी चार है एहो मनमुकाया चार हर नाम ना पाया जन्म बिरथा गवाया नानक जम मार करे खुवार। पौड़ी अपना आप उपायोन तदो होर ना कोई मता मसूरत आप करे जो करे सो होई। तदहो आकाश ना पाताल है ना त्रै लोई तदहो आपे आप निरंकार है ना उपत होई। ज्योतिष पावे तिवे करे तिस बिन अवर ना कोई श्लोक महला तीजा। साहिब मेरा सदा है दिसै शब्द कमाए ओहो अवाणी कदे नाहे ना आवे ना जाए। सदा सदा सो सेवी है जो समय रह समाए अवर दूजा क्यों सेवी है जमै तै मर जाए। निहफल तिनका जीवया जे खसम ना जाए।

कलयुग में नाम निदान भक्ति खटिया, हरि उत्तम पद पाया, सतगुर सेव हर नाम मन वसाया, अंदर नाम त्याया, विचे ग्रह गुरबचन उदासी, हों मैं मोह जलाया, आप तरिया कुल जगत तराया, तन जने दी माया, ऐसा सतगुर सोई पाए, जिस तुर मस्तक हर लिख पाया, जन नानक बलिहारी गुरे अपने विटों, जिन भ्रम पुला मार्ग पाया। महला तीजा, त्रै गुण माया वेख पुले, जो देख दीपक पतंग पजाया, पंडित पुल पुल माया वेखै, दिखा किने केहो आन चढ़ाया, दूजे पाए पड़े नित बिखया, नामों दिए खुआया, जोगी जंगम सन्यासी पुले, ओना अंकार बहु गर्भ वधाया, शादन भोजन ना लही सत पिखया, मन अठ जन्म गवाया, एतड़िया विचों सो जन समदा, जिन गुरमुख नाम ते आया, जन नानक किसनों आख सुनाई है।

जो तेरा रंग रफ्ते से जोनना जोवना अंतर बाहर एक नैणा लोवना जिनी पछाता हुक्म तन कदे ना रोवना नाव नानक बख्शीस मन माहे प्रोवना। श्लोक महला पंजवां जीवन दिया ना चेत्यो मुआ रल लंदड़ो खाक नानक दुनिया संग उदारिया सागत मूड़ नपाक। महला पंजवां जीवन दिया हर चेत्या मरन दिया हर रंग जन पदार्थ तारिया नानक साधु संग पौड़ी आदि जुगादी आप रखण वालिया सच नाम करतार सच पसारिया। ऊना कही ना होए कटे कट सारिया मेहरवान समरथ आपे ही कालिया जिन मन उठाया आप से सदा सुखा लिया आपे रचन रचाए आपे ही पालिया सब किश आपे आप बेअंत अपारिया गुरपुरे की टेक नानक संभालिया। श्लोक महला पंजवां आदि मध्य अरयंत परमेश्वर रखिया सतगुर दिता हर नाम अमृत चखिया साधा संग अपार अंदन हर गुण रवै पाए मनोरथ सब जोनी नह पवै सब किश करते हथ करण जो करै नानक मंगै दान संता तूर तरै। महला पंजवां तिसनो मन वसाए जिन उपाया जिन जन त्याया खसम तिन सुख पाया सफल जन्म परवान गुरमुख आया हुक्मै बुझ निहाल खसम फुरमाया जिस होवा आप किरपाल सो नह परमाया जो जो दिता खसम सोई सुख पाया नानक जिसै दयाल बुझाए हुक्म मित जिसै भुलाए।

अंत काल जो स्त्री सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै बेसवा जोन वल वल अवतरै। अंतकाल जो लड़के सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै सूकर जोन वल वल अवतरै। अंतकाल जो मंदिर सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै प्रेत जोन वल वल अवतरै।

गुजरी श्री जयदेव जियो का पदा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद परमाद पुरख मनोपमंग सत आद भावरतंग परमद पुतंग परकृत परंग जद चिंत सर्वगतंग केवल राम नाम मनोरमंग बद अमृत तत्मयंग ना दनोत जा स्मरणेन जन्म जराद मरण भयंग रहाओ इच्छस जमाद परा भयंग जस स्वस्थ सुकृत कीर्तंग भव भूत भाव समग्यंग परमंग प्रसन्न मिदंग लोभाद दृष्ट पर गिरहंग जद विद आचरणंग तज सकल दोहकृत दुर्मति पज चक्कर तर सरणंग हर भगत निज नेह केवला रिद कर्मणा बचसा जोगेन किंग जगेन किंग दानेन किंग तपसा गोविंद गोविंदेत जप नर सकल सिद्ध पदं जय देव आयो तस सफटं भवभूत सर्वगतं एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहभंग गुरप्रसाद राग देव गंधारी महला चौथा कर पहला सेवक जन बने ठाकर लिव लागे जो तुमरा जस कहते गुरमत तिन मुख भाग सुभागे रहाओ टूटे माया के बंधन फाहे हर राम नाम लिव लागे हमरा मन मोहयो गुरमोहन हम बिस्म भई मुख लागे सगली रहन सोई अंधारी गुर किंचित कृपा जागे जन नानक के प्रभ

चले पित गली हर के संत बतावो मार्गो हम पीछे लाग चली रहाओ। प्रे के बचन सुखाने ही अरे एह चाल बनी है पली लटरी मदरी ठाकर पाई ओह सुंदर हर टोल मिली। एको प्रे ओ सखिया सब प्रे की जो पावे पिरसा पली नानक ग्री।

मुख हर हर हर बोली है, गुरमुख रंग चलू लै राती, हर प्रेम पीनी चोली है रहाओ। हाँ फिरों दीवानी आवल बावल, तिस कारण हर ढोली है, कोई मिले मेरा प्रीतम प्यारा, हम तिसकी गुलगुली है, सतगुर पुरख मनावो अपना, हरे अमृत पी झोली है, गुर प्रसाद जन नानक पाया, हर लादा देह टोली है, देव गंधारी अब हम चली ठाकर पै हार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावे मार।

सुंदर ध्यान धादर रैनी जी प्रांते प्यारा रहाओ। शास्त्र वेद पुराण अवलोके सिमरत तत् विचारा, दीना नाथ प्राण पथ पूर्ण पावजल उदर नहारा। आद जुगाद भगत जन सेवक ताकी बिखया धारा, तिन जन की तूर बांछ नित नानक।

प्रेम रसाने जा को उपजी छोड़ न कतहू जाता रहाओ। बैठत हर हर सोबत हर हर हर रस भोजन खाता। अठ सठ तीर्थ मज्जन कीनो साधु तूरी नाता। सफल जन्म हर जन का उपजया जन कीनो सौत बेदाता। सगल समूल है उदरे नानक पूर्ण ब्रह्म पछाता। देव गंधारी महला पंजवा माई गुरबिन ज्ञान ना पाई है। अनक प्रकार फिलत बिललाते मिलत नहीं गोसाई है। रहाओ मोह रोग सोग तन बांधे हो बोझो नी परमाई है। टिकट ना पावे बिन सतसंगत किस आगे जाए रुआई है। करे अनुग्रह स्वामी मेरा साध चरण चित लाई है। संकट घोर कटे खिन भीतर नानक हर दर्श समाई है। देव गंधारी।

मिल संगत तज अभिमान, कहो नानक पाए है परम निधान। देव गंधारी पंजवा जानी ना जाई ताकि गात रहाओ। कह पे खाराओ हाँ कर चतराई, बिस्मन बिस्मे कहन कहात। गण गंधर्व सिद्ध अर साधक, सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्मादक। चतुर्वेद उचर्द दिन रात, अगम अगम ठाकरे आगाद। गुण बेअंत बेअंत पन नानक, कहना जाई परै परात। देव गंधारी महला पंजवा, त्याए गाए करने हार। पौ नाही सुख सहज आनंदा, अनक ओही रे एक समार रहाओ। सफल मूर्त गुर मेरे माथे, जत कत पेखो तत साथे। चरण कमल मेरे प्राण आधार, समर्थ्या था बड़ा प्र मेरा। कड़कड़ अंतर साहिब नेरा, ताकी सरनो आसर प्रभ नानक। जाका अंत ना पारा वार, देव गंधारी महला पंजवा। उल्टी रे माने उल्टी रे, सागर स्यों कर उल्टी रे। झूठे की रे झूठ प्रीत, छुटकी रे मन छुटकी रे। साकत संग ना छुटकी रे रहाओ। ज्यो काजर पर मंदर राखेओ, जो पैसा कालू खीरे। दूरों ही ते भाग गयो है, जिस गुर मिल छुटकी त्रिकुटी रे। मांगो दान किरपाल किरपा निद, मेरा मुख साकत संग ना जुटसी रे। जन नानक दास दास को करियो, मेरा मूंड साध पगां हेठ रुलसी रे। राग देव गंधारी महला पंजवा, कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सब दिन के समर्थ पंथ बिठले, हों बल बल जाओ। गावन पावन संतन तोरे, चरण उमा कह पाओ। रहाओ जासन बासन सहज केल करना मैं, एक अनंत अनुपैठाओ। रिद सिद्ध निद करतल, जग जीवन सर्वनाथ अनेक नाओ। दया मया कृपा नानक कहो, सुन सुन जस जीवाओ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग देव गंधारी महला नावा, यह मन नैक ना कहो करे। सीख सिखाए रहो अपनी सी, दुर्मत ते ना टरे रहाओ। मद माया कै पयो बावरो, हर जस नहे उचरे। कर परपंच जगत को डहके, अपनो उदर भरे। सवान पूछ ज्यो होए ना सूदो, कहो ना कान तरे। कहो नानक भज राम नाम नित, जाते काज सरे। देव गंधारी महला नावा, सब किश जीवत को व्यवहार। मात पिता भाई सुत बंदप, आरफुन गृह की नार रहाओ। तन ते प्राण होत जब न्यारे, टेरत प्रेत पुकार। आद करी को न रख, करते देत निकार। मृग तृष्णा ज्यो जग रचना, यह देखो हृदय विचार। कहो नानक भज राम नाम नित, जाते हो ते उधार। देव गंधारी महला नावा, जगत में झूठी देखी प्रीत। अपने ही सुख स्यों सब लागे, क्या दारा क्या मीत रहाओ। मेरो मेरो सबै कहत है, हित स्यों बांध्यो चीत। अंतकाल संगी नह को, ए अचल जह रीत। मन मूर्ख अजू न समझत, सिख दे हारियो नीत। नानक पौ जल पार पर, जौ गावै प्रभ के गीत। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निरभउ निरवैर। अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद। राग बिहागड़ा चौप दे महला पंजवा, कर दूजा। दूतन संगरिया भयंगन बसरिया, अन क्यों परिया। तो मैं हर

जप तप वर्त कीने पेखन कहो चरना राम, तप्त न कतै बुझै बिन स्वामी सरना राम। प्रभ शरण तेरी काट बेरी संसार सागर तारी है, अनाथ निर्गुण कछ ना जाना मेरा गुण अवगुण ना बिचारी है। दीन दयाल गोपाल प्रीतम समर्थ कारण करना, नानक चात्रक हर बूंद मांगे, जप जीवा हर हर चरना, अमे सरोवर पियो अमे सरोवरो पियो, हर हर नाम राम संते संग मिले, जप पूर्ण काम राम सब काम पूर्ण दुख बदीर्ण, हर निमुख मनो ना बिसर, आनंद अंदन सदा साचा सर्व गुण जगदीसर। अगणत ऊचिया पार ठाकर अगम जाको धामा, बिनवंत नानक मेरी इच्छ पूर्ण मिले श्री रंग रामा। कई कोटक जग फला सुन गावन हरे राम, हर हर नाम जपत कुल सगले तारे राम। हर नाम जपत सोहंत प्राणी ताकी महिमा कित गना, हर बिसर नाही प्राण प्यारे चितवंत दर्शन सद मना। शुभ दिवस आए गह कंठ लाए प्रभ ऊचक मिया पारे, बिनवंत नानक सफल सब किश प्रभ मिले अत प्यारे। बिहागड़ा महला पंजवा शंत अनकाए रातड़िया, वाड़ दुहेली राम पाप कमाउंदिया तेरा कोई ना बेली राम। कोई ना बेली होए तेरा सदा पछोता वहे, गुण गोपाल न जपै रसना फिर कदो से दे आवे। तार वार विशुन्ने ने पाप जुड़ते जाम्बा गौने अकेली, बिनवंत नानक बिन नाम हर के सदा फिरत दुहेली। तू वल वंच लूक करै सब जाने जानी राम, लेखा धर्म पया तिल पीड़े कानी राम। किरत कमाणे दुख सहो प्राणी अनक जोन परमाया, महामोहनी संग राता रतन जन्म गवाया, इक सहर के नाम बाजो आन का सियाणी। बिनवंत नानक लेख लिखिया परम मोहे लोभाणी, बीच ना कोई करे अकिरत कान।

गुण गोविंद गुरमुख ना जपते जपया तपत थम गल लातया काम क्रोध अहंकार मूठा खोए ज्ञान पहिता पिया बिनवंत नानक संजोग भूला हर जाप रसन ना जापया तुझ बिन को नाही प्रभ राखण हारा राम पतत उदाहरण हर बिरद तुम्हारा राम पतत उदाहरण शरण स्वामी कृपा निदयाला अंधकूप ते उदर करते सगल कट प्रतपाला शरण तेरी कट महा बेड़ी एक नाम देह आधारा बिनवंत नानक कर दे राखो गोविंद दीन दयारा सो दिन सफल गणया हर प्रभु मिलाया राम सब सुख प्रगटया दुख दूर पराया राम सुख सहज आनंद विनोद सदही गुण गोपाल नित गाइए भज साध संगे मिले रंगे बहुत जोन ना ताइए गह कंठ लाए सह सुभाए आदि अंकर आया बिनवंत नानक आप मिलया बहुत कतू ना जाया बिहागड़ा महला पंजवा शंत सुनो बिनंतिया स्वामी मेरे राम कोट अपराध भरे पी तेरे चेरे राम दुख हरण कृपा करन मोहन कल कले सह पंजना शरण तेरी रख ले हो मेरी सर्व मैं निरंजना सुनत पेखत संग सब कै प्रभ नेर हूं ते नेरे अरदास नानक सुन स्वामी रख ले हो करके चेरे तू समर्थ सदा हम दीन पिखारी राम माया मोहे मगन कढ लिहो मुरारी राम लोभ मोहे बेकार बांधियो अनक दुख कमावने अलिपत बंधन रहत करता किया अपना पावने कार अनुग्रह पतत पावन बहुजोन प्रमते हारी बिनवंत नानक दास हर का प्रभ जी प्राण आधारी तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोरी राम पल है अकृत कना पूर्ण दृष्ट तेरी राम अगाध बोधया पार करते मोहे नीच कछू ना जाना रतन त्याग संग्रहन कौडी पशु नीच एना त्याग चलती महा चंचल दोह कर कर जोरी नानक शरण समर्थ स्वामी पैज रख मोरी जा ते विछड़िया तिन आ मिलाया राम साधु संग में हर गुण गाया राम गुण गाए गोविंद सदा नीके कल्याण मैं प्रगट पए सेजा सुहावी संग प्रभ कै अपने प्रभ कर ले छोड़ चिंत अचिंत होए बहुत दुख ना पाया नानक दर्श पेख जीवे गोविंद गुण निद गाया बिहागड़ा महला पंजवा शंत बोल सो तरमीड़िया मोन का तारी राम तू नेत्री देख चलिया माया ब्योहारी राम संग तेरा कश ना चले बिना गोविंद नामा देश वेश स्वर्ण रूपा सगल ऊने कामा पुत्र कलतरना संग सोभा हस्त कोर विकारी बिनवंत नानक बिन साध संगम सब मिथ्या संसारी राजन क्यों सोया तू नींद भरे जागत कत नाही राम माया झूठ रुदन केते बिललाही राम बिललाहे केते महामोहन बिन नाम हर के सुख नहीं सहस सियाणप उपाव था के जय पाव तै जाई आद अंते मद पूर्ण सर्वत्र कटकट आही बिनवंत नानक जिन साध संगम से पत सेती कर जाही नरपत जान ग्रहयो सेवक स्याणे राम सर पर विछड़ना मोहे पछताने राम हर चंदौरी देख पूला कहा अस्थित पाई है बिन नाम हर के आन रचना अहला जन्म गवाई है
हाँ हाँ करत ना त्रिशन बूझै, न काम पूर्ण ज्ञाने, बिनवंत नानक बिनो नाम हर के केत्या पछताने। तार अनुग्रह हो अपना कर लीना राम, पूजा गह काढ़ लियो साधु संग दीना राम। साध संगम हरिया राधे, सगल कलमल दुख जले, महा धर्म सो दान किरिया, संग तेरे से चले। रसना आराधा एक स्वामी, हर नाम मन तन पीना, नानक जिसनो हर मिलाए, सो सर्व गुण परवीना। बिहागड़े की वार महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला तीजा, गुर सेवा ते सुख पाई है, होर थे सुख ना पाल। गुर कै शब्द मन भेदी है, सदा वसै हर नाल। नानक नाम तिन्ना कौ मिलै, जिन हर वेखै नदर निहाल। महला तीजा, सिफत खजाना बख्स है, जिस बख्सै सो खर्चै खाए। सतगुर बिन हथ ना आवै, सब थके कर्म कुमाए। नानक मनमुख जगत तनहीन है, अगै भुखा के खाए। पौड़ी सब तेरी तू सब सदा।

माया का संबंध। नानक सच्चे नाम बिन वर्तन वर्तै अंध, महला चौथा। अंधे चानन तां थीऐ जा सतगुर मिलै रजाए, बंधन तोड़ै सच वसै अज्ञाना दे राजाए। सब किश देखै तिसै का जिनकी आतन साज, नानक शरण करतार की करता रखै लाज। पौड़ी जदों आपे थाट किया बै करतै, तदों पुछना सेवक बिया, तदो क्या को लेवै क्या को देवै, जा अवरना दूजा किया। फिर आपे जगतो पाया करतै, दान सबना को दिया। आपे से बनाईयन गुरमुख, आपे अमृत पिया, आप निरंकार आकार है आपे, आपे करे सोथिया। सलोक महला तीजा, गुरमुख प्रभ सेवै सद साचा, अंदन सहज प्यार, सदा आनंद गावै गुण साचे, अर्ध उर्ध उरतार। अंतर प्रीतम वसिया, तुर कर्म लिखिया करतार, नानकिया मिलाया नू आपे कृपा तार। महला तीजा, कहया कथया ना पाईऐ, अंदर रह सदा गुण गाए, विण कर मैं किने ना पायो, भौक मोए बिल लाए। गुर कै शब्द मन तन भिजै, आप वसै मन आए, नानक नदरी पाईऐ आपे ले मिलाए। पौड़ी आपे वेद प्राण सब शास्त्र, आप कथा आप भीजै, आपे ही बै पूजे करता, आप पर पंच करी जै। आप निर्विरतो आप निर्विरति, आपे कथ कथी जै। आपे पुन सब आप कराए, आप अलिप्त वृति जै, आपे दुख सुख देवै करता, आपे बख्श करी जै। सलोक महला तीजा, सेखा अंदरों जोर छड़ तू, पाओ कर चल गवाए, गुर कै पै केते निस्तरे, पै विच निरपाओ पाए। मन कठोर शब्द भे तू, सांत वसै मन आए, शांति विचकार कमावनी, सा खसम पाए थाए। नानक काम क्रोध किने ना पायो, पुछो ज्ञानी जाए। महला तीजा, मन मुख माया मोह है, नाम ना लगो प्यार, कूड कमावे कूड संग्रह, कूड करे आहार। बिख माया तन संच मरे, अंते होए सब शार, कर्म धर्म सुच संयम करे, अंतर लो विकार। नानक जे मन मुख कमावे, सो थाए ना पवे, दरगह होए खुआर। पौड़ी आपे खानी आपे बाणी, आपे खंडवर भंड करे, आप समुंद आप है सागर, आपे ही विचरतन तरे। आप लहाए करे जिस कृपा, जिसनो गुरमुख करे हरे, आपे पवजल आप है बोए था, आपे खेवट आप तरे। आपे करे कराए करता, अवरना दूजा तुझे सरे। सलोक महला तीजा, सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, नाम पदार्थ पाई है, अचिंत वसै मन आए। जन्म मरण दुख कटिया, हमे ममता जाए, उत्तम पदवी पाई है, सच्चे रहे समाए। नानक पूर्व जिन कौ लिखिया, तिन्ना सतगुर मिलिया आए। महला तीजा, नाम रता सतगुरु है, कलयुग बोइथ होए, गुरमुख होवै सो पार परै, जिन्ना अंदर सच्चा सोए। नाम संभाले नाम संग्रह, नामे ही पत होए, नानक सतगुर पाया कर्म प्राप्त होए। पौड़ी आपे पारस आप तात है।

आपे सबकट भोग वै स्वामी, आपे ही सब अंजन, आप बेक आप सब बेता, आपे गुरमुख भंजन। जन नानक सालाहे नर जय, तुद करते तू हर सुखदाता वडन। श्लोक महला चौथा। बिन सतगुर सेवे जी के बंदना, जेते कर्म कुमाहे, बिन सतगुर सेवे ठौर ना पावही, मर जमै आवै जाहे। बिन सतगुर सेवे फिका बोलना, नाम ना वसै मन आए, नानक बिन सतगुर सेवे जमपुर बदे, मारी है मोहे काल उठ जाए। महला तीजा। एक सतगुर की सेवा कर है चाकरी, हर नामे लगे प्यार, नानक जन्म सवार ने अपना, कुल का करन उधार। पौड़ी। आपे चाट साल आप है पादा, आपे चाटड़े पण कौवाणे, आपे मिता आपे पिता माता है आपे, आपे बालक करे सियाने। एक थै पड़ बुझै सब आपे, एक थै आपे करे आने, एक ना अंदर महल बुलाए, जा आप तेरे मन सच्चे पाने। जिन्ना आपे गुरमुख दे वड़ियाई, से जन सच्ची दरगह जाने। श्लोक मरदाना पहला। कल कल वाली काम मद, मनुआ पीवन हार, क्रोध कटोरी।

पहला काया लाहन आप मद मजलस तृष्णा तात मनसा कटोरी कूड़ परी पी लाए जमकाल हित मद पीते नानका बहुते खटिया बिकार ज्ञान गुड़ सलाह मंडे पौ मास आहार नानक हो भोजन सच है सच नाम आधार काया लाहन आप मद अमृत तिसकी तार सतसंग स्यो मेलाप होए लिव कटोरी अमृत परी पी पी कटे बेकार पौड़ी आपे सुर नरगण गंधर्वा आपे खड़ दर्शन की बाणी आपे शिव शंकरा महेशा आपे गुरमुख अकथ कहानी आपे जोगी आपे भोगी आपे सन्यासी फिर बिबाणी आपे नाल गोष्ट आप उपदेश आपे सुर स्वरूप सियाणी आपना चोज कर वेखै आपे आपे सबना जिया कह जानी श्लोक महला तीजा यह संध्या प्रवान है जित हर प्रभ मेरा चित आवै हर स्यों प्रीत उपजै माया मोह जलावै गुर प्रसादी दुबदा मरै मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार नानक संध्या नानक संध्या करे मनमुखी जियो ना टिकै मर जमै होए खुआर महला तीजा प्रयो प्रयो करती सब जग फिरी मेरी प्यास ना जाए नानक सतगुर मिलया मेरी प्यास गई पिर पाया कर आए पौड़ी आपे तंत परम तंत सब आपे आपे ठाकर दास भया आपे दास अठ वर्ण उपाया नो आप ब्रह्म आप राज लया आपे मारे आपे छोड़े आपे बक्से करे दया आपा भुल ना भुले कभी सब सच तपावस सच थया आपे जिन्ना बुझाए गुरमुख तिन अंदरों दूजा भ्रम गया श्लोक महला पंजवां हर नाम ना सिमरै साध संग तै तन उड़े खेह जिन कीती तसै ना जानी नानक फेटा लूनी देहे महला पंजवां घट वसै चरणार बिंद रसना जपै गोपाल नानक सो प्रभ सिमरिया तिस देही कौपाल पौड़ी आपे आपे अड़सठ तीर्थ करता आप करे इशनान आपे संयम वर्तै स्वामी आप जपाए नाम आप दयाल हुए पौखंडनो आप करै सबदान जिसनो गुरमुख आप बुझाए सो सद ही दरगै पाए मान जिस दी पैज रखे हर स्वामी सो सच्चा हर जान श्लोक महला तीजा नानक बिन सतगुर भेटे जग अंध है अंधे कर्म कमाए शब्द स्यो चेतना लावई जित सुख वसै मन आए तामस लगा सदा फिराए एहनिस जलत बिहाए जो तिस भावे सो थीऐ कहना किछु ना जाए महला तीजा सतगुरु फरमाया कारिए करे हो गुरु द्वारा होए कै सब समाले हो साहिब सदा हजूर है परमे के शौड़ कट कै अंतर जो तरे हो हर का नाम अमृत है दारू यो लाए हो सतगुर का पाणा चित रखो संजम सच्चा ने हो नानक हथ है सुख है अंदर रख सी अगे हर स्यों केल करे हो पौड़ी आपे पार अठार बनस्पत आपे ही फल लाए आपे माली आप सब सिंचै आपे ही मुए पाए आपे करता आपे भुगता आपे दे दिवाए आपे साहेब आपे है राखा आपे रहा सुमाए जन नानक वड्याई आखे हर करते की जिसनो तिल ना तमाए श्लोक महला तीजा मानस परिया आणिया मानस परिया आए जित पीते मत दूर होए बरल

अग्गै जाए, ज्ञानी होए सो चेतन होए, अज्ञानी अंध कमाए। नानक एथै कमावै सो मिलै, अग्गै पाए जाए महला तीजा। तुर खसमै का हुक्म पया, विण सतगुर चेत्या न जाए। सतगुर मिलिया अंतर रव रहया, सदा रहया लिव लाए। दम दम सदा संभालदा, दम न बिरथा जाए। जन्म मरण का पहो गया, जीवन पदवी पाए। नानक एहो मर्तबा तिसनो दे, जिसनो कृपा करे रजाए पौड़ी। आपे दाना बीनिया, आपे प्रधाना, आपे रूप दिखालदा, आपे लाए ध्याना। आपे मोनी वरतदा, आपे कथै ज्ञाना। कौड़ा किस न लगई, सब नाही पहना। उस्तत बरना सकी सत कुरबाना, सलोक महला पहला। कली अंदर नानका, जिन्ना दा अवतार। पुत जनूरा ती जनूरी, जोरू जिन्ना दा सिकदार। महला पहला। हिंदू मूले पूले अखुटी जाही, नारद कया से पूज कराही। अंधे गुंगे अंध अंधार, पाथर ले पूजे मुद गवार। ओहे जे आप डुबे, तुम कहां तरन हार पौड़ी। सब केहो तेरा वस है, तुम सच्चा साहो। भगत रते रंग एक कै, पूरा वे साहो। अमृत भोजन

आपे वट परवार नानक मंगै दान हर संता रे नार होर दा तार ना सुजई तू देवन हार सुध एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद राग वढ़ंस महला पहला कर पहला अमली अमल ना अंबड़ै मच्छी नीर ना होए जो रते सह अपने तिन भावै सब कोए हाँ वारी वन्या खनिए वन्या तो साहेब के नामै रहाओ साहेब सफलियो रुखड़ा अमृत जा का नाओ जिन पिया ते तृप्त पए हों तिन बलहार जाओ मैं की नजर ना आवही वसै हबिया नाल तिखा तिहाया क्यों लह जा सर पीतर पाल नानक तेरा बाणिया तू साहेब मैं रास मन ते तोखा तां लह जा सिफत करी अरदास वडंस महला पहला गुणवंती सहोरावया निर्गुण कूके काए जे गुणवंती थी रहे ता भी सहोरावन जाए मेरा कंतरी सालू की तन अवरा रावे जी रहाओ करनी कामन जे थी है जे मन तागा होए मानक मुल ना पाई है लीजे चित परोए राहो दसाई ना जुलाया खामड़ी आस तैं सह

जिन जेवा रस न चखियो सा जेवा जल जाओ, अन रस सादे लग रही दुख पाया दूजे पाए। सबना नजर एक है आपे फर्क करे, नानक सतगुर मिले फल पाया, नाम वढाई दे वढांस महला तीजा। माया मोह गुबार है गुरबिन ज्ञान ना होई, शब्द लगे तन बुझया दूजे पर जवे गोई। मन मेरे गुरमत करनी सार, सदा सदा हर प्रभ रवै ता पावे मुख द्वार रहाओ। गुणा का निदान एक है आपे देता को पाए, बिना मैं सब विछड़ी गुर के शब्द मिलाए। मेरी मेरी कर दे कट गए इतना हथ के हो ना आया, सतगुर मिले सच मिले सच नाम समाया। आसा मनसा एहो शरीर है अंतर जो जगाए, नानक मनमुख बंद है गुरमुख मुक्त कराए। वढांस महला तीजा। सुहागणी सदा मुखी उजला गुर कै सह सुभाए।

जल थल महियल रहया भरपूरे, निकट वसै नाही प्रभ दूरे। जिसनो नजर करे सो त्याए, आठ पैर हर के गुण गाए। जी जंत सगले प्रतपारे, शरण पर्यो नानक हर द्वारे। वढ़ंस महला पंजवा, तू वड़दाता अंतर जामी। सब मैं रविया पूर्ण प्रभ स्वामी। मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा, हाँ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ। तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे, मन निर्मल होए संतां धूरे। चरण कमल हृदय उरधारे, तेरे दर्शन को जाई बलिहारे। कर कृपा तेरे गुण गावा, नानक नाम जपत सुख पावा। वढ़ंस महला पंजवा, साध संग हर अमृत पीजै। ना जियो मरै ना कबहू चीजै, वडभागी गुरपुरा पाई है। गुर कृपा ते प्रभु त्याई है रहाओ। हर रतन जवाहर हर माणक लाला, सिमर सिमर प्रपै निहाला। जत कत पेखो साधु सरना, हर गुण गाए निर्मल मन करना। घट घट अंतर मेरा स्वामी उठा, नानक नाम पाया प्रभु।

जह चित आवै सो थान सुहावा, जित वेला विसरै तां लागै हवा। तेरे जी तू सधी साथी, संसार सागर ते कढ दे हाथी। आवन जाना तुम ही किया, जिस तू राखै तिस दुख ना थिया। तू एको साहिब अवर ना होर, बिनो करै नानक कर जोर। बड़हंस महला पंजवां, तू जाना है ता कोई जाने, तेरा दिया नाम खाने। तू अचरज कुदरत तेरी बिस्मा रहाओ, तुझे आपे कारण आपे करना, हुक्मे जमण हुक्मे मरना। नाम तेरा मंत्र आधारी, नानक दास बख्शीश तुम्हारी।

नदर तुद अरदास मेरी जिन आप्यो पाया ता मैं कहया कहण जा तुझै कहाया वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना मंदा किसै ना आख झगड़ा पावना नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आवना जिस नाल संगत कर श्री की जाए क्या रूवावना जो दे सहना मने कहना आख या आख नाही वावना वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना सब

पहला करहो दया तेरा नाम वखाणा सब यो पाई है आप आपे सर्वे समाणा सर्वे समाणा आप तू है उपाय तंदे लाइया एक तुझी की है राजे एक ना पिख पवाइया लोभ मोह तुझ किया मीठा एक भरम भुलाना सदा दया करो अपनी ता नाम खाना नाम तेरा है साचा सदा मैं मन पाना दू गया सुख आए समाणा गावन सुर नर सुगड़ सुजाना सुर नर सुगड़ सुजान गावे जो तेरे मन पावे माया मोहे चेतै नाही ऐला जन्म गवावे एक मूड मुगद ना चेतै मूले जो आया ते जाना नाम तेरा सदा साचा सोए मैं मन पाना तेरा भक्त सुहावा अमृत तेरी बाणी सेवक सेवै पाओ कर लागा साओ प्राणी साओ प्राणी तिन्ना लागा जिन्नी अमृत पाया नाम तेरा जोए राते नित चढ़ै सुवाया एक कर्म धर्म ना होए संजम जामना एक पछाणी वक्त सुहावा सदा तेरा अमृत तेरी बाणी हाँ बलिहारी साचे नावै राज तेरा कबो ना जावै राजू ता तेरा सदा निश्चल एहो कबो ना जावै चाकर ता तेरा सोए होवै जोए सह समावै दुश्मन ता दुख ना लगै मूले पाप नेड़ ना आवे हाँ बलिहारी सदा होवा एक तेरे नावै जुगै जुगंतर भगत तुम्हारे कीर्त करै स्वामी तेरे द्वारे जपै ता सा

जाम ए चुका वहे गुर प्रसादी करो कृपा लेहो जम उबारे जुगा जुगंतर भगत तुम्हारे वड्डे मेरे साहेबा लाख्या पारा क्यों कर करो बेनंती हो आख ना जाना नदर करे ता सच पछाणा साचो पछाणा ताम तेरा जाम आप बुझावे दुख भूख संसार की सह हो चुकावे बिनवंत नानक जाए सहसा बुझे गुर विचारा वड्डा साहब है आप अलख अपारा।

जपो तुसी सहेलियो जम द्वार ना हो खड़ियां सिख सुनो महेली हो। हंस हंसा बग बगा लह मन की जाला बंके लोयण दंतरी साला।

सारंग ज्यों पग धरै ठिम ठिम आप आप संदूरै, श्री रंग राती फिरै माती उद गंगा वाणी, बिरवंत नानक दास हर का तेरी चाल सुहावी मदराड़ी बाणी। वढ़ंस महला तीजा, शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अपने पिर कै रंग रती मुइये सोभावंती नारे, सच्चा शब्द मिल रहीए मुइये पिर रावे पाए प्यारे, सच्चा पाए प्यारी कंत सवारी हर हर स्यो न्यो रिचाया, आप गवाया ता पिर पाया गुर कै शब्द समाया, सा तन शब्द सुहावी प्रेम कसाई अंतर प्रीत प्यारी, नानक सा तन मिल लई पिर आपे साचा साहे सवारी, निर्गुण मंत्रिये पिर देख अधूरे राम, गुरमुख जिनी रावया मुइये पिर रव रया पर पूरे राम, पिर रव रया पर पूरे वेख अजूरे जुजुए को जाता, तन बाली भोली पिर सहज रावै मिलिया करम विधाता, जिन हरा चाखिया शब्द सुपाखिया हर सर रही परपूरे, नानक कामण सा पिर भावै सबदे रह हदूरे, सुहागणी जाए।

जिन्नी आप गवाया तिन्नी फिर पाया रंग सिउं रलिया माण सदा रंग राती सहजे माती अंधन नाम वखाणै कामण वडभागी अंतर लिव लागी हर का प्रेम सुभाया नानक कामण सहजे राती जिना सच सिंगार बनाया हमें मार मुइये तू चल गुर कै पाए हर वर रावे सदा मुइये निकर वासा पाए निकर वासा पाए शब्द बजाए सदा सुहागण नारी पर रलियाला जुबन बाला अंधन कंध सवारी हर वर सुहागो मस्तक भागो सच्चे शब्द सुहाए नानक कामण हर रंग राती जा चलै सतगुर पाए वडांस महला तीजा गुरमुख सब

रस लीजै हर रा लीजै अंदर नाम वखाणै गुण संग्रह अवगुण विकणै आपै आप पछाणै गुरमत पाई वड्डी वड्याई सच्चा शब्द रस पीजै नानक हर की भगत निराली गुरमुख विरलै कीजै गुरमुख खेती हर अंतर बीजियै हर लीजै शरीर जमाए राम अपने घर अंदर रस पुंच तू लाहा लै परथाए राम लाहा परथाए हर मन वसाए तन खेती वापारा हर नाम ते आए मन वसाए बूझै गुर बिचारा मनमुख खेती वणज कर थाके तृष्णा भुख न जाए नानक नाम बीज मन अंतर सच्चा शब्द सवाए हर वापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वडभागो राम गुरमती मन निज कर वसिया सच्चा शब्द बैरागो राम मुख मस्तक पागो सच बैरागो साच रते विचारी नाम बिना सब जग बौराना शब्दे हम मैं मारी साचै शब्द लाग मत उपजै गुरमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिलै पौ पंजन हर रावै मस्तक भागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वढ्याई राम गुरमती हुक्म बुझियै हुक्मे मिल मिलाई राम हुक्म मिलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वड्याई गुरते पाई सच सवरण हारा पौ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम्या गोचर हुक्मे रया समाई वढांस महला तीजा मन मेरिया तू सदा सच संभाल जियो अपने घर तू सुख वसै पोहे ना सकै जम काल जियो काल जाल जम जोहे ना सकै सचै शब्द लिवलाए सदा सच रता मन निर्मल आवन जान रहाए दूजे पाए परम विगुति मनमुख जोही जम काल कह नानक सुन मन मेरे तू सदा सच संभाल मन मेरे आय अंतर तेरा निदान है बाहर वस्त ना पाल जो पावै सो पुंच तू गुरमुख नदर निहाल मन मेरे अंतर हर नाम सिखाई।

मन मेरिया जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे वापारा सतगुर सेवने अपना अंतर शब्द अपारा अंतर शब्द अपारा हर नाम प्यारा नामे नौनद पाई मनमुख माया मोहे व्यापे दुख संतापे दूजे पत गवाई हौ मैं मार सच शब्द समाने सच रते अधकाई नानक मानस जन्म दुलंब है सतगुर बूझ बुझाई मन मेरे सतगुर सेवने अपना से जनवड़ पागी राम जो मन मारे अपना से पुरख बैरागी राम से जन बैरागी सच लिव लागी अपना आप पछाणिया मत निहचलियत गूड़ी गुरमुख सहजे नाम वखाणिया एक काम हितकारी माया मोहे प्यारी मनमुख सोए रहे अपागे नानक सहजे सेवै गुरे अपना से पूरे वडभागे वडहंस महला तीजा रतन पदार्थ वणजिया सतगुर दिया बुझाई राम लाहा लाभ हर भगत है गुणमय गुणी समाई राम गुणमय गुणी समाए जिस्या बुझाए लाहा भगत संसारे बिन भगती सुख ना होई दूजे पद खोई गुरमत नाम आधारे वखर नाम सदा लाभ है जिसनो एतवा पार लाए रतन पदार्थ वन जी है जा सतगुर दे बुझाए माया मोह सब दुख है खोटा होवा पारा राम कूड़ बोल बेखावनी बो वदै विकारा राम बो वदै विकारा सह सहो संसारा बिन नाम पत खोई पढ़ पढ़ पंडित वाद वखाणा बिन बूझे सुख ना होई आवन जाना कदे ना चूकै माया मोह प्यारा माया मोह सब दुख है खोटा होवा पारा खोटे खरे सब परखिया नु ते सच्चा कै दरबारा राम खोटे दरगह सुटियन उबे करन पुकारा राम उबे करन पुकारा मुद गवारा मनमुख जन्म गवाया बिखिया माया जिन जगत भुलाया साचा नाम ना पाया मनमुख संता नाल वैर कर दुख हटे संसारा खोटे खरे परखियन ते सच्चा दरबारा राम आप करे किसे आखिया होर करना छूना जाई राम जित पावै तित लाए सी जो तिसदी वड्याई राम जो तिसदी वड्याई आप कराई वरियाम ना फुसी कोई जग जीवन दाता कर्म विधाता आपे बख्शे सोई गुर प्रसादी आप गवाई है नानक नाम पत पाई आप करे किसे आखिए होर करना किछु ना जाई वड़हंस महला तीजा सच्चा सौदा हर नाम है सच्चा वापारा राम गुरमती हर नाम पाई है अतमोल अफारा राम अतमोल अफारा सच वापारा सच वापार लगे वडभागी अंतर बाहर भगती राते सच नाम लिवलागी नदर करे सोई सच पाए गुर कै शब्द विचारा नानक नाम रते तिन्ही सुख पाया साचे के वापारा हमें माया मैल है माया मैल पुरी जय राम गुरमति मन निर्मला रसना रस पी जय राम रसना हर रस पी जय अंतर पी जय साच शब्द बिचारी अंतर खूहटा अमृत भरिया शब्दे काढ़ पिए पनिहारी जिस नजर करे सोई सच लागै रसना राम रिविजय नानक नाम रते से निर्मल होर हमै मैल भरीजै पंडित जोत की सब पढ़ पढ़ कूक दे किस पे करे पुकारा राम माया मोह अंतर मल लागै।

हम चात्रक दीन हर पास बेनंती, वड़हंस महला चौथा। हर कृपा कर सतगुर मेल सुदाता राम, हम पूछे सतगुर पास हर बाता राम। सतगुर पास हर बास पूछे जिन नाम पदार्थ पाया, पाए लगे नित करै बिनंती गुर सतगुर पंथ बताया। सोई भगत दुख सुख समत कर जाने, हर हर नाम हर राता। हर कृपा कर गुर सतगुर मिल सुखदाता, सुन गुरमुख नाम। साबिन से हो मैं पापा राम, जप हर नाम लथे अड़े जगता पराम। हर हर नाम जिनी आराध्या, तिनके दुख पाप निवारे। सतगुर ज्ञान खड़ग हथ दीना, जम कंकर मार बिदारे। हर हर हर प्रभ कृपा तारी, सुखदाते दुख लाथे पाप संतापा। सुन गुरमुख नाम, सब बिन से हम मैं पापा। जप हर नाम, मेरा मन पाया राम। मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम। गुरमुख जप सब रोग गवाया, अरुत पय शरीरा। अंदन सह समाध हर लागी, हर जपया गैर गंभीरा। जात या जात नाम जिन त्या

बेखंपयंगा अंत तरंगा गुरमुख पार लंघाए हर बोहित चाड़ बड़पागी लंघाए गुर खेवट शब्द दराए आन देनो हर रंग हर गुण गावे हर रंगी हर रंगा जन नानक निर्वाण पद पाया हर उत्तम हर पद चंगा कड़ियाल मुखे गुर ज्ञान दृढ़ाया राम तन प्रेम हर चाबक लाया राम तन प्रेम हर हर लाए चाबक मन जिने गुरमुख जीतिया अगड़ो गड़ावे शब्द पावे अप्यो हर रस पीतिया सुन सरवण बाणी गुर बखाणी हर रंग तुरी चढ़ाया महा मार्ग पंथ बिखड़ा जन नानक पार लंघाया कोड़ी ते जिन दे राम पाइया राम जित हर प्रभ जापै सा तन तन तुखाइया राम जित हर प्रभ जापै सा तन सा बासै तुर पाया किरत जुड़ंदा चढ़ देहड़ कोड़ी बिखमन गाए मिल गुरमुख परमानंदा हर हर काज रचाया पूरा मिल संत जना जाने आई जन नानक हर वर पाया मंगल मिल संत जना वादाई वढांस महला चौथा देहे तेज नड़ी हर नवरंगिया राम गुर ज्ञान गुरु हर मंगिया राम ज्ञान मंगी हर कथा चंगी हर नाम गत मित जानिया सब जन्म सफलियो किया करता हर राम नाम खानिया हर राम नाम सलाहे हर जप हर भगत हर जन मंगिया जन कहे नानक सुनो संतो हर भगत गोविंद चंगिया देहे कंचन जीन सुविन आराम जड़ हर हर नाम रतन आराम जड़ नाम रतन गोविंद पाया हर मिले हर गुण सोकने गुर शब्द पाया हर नाम ते आया वडभागी हर रंग हर बने हर मिले सुमामी अंतर जामी हर नव तन हर नवरंगिया नानक वखाणे नाम जाने हर नाम हर प्रमंगिया कड़ियाल मुखे गुर अंकस पाया राम मन मैंगल गुर शब्द वस आया राम मन वसगत आया परम पद पाया सातन कंत प्यारी अंतर प्रेम लगा हर सेती कर सोह हर प्रभ नारी हर रंग राती सहजे माती हर प्रभ हर हर पाया नानक जन हरदास कहत है वडभागी हर हर त्याया देह कोड़ी जी जित हर पाया राम मिल सतगुरु जी मंगल गाया राम हर गाए मंगल राम नामा हर सेव सेवक सेवकी प्रभ जाए पावे रंग महली हर रंग माने रंग की गुण राम गाए मन सुभाए हर गुरमति मन त्याया जन नानक हर कृपा तारी देह कोड़ी चढ़ हर पाया राग वडहंस महला पंजवा शंत कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद

गुण अवगुण मेरा किशना विचारिया, बक्सली आखिन माही। नौनित पाई वजी वधाई, वाजे अनहद तूरे, कहो नानक मैं वार कर पाया, मेरे लाथे जी सगल विसूरे। सलोक क्या सुने दे कूड़, वंजन पवन चुलारिया, नानक सुनी अरते प्रवान, जो सुने दे सच धनी संत। तिन कोल कुमाई जिन प्रभ सरवनी सुनिया राम, से सहे सुहेले जिन हर हर रसना भणिया राम। से सहे सुहेले गुणे अमोले, जगत उदारने आए, पै बोहिथ सागर प्रभ चरणा, केते पार लंगाए। जिन कहो कृपा करी मेरा ठाकरो, तिनका लेखा ना गणिया, कहो नानक तिस कोल कुमाई जिन प्रभ सरवनी सुनिया। सलोक लोइन लोई डिठ, प्यास ना बुझै मूकणी, नानक से अखड़िया बयान, जिनी डसन दो मां पिरी संत। जिनी हर प्रभ डिठा तिन कुरबाने राम, से साची दरगै पाने राम। ठाकुर माने से प्रधाने, हर से ती रंग राते, हर रस अगाए सही समाए, कट कट रमैया जाते। सही सज्जन संत से सुखिए, ठाकुर अपने पाने, कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा तिन कै सतगुरबाणे। सलोक देह अंधारी अंध सुनी ना विहुनिया, नानक सफल जनम जय कट उठा सच तनी संत। तिन खनी है वन्या जिन मेरा हर प्रभ डिठा राम, जन चाखिया गाने हर हर अमृत मीठा राम। हर मने मीठा प्रभु तूठा, अम्यो उठा सुख पए, दुख नाश परम विनाश तंते, जप जगदीश ईसै जय जय। मोह रहत बेकार थाके, पंच ते संग तूटा, कहो नानक तन खनिया वन्या, जिन कट मेरा हर प्रभु उठा। सलोक जो लोड़ी दे राम, सेवक से ही कंडिया, नानक जाने सत साई संत ना बाहरा। संत मिल जल जलै खटाना राम, संग ज्योति ज्योत मिलाना राम। समाए पूर्ण पुरख करते, आपे आपे जानी है, तह सुन सह समाध लागी, एक एक वखाणी है। आप भुगता आप मुगता, आप आप वखाना, नानक भ्रम पै गुण बिनासे, मिल जल जलै खटाना। वडहंस महला पंजवा, प्रभ करण कारण समरथा राम, रख जगत सगल दे हथा राम। समरथ सरना जोग स्वामी, कृपा निध सुखदाता, हां कुरबाणी दास तेरे जिन्नी एक पछाता। वर्ण चिहन ना जाए लखिया, कथन ते अकथा, बिनवंत नानक सुनो बिनती, प्रभ करण कारण समरथा। एह जी तेरे तू करता राम, प्रभ दुख दर्द भ्रम हरता राम। भ्रम दुख दर्द निवार खिन मैं, रख ले हो दीन दयाला, मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला। जो सरने आवै गुण निधान पावै, सो बहुत जन्म ना मरता, बिनवंत नानक दास तेरा, सब जी तेरे तू करता। आठ पैर हर त्याई है राम, मन इच्छा फल पाई है राम। मन इच्छ पाई है प्रभ त्याई है, मिटै जमके त्रासा। गोविंद गाया सा संगाया, पई पूर्ण आसा। तज मान मोह विकार सगले, प्रभु कै मन पाई है, बिनवंत नानक दिन सरैणी, सदा हर हर त्याई है। दर वाजे अनहद वाजे राम, घट घट हर गोविंद गाजे राम। गोविंद गाजे सदा बिराजे, अगमा गोचरी उच्चा, गुण बेअंत किश कहण न जाई, कोय ना सकै पहुचा। आप उपाए आप प्रतपाले, जी जंत सब साजे, बिनवंत नानक सुख नाम भगती, दर वजे अनहद वाजे। राग वढ़ंस महला पहला, घर पंजवा अलाहणिया, एको अंकार सतगुर प्रसाद। तन सरंदा सच्चा पातशाह,
ਜਿਨ ਜਗ ਤੰਦੈ ਲਾਇਆ ਮੋਹਲਤ ਪੁੰਨੀ ਪਾਈ ਭਰੀ ਜਾਨੀ ਆੜਾ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾਨੀ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਰੁਨੇ ਵੀਰ ਸਬਾਏ ਕਾਇਆ ਹੰਸ ਥੀਆ ਵਿਛੋੜਾ ਜਾਂਦਨ ਪੁੰਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਤਿਹਾ ਪਾਇਆ ਜਿਹਾ ਪੁਰਬ ਕਮਾਇਆ ਧਨ ਸਰੰਦਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਿਨ ਜਗ ਤੰਦੈ ਲਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋ ਸਭਨਾ ਇਹੋ ਪਿਆਣਾ ਐਥੇ ਤੰਦਾ ਕੂੜਾ ਚਾਰ ਦਿਹਾ ਅੱਗੇ ਸਰ ਪਰ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਸਰ ਪਰ ਜਾਣਾ ਜੋ ਮਹਿਮਾਨਾ ਕਾਹੇ ਗਰਭ ਕੀਜੈ ਜਿਤ ਸੇਵੈ ਦਰਗਹਿ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਨਾਮ ਤਸੈ ਕਾ ਲੀਜੈ ਆਗੈ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੈ ਮੂਲੇ ਸਿਰ ਸਿਰ ਕਿਆ ਵਿਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋ ਸਭਨਾ ਇਹੋ ਪਿਆਣਾ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸਮਰੱਥ ਸੋ ਥੀਐ ਹੀਲੜਾ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰੋ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਾਚੜਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ ਸਾਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ ਅਲਖਿਆ ਪਾਰੋ ਤਾਂ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਆਇਆ ਤਿਨਕਾ ਸਫਲ ਭਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਮਨ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ ਟਾਹੇ ਟਾਹੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰੋ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸਮਰੱਥ ਸੋ ਥੀਐ ਹੀਲੜਾ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰੋ ਨਾਨਕ ਰੁਨਾ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀਐ ਜੇ ਰੋਵੈ ਲਾਏ ਪਿਆਰੋ ਵਾਹ ਲੇਵੇ ਕਾਰਨ ਬਾਬਾ ਰੋਈਐ ਰੋਵਣ ਸਗਲ ਬੇਕਾਰੋ ਰੋਵਣ ਸਗਲ ਬੇਕਾਰੋ ਗਾਫਲ ਸੰਸਾਰੋ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਰੋਵੈ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਕੇ ਸੂਜੈ ਨਾਹੀ ਉਹ ਤਨ ਏ ਵੈ ਖੋਵੈ ਐਥੇ ਆਇਆ ਸਭ ਕੋ ਜਾਸੀ ਕੂੜ ਕਰੋ ਅਹੰਕਾਰੋ ਨਾਨਕ ਰੁਨਾ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀਐ ਜੇ ਰੋਵੈ ਲਾਏ ਪਿਆਰੋ ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਵੋ ਮਿਲੋ ਸਹੇਲੀ ਹੋ ਸੱਚੜਾ ਨਾਮ ਲਏ ਹਾਂ ਰੋਵੈ ਬਿਰਹਾ ਤਨ ਕਾ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਲੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਲ ਹੈ ਪੰਥ ਨਿਹਾਲ ਹੈ ਅਸਾਂ ਪੇ ਉਥੇ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਤਿਨਹੀ ਲੀਆ ਹੋਵਾ ਤਸੈ ਕਾ ਪਾਣਾ ਜੋ ਤਿਨ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕਰੇਹਾ ਆਵੋ ਮਿਲੋ ਸਹੇਲੀ ਹੋ ਸੱਚੜਾ ਨਾਮ ਲਏ ਹਾਂ ਮਰਨ ਨਾ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਖੀਐ ਜੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਐਸਾ ਕੋਏ ਸੇਵੋ ਸਾਹਿਬ ਸਮਰੱਥ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਸੁਹੇਲਾ ਆਗੈ ਹੋਏ ਪੰਥ ਸੁਹੇਲੈ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਵੋ ਆਗੈ ਮਿਲੈ ਵਡਾਈ ਭੇਟੈ ਸਿਉਂ ਜਾਵੋ

है, मरण मुनसा सूर्या हक है, जो होए मरण परवानो, सूर्य से ही आज्ञा आखी है, दरगह पावे साची मानो, दरगह मान पावे पत स्यों जावे, आगे दुख न लागे, कर एक ते आवे ता फल पावे, जित सेवे पहु भागे, ऊंचा नहीं कहना मन में रहना, आपे जाने जानो, मरण मुनसा सूर्या हक है, जो होए मरे परवानो, नानक किसनो बाबा रोई है, बाजी है ओ संसारो, कीता वेखै साहब अपना, कुदरत करे बिचारो, कुदरत बिचारे तारण तारे, जिन किया सो जाने, आपे वेखै आपे बूझै आपे हुक्म पछाणै, जिन किश किया सोई जाने, ता का रूपया पारो, नानक किसनो बाबा रोई है, बाजी है एहो संसारो, बड़हंस महला पहला दखनी, सच सरंदा सच्चा जानिए, सचड़ा पर्वत गारो, जिन आपी ने आप साजिया, सचड़ा लाखिया पारो, दोए पुड़ जोड़ विछोड़ियान, गुरबिन कोरिया दारो, सूरज चंद सिरजियान, अहनिस चलत विचारो, सचड़ा साहेब सच तू सचड़ा देह प्यारो रहाओ, तुद सिर जिनी मेदनी, तुद सिर जी मेदनी, दुख सुख देव नहारो, नारी पुरख सिर जिया बिख माया मोह प्यारो, खानी बाणी तेरिया देह जिया आधारो, कुदरत तख्त रचाया सच नवेण नहारो, आवागमन सिर जिया तू थिर करना हारो, जमन मरना आए गया बदक जियो बिकारो, पूंडड़ै नाम विसारिया बूढ़ड़ै क्या तिस्चारो, गुण छोड़ बिखलदया अवगुण कावण जारो, सदड़े आए तना जानिया हुक्म सचे करतारो, नारी पुरख विछुनिया विछड़िया मिलन हारो, रूप ना जाने सोहनिया हुक्म बदी सरकारो, बालक बिरत ना जाननी तोन हेत प्यारो, नौदर ठाके हुक्म सचै हंस गया गैनारे, सा तन छुट्टी मुठी झूठ विदनिया, मृत कड़ा अंगनड़े बारे, सुरत मुई मरमाइए महल रुनी दरबारे, रवो कंत मेह लिहो सच्चे के गुण सारे, जल मल जाली ना वालिया कपड़ पटिया बारे, वाजे वजे सच्ची बाणिया पंच मोए मन मारे, जानी विछुनड़े मेरा मरण भया त्रिग जीवन संसारे, जीवत मरे सो जानी है फिर सचड़ा हित प्यारे, तुसी रोवो रोवन आई हो झूठ मुठी संसारे, हाँ मुठड़ी तंदे तावनिया फिर छोड़ियाड़ी विदन कारे, कर कर कंत महेलिया रूड़ै हित प्यारे, मैं फिर सच सलाहना हौरे सियाड़िए नाम पतारे, गुर मिलिया वेस पलटिया सा तन सच सिंगारो, आवो मिलो सहेलियो सिमरो सिरजन हारो, बैयर नाम सुहागणी सच सवारन हारो, गावो गीत ना बिरहड़ा नानक ब्रह्म विचारो, वड़हंस महला पहला, जिन जग सिरज समाया सो साहिब कुदरत जानो वा, सचड़ा दूर ना पाली है कड़कड़ शब्द पछाणो वा, सच शब्द पछाणो दूर ना जानो, जिन एह रचना राची नाम ते आए ता सुख पाए, बिन नामे बिड़काची जिन थापी बिद जाने सोई, क्या को कहे वखाणो, जिन जग थाप वताया जालो सो साहिब परवानो, बाबा आया है उठ चलना अद पंद है संसारो वा, सिर सिर सचड़े लिखिया दुख सुख प्रभ विचारो वा, दुख सुख दिया जेहा किया सो निबह जी नाले, जेहे कर्म कराए करता दूजी कार ना पाले, आप निरालम तंदे बांधी कर हुक्म छड़ावन हारो, अज कल करदिया काल व्यापै दूजे पाए विकारो, जम मार्ग पंथ ना सुजई उजड़े अंध गवारो वा, ना जल लेप तो लाइया ना भोजन प्रकारो वा,
ਭੋਜਨ ਭਾਉ ਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕਾਪੜ ਸਿੰਗਾਰੋ ਗਲ ਸੰਗਲ ਸਿਰ ਮਾਰੇ ਉਬੋ ਨਾ ਦਿਸੈ ਘਰ ਬਾਰੋ ਇਬਕੇ ਰਾਹੇ ਜਮਨ ਨਾਹੀ ਪਛਤਾਣੇ ਸਿਰ ਪਾਰੋ ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਕੋ ਬੇਲੇ।

रोवै कंत संभाल सदा गुण सार ना फिर मरै ना जाए गुरमुख जाता शब्द पछाता साचा प्रेम समाए जिने अपना पिर नहीं जाता कर्म विधाता कूड़ मुठी कूड़ आरे सुनियो कंत महेलियो पिर सेवो शब्द विचारे सब जग आप पाए ओनो।

अपने गुर कहो तन मन दीजै ता मन भीजै तृष्णा दुख निवारे मैं फिर सच पछाणिया होर भूली अवगण यारे सचड़ा आप जगत उपाया गुर बिन कोर अंधारो आप मिलाए आप मिलाए आपे दे प्यारो आपे दे प्यार।

मन हर जब मीठा लागे भाई, गुरमुख पाए हर थाए रहाओ। बिन गुर प्रीत ना उपजै भाई, मनमुख दूजै पाए तोह कुटै। मनमुख कर्म करै भाई, पल्लै किछु ना पाए। गुर मिलै ना मन रव्या भाई, साची प्रीत प्यार। सदा हर के गुण रवै भाई, गुर कै हित अपार। आया सो प्रमाण है भाई, जे गुर सेवा चित लाए। नानक नाम हर पाई भाई, गुर सबदी मेलाए। सोरठ महला तीजा कर पहला, तिही गुणी त्रिपवन व्यापिया पाई। गुरमुख बूझ बुझाए, राम नाम लग छुटिया पाई। पूछो ज्ञानिया जाए, मन रे त्रै गुण छोड़ चौथे चित लाए। हर जियो तेरे मन वसै भाई, सदा हर के गुण गाए रहाओ। नामै ते सब उपजै भाई, नाए विसरिया मर जाए। अज्ञानी जगत अंध है भाई, सूते गए मुहाए। गुरमुख जागे से उबरे भाई, पवजल पार उतार। जग में लाहा हर नाम है भाई, हृदय रखिया उतार। गुर सरनाई उबरे भाई, राम नाम लिवलाए। नानक नाव बेड़ा नाव तुलहड़ा भाई, जित लग पार जन पाए। सोरठ महला तीजा कर पहला, सतगुर सुख सागर जग अंतर। होर थै सुख नाही, हौ मैं जगत दुख रोग व्यापिया। मरजन मैं रोवै ताही, प्राणी सतगुर सेव सुख पाए। सतगुर सेवै ता सुख पावै, नाहे ता जाहेगा जन्म गवाए रहाओ। त्रै गुण तात बहु कर्म कमावै, हर साधना आया। संध्या तर्पण करै गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सोवड भागी, जिसनो वाह मिलाए। हर रस पी जन सदा तृप्ता से, विचों आप गवाए। एहो जग अंदा सब अंध कमावै, बिन गुर मग ना पाए। नानक सतगुर मिलै ता अखी वेखै, करै अंदर सच पाए। सोरठ महला तीजा, बिन सतगुर से

हर नाम देवहो आधारे रहाओ। मनसा मार दुबदा सै सुमानी पाया नाम अपारा। हर रस चाख मन निर्मल होवा क्रिविख कटणु हारा। शब्द मरो फिर जीवो सद ही ता फिर मरना होई। अमृत नाम सदा मन मीठा शब्दे पावै कोई। दातै दात रखी हथ अपने जिस पावै तिस देई। नानक नाम रते सुख पाया दरगह जा पैसे ही। सोरठ महला तीजा सतगुर सेवे ता सहज तुन उपजै। गातमा तो तद ही पाए हर का नाम सच्चा मन वसिया नामे नाम समाए। बिन सतगुर सब जग बौराना मन मुख अंदा शब्द ना जाने। झूठे परम भुलाना रहाओ त्रै गुण माया परम भुलाया। हौ मैं बंधन कमाए जमन मरन शरी उपर उबो गर्भ जौन दुख पाए। त्रै गुण वरतै सगल संसारा हौ मैं विच पत खोई। गुरमुख होवै चौथा पद चीनै राम नाम सुख होई। त्रै गुण सब तेरे तू आपे करता जो तू करै सो होई। नानक राम नाम निस्तारा सबदे हम मैं खोई। सोरठ महला।

आपे वणजवा पारिया प्यारा, आपे सचवे साहो, जप मन हर हर नाम सलाहा, गुर कृपा ते पाईए प्यारा, अमृत अगम्या थाहा रहाओ। आपे सुन सब वेखदा प्यारा, मुख बोले आप मुहाओ, आपे उजड़ पाएंदा प्यारा, आप विखाले राहो। आपे ही सब आप है प्यारा, आपे वे प्रवाहो, आपे आपो पाएंदा प्यारा, सिर आपे तंदड़ाए लाहो। आप कराए साखती प्यारा, आप मारे मर जाहो, आपे पतन पातनी प्यारा, आपे पार लंगाहो। आपे सागर बोए था प्यारा, गुर खेवटे आप चलाहो, आपे ही चढ़ लंघदा प्यारा, कर चोज वेखे पातशाहो। आपे आप दयाल है प्यारा, जन नानक बख्श मिलाहो, सोरठ महला चौथा चौथा। आपे अंडज जेरज सेतज उत्पुज, आपे खंड आपे सब लोए, आपे सूत आपे बहुमणिया, कर सकती जगत परोए। आपे ही सूत धार है प्यारा, सूत खिंचे टह टेरी होए, मेरे मन मैं हर बने वरना कोए, सतगुर विच नाम निदान है प्यारा, कर दया अमृत मुख चोए रहाओ। आपे जल थल सबत है प्यारा, प्रभ आपे करे सो होए, सबना रिजक समाह।

बन बकरी सी हो हडाया, आपे काष्ट आप हर प्यारा, विच काष्ट अग्न रखाया, आपे ही आप वरतदा प्यारा, पै अग्न ना सकै जलाया, आपे मर जीवाइंदा प्यारा, सह लैंदे सब लवाया, आपे तान दीवान है प्यारा, आपे घर लाया, जो आप चलाए त्यों चली है प्यारे, जो हर प्रभ मेरे पाया, आपे जंती जंत है प्यारा, जन नानक वजह वजाया, सोरठ महला चौथा, आपे सृष्टियों पाइंदा प्यारा, कर सूरज चंद चाणान, आपने ताणिया तान है प्यारा, आपने माणिया मान, आप दया कर रखदा प्यारा, आपे सूड सुजान, मेरे मन जप राम नाम निशान, सत संगत

संत संग जाका मन शीतल ओह जाने सगली ठंडी। हम मैं रोग जाका मन व्यापत ओह जन्म मरै बिललाती। ज्ञान अंजन जाकी नेत्री पढ़िया ता कौ सर्व परगासा। अज्ञान अंधेरै सूझस नाही बहुड़ बहुड़ परमाता। सुन बेनंती स्वामी अपने नानक एहो सुख मांगै। जह कीर्तन तेरा साधु गावै तह मेरा मन लागै। सोरठ महला पंजवा। तन संतन का धन संतन का मन संतन का किया। संत प्रसाद हर नाम ते आया सर्व कुशल।

कोट पराध मिटे जन सेवा हर कीर्तन रस गाई है। इहां सुखिया गै मुख उजल जन का संग वड भागी पाई है। रसना एक अनेक गुण पूर्ण जन की केतक उपमा कही है। अगमा गोचर सद अविनाशी शरण संतन की लही है। निर्गुण नीच अनाथ अपराधी।

जरा मरा ताप सब नाठा गुण गोबिंद नित गावो सुनी अरदास स्वामी मेरा सर्व कला बने आई प्रगट पई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई। सोरठ महला पंजवां घर दूजा चौपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी हर दर्शन देहो दिखाई सुन मीता तूरी कौ बल जाई एह मन तेरा भाई रहाओ पाव मिलोवा मल मल तोवा एह मन तैकू देसा सुन मीता हो तेरी सरनाई आया प्रभ मिलो देहो उपदेसा मान ना की जय शरण परी जय करै सो पला मनाई सुन मीता जियो पिंड सब तन अर्पी जय इउं दर्शन हर जियो पाई है भयो अनुग्रह प्रसाद संतन कै हर नामा है मीठा जन नानक कौ गुर किरपा धारी सबा कुल निरंजन डीठा सोरठ महला पंजवा कोट ब्रह्मांड को ठाकर स्वामी सर्व जिया का दाता रे प्रतपाले नित सार संभाले एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे हर आराधना जाना रे हर हर गुर गुर करता रे हर जियो नाम परयो रामदास रहाओ दीन दयाल कृपाल सुख सागर सर्व घटा पर पूरी रे पेखत सुन तो सदा है संगे मैं मूर्ख जानिया दूरी रे हर बेअंत हो मित कर वरनाओ क्या जाना हो कैसो रे करो बेनती सतगुरे अपने मैं मूर्ख देहो उपदेसो रे मैं मूर्ख की केतक बात है कोट परा दी तरिया रे गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भासना भरिया रे सोरठ महला पंजवां जिन्ना बात को बहुत अंदेसरो ते मिटे सब गया सह सैन यार सुख मन नारी ऊंद कमल बिगसया देखो अचरज पाया जे ठाकर कहो सुनते अगाद बोध सोरदय गुरदया रहाओ जोए दूत मोहे बहुत संतावत ते भयानक भया करै बेनती राग ठाकर ते हम तेरी सरनाया जह भंडार गोबिंद का खुलिया जे प्राप्त ते लया एक रतन मोको गुरदीना मेरा मन तन शीतल थिया एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर नाम वा भगत भंडार गुरु नानक कौ सौपे फिर लेखा मूल नान लया सोरठ महला पंजवा चरण कमल स्यो जा का मन लीना से जन तृप्त अगाई गुणिया मोल जिस हृदय ना वसया ते नर तृष्ण त्रखाई हरिया राधे अरोग अनदाई जिसनो विसरै मेरा राम स्नेही तिस लाख बेदन जन आई रहाओ जिह जन ओट कही प्रभ तेरी से सुखिए प्रभ सरने जिह नर बिसरिया पुरख विधाता ते दुखिया मैं गरने जिह गुरमान प्रभु लिव लाई ते महा आनंद रस करया जिह प्रभु बिसार गुरते बेमुखाई ते नरक कोर मैं परया जित को लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा नानक सह पकरी संतन की हृदय पय मगन चरनारा सोरठ महल

हर जन को ही सुहावै पेख निकट कर सेवा सतगुरु हर कीर्तन ही तृप्तावै रहाओ अमलन स्यों अमली लपटायो पूमन पूम प्यारी खीर संग बार कह लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या मैं विद्यंसी रचिया नैन देख सुख पावै जैसे रसना साध लुभानी त्यों हर जन हर गुण गावै जैसी पूख हो तैसी का पूरक सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की प्रभ मिलिया अंतर जामी सोरठ महला पंजवा हम मैले तुम यूजल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूर्ख तुम चतर सियाने तू सर्व कला का ज्ञाता माधो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकर देसा रहाओ तुम सब साजे साज निवाजे जियो पिंड दे प्राणा निर्गुणी आरे गुण नहीं कोई तुम दान देहो मेरवाना तुम करो भला हम पलो ना जाने तुम सदा सदा दयाला तुम सुखदाई पुरख विदाते तुम राखो अपने बाला तुम निधान अटल सुल्तान जी जंत सब जाचे कहो नानक हम एह हवाला राग संतन कै पाचे सोरठ महला पंजवा कर दूजा मात गर्भ मैं अपन सिमरन दे तह तुम रखन हारे पावक सागर अथाह लहर मैं तारो तारन हारे माधव तू ठाकुर सिर मोरा इहां उहां तुहारो तुहरा रहाओ कीते कहो मेरे सम्मान करन हार तरन जाने तू दाता मांगन कहो सगली दान देहे प्रभ पाने खिन मैं अवर खिन मैं अवरा अचरज चलत तुम्हारे रूढ़ो गूढ़ो गहर गंभीर ऊंचो अगमे अपारे साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी आनंद पाया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी सोरठ महला पंजवा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की सरना संत हमारी ओट सतानी संत हमारा गहना हम संतन स्यों बने आई पूर्व लिखिया पाई एह मन तेरा पाई रहाओ संतन स्यों मेरी लेवा देवी संतन स्यों ब्योहारा संतन स्यों हम लाहा खाटिया हर भगत भरे भंडारा संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का तोखा धर्म राय अब कहां करै गो जो फाट्यो सगलो लेखा महा आनंद पय सुख पाया संतन कै प्रसादे कहो नानक हर स्यो मन मानिया रंग रते बिस्मादे सोरठ महला पंजवा जे

होई राजे राम की रखवाली, सुख सहज आनंद गुण गावो, मन तन देह सुखाली रहाओ। पत ते उदाहरणो सतगुर मेरा, मोहे तिसका परवासा, बख्श लय सब सच्चा साहेब, सुन नानक की अरदासा। सोरठ महला पंजवां, बख्शिया पार ब्रह्म परमेसर, सगले रोग बेदारे, गुरपुरे की सरनी उबरे, कार्ज सगल सवारे। हर जन सिमरिया नाम आधार, तापो तारिया सतगुर पूरे, अपनी कृपा तार रहाओ। सदा आनंद करह मेरे प्यारे, हर गोविंद गुर राखिया, वड्डी वड्याई नानक करते की, साच शब्द सतपाखिया। सोरठ महला पंजवां, पय कृपाल स्वामी मेरे, तित साचा दरबार, सतगुर ताप गवाया पाई, ठांड पई संसार। अपने जी जंत आपे राखे, जमै कियो हटतार, हर के चरण हृदय उरतार। सदा सदा प्रभ सिमरिए भाई, दुख किल बिख काटन हार रहाओ। तिसकी सरनी उबरै भाई, जन रचिया सब कोए, करण कारण समर्थ सो भाई, सच्चै सच्ची सोए। नानक प्रभु त्याई है भाई, मन तन शीतल होए। सोरठ महला पंजवां,

जिन जिन साध संग पाया सो प्रभ आप तराया, कर कृपा नाम रस दिया कुशल खेम सब थिया, होए प्रभु सहाई सब उठ लागी पाई, सास सास प्रभ त्याई है हर मंगल नानक गाई है, सोरठ महला पंजवा सुख सहज आनंदा, प्रभ मिलियो मन पावंदा, पूरे गुर कृपा तारी तांगत पई हमारी, हर की प्रेम भगत मन लीना, नित बाजे अनहत बीना रहाओ, हर चरण की ओट सतानी सब चूकी कान लुकानी, जग जीवन दाता पाया हर रसक रसक गुण गाया, प्रभ काटिया जमका फासा मन पूर्ण होई आसा, जै पेखा तै सोई हर प्रभ बिन अवर ना कोई, कर कृपा प्रभ राखे सब जन्म जन्म दुख लाथे, निरपव नाम ते आया अटल सुख नानक पाया, सोरठ महला पंजवा ठांड पाई करतारे, ताप छोड़ गया परवारे, गुरपूरा है राखी शरण सचे की ताकी, परमेसर आप हुआ रखवाला, सांत सहज सुखिन मैं उपजे, मन होवा

प्रभ अपना बिरद सुमारिया, हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया। गुर का शब्द भयो साखी, तन सगली लाज राखी। बोलाया बोली तेरा, तू साहिब गुणी गहेरा। चप नानक नाम सच साखी, अपने दास की पैज राखी। सोरठ महला पंजवा, विच करता पुरख खलोवा। वाल ना विंगा होवा, मज्जन गुरे आंदा रासे। जप हर हर किल विखनासे, संतो रामदास सरोवर निका। जो नावै सो कुल तरावै, उदार हुआ है जी का रहाओ। जय जयकार जग गावै, मन चिंदे अड़े फल पावै। सही सलामत नाए आए, अपना प्रभु ते आए। संत सरोवर नावै, सो जन परम गत पावै। मरे न आवै जाई, हर हर नाम ते आई। एहो ब्रह्म विचार सो जानै, जिस दयाल होए भगवानै। बाबा नानक प्रभ सरनाई, सब चिंता गणत मिटाई। सोरठ महला पंजवा, पार ब्रह्म निबाही पूरी। काई बात न रहिया ऊरी, गुर चरण लाए निस्तारे। हर हर नाम सुमारे, अपने दास का सदा रखवाला। कर कृपा अपने कर राखे, मात पिता ज्यों पाला रहाओ। फटभागी सतगुर पाया, जिन जम का पंथ मिटाया। हर भगत पाए चित लागा, जप जीवै से वटभागा। हर अमृत बाणी गावै, साधा की धूरी नावै। अपना नाम आपे दिया, प्रभ करण हार रख लिया। हर दर्शन प्राण आधारा, एहो पूर्ण बिमल बिचारा। कर कृपा अंतर जामी, दास नानक शरण स्वामी। सोरठ महला पंजवा, गुरपूरे चरनी लाया। हर संग सहाई पाया, जय जाइए तहां सुहेले। कर कृपा प्रभ मेले, हर गुण गावो सदा सुभाई। मन चिंदे सगले फल पावो, जी कै संग सहाई रहाओ। नारायण प्राण आधारा, हम संत जनारे नारा। पतत पुनीत कर लीने, कर कृपा हर जस दीने। पार ब्रह्म करे प्रतपाला, सद जी संग रखवाला। हर दिन रहन कीर्तन गाइयै, बहुना जोनी पाइयै। जिस देवै पुरख बिदाता, हर रस्ते नहीं जाता। जम कंकर नेड़ ना आया, सुख नानक सरणी पाया। सोरठ महला पंजवा, गुरपूरै कीती पूरी। प्रभ रव रहया परपूरी, खेम कुशल पया इस नाना। पार ब्रह्म विटो कुर्बाना, गुर के चरण कवल रिद तारे। बिघन ना लागै तिलका कोई, कार्ज सगल सवारे रहाओ। मिल साधु दुर्मत खोए, पतत पुनीत सब होए। रामदास सरोवर नाते, सब लाथे पाप कमाते। गुण गोबिंद नित गाइयै, साध संग मिलत आइयै। मन बाइत फल पाए, गुरपूरा हृदय ते आए। गुर गोपाल आनंदा, जब जब जीवै परमानंदा। जन नानक नाम ते आया, प्रभ अपना बिरद रखाया। राग सोरठ महला पंजवा, दह दिस छतर मेघ कटा घट। दामन चमक डरायो, सेज अकेली नींद नौ नैना। पिर परदेस सिधायो, हुण नहीं संदेसरो मायो। एक कोसरो सिद्ध करत लाल, तब चतर पात्रो आयो रहाओ। क्यों बिसरै ओ लाल प्यारो, सर्ब गुणा सुखदायो। मंदर चरकै पंथ निहारो, नैन नीर पर आयो।
हाउ हाउ पीत पयो है बीचो सुनत देश निकटायो पां बीरी के पात पर दो बिन पेखे दूर आयो पयो कृपाल सर्ब को ठाकरो सगरो दुख मिटायो कहो नानक हो मैं पीत गुर खोई तो दयार बीठ लो पायो सब रहो अंदेसरो मायो जो चाहत सो गुरु मिलायो सर्व गुणा निदरायो रहाओ दूजा सोरठ महला पंजवां गई बहोड़ बंदी छोड़ निरंकार दुखदारी कर्म ना जाना धर्म ना जाना लोभी माया तारी नाम परयो भगत गोविंद का एह राखो पैज तुम्हारी तो

जैसा बालक भाए सुभाई लख अपराध कमावै, कर उपदेश चिड़के बहु भांति बहुड़ पिता गल लावै। पिछले अवगुण बख्श लए प्रभु आगे मार्ग पावै, हर अंतर जामी सब जाणै ता किस पै आख सुनाई है। कहना कथन ना पीजै गोविंद हर भावै पैज रखाई है। अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाई है। होए दयाल किरपाल प्रभ ठाकरो आपे सुने बेनंती, पूरा सतगुर मेल मिलावै सब चूकै मन की चिंती। हर हर नाम अवखद मुख पाया जन नानक सुख वसंती। सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभय आनंदा, दुख कले सब नाठे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना, कार्य सगले संठे। जग जीवन नाम तुम्हारा गुरपुरै दियो उपदेसा, जा पौजल पार उतारा रहाओ।

क्या गुण तेरे आख वखाणी, कीमत कहन न जाई, पेख पेख जीवै प्रभ अपना, अचरज तुम्हें वडाई, तार अनुग्रहो आप प्रभ स्वामी, पत मत कीनी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी, बांचो संता तूरी, सोरठ महला पंजवां, गुरपुरा नमस्कारे, प्रभ सबे काज सवारे, हरे अपनी कृपा तारी, प्रपूर्ण पै सवारी, अपने दास को पयो सहाई, सगल मनोरथ कीने करते, ऊनी बात ना काई रहाओ, करते पुरख ताल देवाया, पिछे लग चली माया, तोट ना कतहूं आवै, मेरे पूरे सदगुर पावै, सिमर सिमर दयाला, सब जी पय कृपाला, जय जयकार गोसाई, जिन पूरी बणत बनाई।

प्रभ अपने वर दीने सगल जीव असकीने जन नानक नाम ते आया ता सगले दुख मिटाया। सोरठ महला पंजवा ताप गवाया गुरपुरे वाजे अनहद तूरे सर्ब कल्याण प्रभ कीने कर कृपा आप दीने। बेदन सतगुरे आप गवाई सिख संत सब सरसे होए हर हर नाम ते आई रहाओ। ज्यो मंगे सो लेवै प्रभ अपने संतां देवै हर गोविंद प्रभ राखिया जन नानक साज सुपाखिया। सोरठ महला पंजवां सोई कराए जोत पावै मुहे सियाणप कछु ना आवै हम बारक तौ शरण आई प्रभ आपे पैज रखाई मेरा मात पिता हर राया। कर कृपा प्रतपालन लागा करी तेरा कराया रहाओ। जी जंत तेरे तारे प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे जेकरा वैसो करना नानक दास तेरी सरना। सोरठ महला पंजवा हर नाम हृदय परोया सब काज हमारा होया। प्रभ चरणी मन लागा पूर्ण जाके भागा मिल साध संग हर त्याया। आठ पहरिया राध्यो हर हर मन चिंदिया फल पाया रहाओ। परा पुरबला अंकर जागया राम नाम मन लागया मन तन हर दर्श समावै। नानक दास सच्चे गुण गावै सोरठ महला पंजवा गुरमिल प्रभु चितारिया कार्ज सब सवारिया मंदा को नाया लाए सब जय जयकार सुनाए। संतो साची शरण स्वामी जी जंत सब हाथ सहकै सुप्रभ अंतर जामी रहाओ। करतब सब सवारे प्रभ अपना बिरद समारे पतत पावन प्रभ नामा जन नानक सतगुरबाना। सोरठ महला पंजवा पार ब्रह्म साज सवारिया एहो लहुड़ा गुरु उबारिया आनंद करो पित माता परमेश्वर जी का दाता। शुभ चितवन दास

मुकत पंथ जानो तै नाहन तन जोरन कौ ताया अंत संग काहू नहीं दीना बिरथा आप बंधाया ना हर भजियो ना गुरजन सेवियो नहीं उपजियो कछ ज्ञाना कट ही माए निरंजन तेरे तै खोजत उद्याना बहुत जन्म परमत तै हारियो अस्थिर मत नहीं पाई मानस देह पाए पद हर भज नानक बात बताई सोरठ महला नावा मन रे प्रभ की शरण बिचारो जय सिमरत गण कासी उदरी ताको जस उतारो रहाओ अटल भयो त्रु जा कै सिमरन अर निरपै पद पाया दुख हरता ए बिद को स्वामी तै काहे बिसराया जब ही शरण गही कृपा निद गज ग्रह ते छूटा महिमा नाम कहां लो बरनाओ राम कहत बंधन ते टूटा अजा मल पापी जग जाने निमख माहे निस्तारा नानक कहत चेत चिंता मन तैं पी उतरै पारा

करई। कौन नाम गुरजा कै सिमरै पव सागर कौ तरई। कल मैं एक नाम कृपा निध जाहें जपै गत पावै। और धर्म ताकै समनाहन एह बिद बेद बतावै। दुख सुख रहत सदा निरलेपी जा को कहत गोसाई। सो तुम ही मैं बसै निरंतर नानक दर्पण न्याई। सोरठ महला नावा माई मैं कह बिद लखो गोसाई। महामोह अज्ञान तिमर मो मन रहो उरजाई रहाओ। सगल जन्म परम ही परम खोयो न असर मत पाई। बिख्या सकत रहो निस्बासर न छूटी अदमाई। साध संग कबू नहीं कीना न कीर्त प्रभ गाई। जन नानक मैं नाहे को गुण राख लेहो सरनाई। सोरठ महला नावा माई मन मेरो बस ना है। निस्बासर बिख्यान कौतावत कह बिदरो कौताहे रहाओ। वेद पुराण सिमरत के मत सुनो निमख ना हिये बसावै। पर धन परदारा सिउ रचियो बिरथा जन्म सिरावै। मद माया कै पयो बावरो सूजित न कछ ज्ञाना। कट ही पीतर बस्त निरंजन ताको मर्म न जाना। जब ही सरन साध की आयो दुर्मत सगल बिनासी। तब नानक चेत्यो चिंता मन काटी जमकी फासी। सोरठ महला नावा रे नर एह साची जी तार। सगल जगत है जैसे सुपना बिनसत लगत ना बार रहाओ। बारू पीत बनाई रच पच रहत नहीं दिन चार। तैसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवार। अजहू समझ कश बिगड़ो नाहन पज ले ना मुरार। कहो नानक निज मत साधन कहो पाख्यो तोहे पुकार। सोरठ महला नावा एह जग मीत ना देखियो कोई। सगल जगते अपने सुख लागेओ दुख में संग ना होई रहाओ। दारा मीत पूत सन बंदी सगरे तन स्यों लागे। जब ही निरतन देखियो नरकाओ संग छाड़ सब भागे।

बिख माया चित मोहया पाई चतराई पत खोए चित में ठाकर सच वसै पाई जे गुर ज्ञान समोए रूड़ो रूड़ो आखिए पाई रूड़ो लाल चलूल जे मन हर स्यों बैरागी है पाई दर कर साचा पूल पाता लिया कास तू पाई कर कर तू गुण ज्ञान गुर मिले सुख पाया पाई जूका मनो गुमान जल मल काया मांजिए पाई पी मैला तन होए ज्ञान महारस नाइए पाई मन तन निर्मल होए देवी देवा पूजिए पाई क्या मांगो क्या देहे पाहन नीर पखालिए पाई जल मैं बुढ़े तेहे गुर बिन अलख ना लखिए पाई जग बूढ़े पत खोए मेरे ठाकर हाथ वड्याईया पाई जय पावे तें दे बैयर बोले मिठली पाई साच कह पिर पाए बिरह बेदी सच वसी पाई अदक रही हर नाए सब को आखे अपना पाई गुरते बुझे सुजान जो भी दे से उबरे पाई शब्द सच्चा निशान ईंधन अदक सकेलिए पाई पाव करन चक पाए खिन पल नाम हृदय वसै पाई नानक मिलन सुभाए सोरठ महला तीजा कर पहला ते तुकी एको अंकार सतगुर प्रसाद भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो तुर तू रखदा आया प्रहलाद जन तुद राख लय हर जियो हरनाक समार पजाया गुरमुखा नो प्रतीत है हर जियो मनमुख परम भुलाया हर जी एह तेरी वडियाई भगता की पैज रख तू स्वामी भगत तेरी सरनाई रहाओ भगता नु जम जोहे ना साकै काल ना नेड़े जाई केवल राम नाम मन वसिया नामे ही मुक्त पाई अरिद सिद्ध सब भगता चरणी लागी गुर कै सह सुबाई मन मुखा नु प्रतीत ना आवई अंतर लोभ सुवाओ गुरमुख हृदय शब्द ना भेदियो हर नाम ना लागा पाओ कूड़ कपट पाज लह जासी मनमुख फीका या लाओ भगता विच आप वरतदा प्रभ जी भगती हूं तू जाता माया मोह सब लोक है तेरी तू एको पुरख विधाता हों मैं मार मन सामने समाणी गुर कै शब्द पछाता अचिंत कम करे प्रभ तिनके जिन हर का नाम प्यारा गुर प्रसाद सदा मन वसिया सब काज सवार नहारा ओना की रीस करे सो विगुचै जिन हर प्रभ है रखवारा बिन सतगुर सेवे के

आओ गुर की कार कमावनी पाई, आप छोड़ चित लाए, सदा सहज फिर दुख न लग गई पाई, हर आप वसै मन आए, फिर का हुक्म ना जान पाई, सा कु लखनी कुनार, मन अठकार कमावनी पाई, विणना में कूड़ियार, से गावे जिन मस्तक भाग है पाई, पाए सच्चे बैराग, आंदन राते गुण रवे पाई, निरपो गुर लिवलाग, सबना मार जीवाल दा पाई, सो से वो दिन रात, सो क्यों मनो विसारी है पाई, जिसकी वड्डी है दात, मनमुख मैली डुमनी पाई, दरगे नाही थाओ, गुरमुख होवे ता गुण रवे पाई, मिल प्रीतम साहि समाओ, एत जन्म हर ना चेत्यो पाई, क्या मोह देसी जाए, किड़ी पवंदी मोहायोन पाई, बिख्या नो लोभाए, नाम समालै सुख वसै पाई, सदा सुख सांस शरीर, नानक नाम समाल तू पाई, अपरंपर गुणी गहीर, सोरठ महला पंजवा, कर पहला अष्टपदिया एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, सब जग जिनै यो पाया पाई, करण कारण समरथ, जियो पिंड जिन साजिया पाई, दे कर अपनी वथ, किन कहिया क्यों देखिए पाई, करता एक या कथ, गुरु गोविंद सलाहिए पाई, जिस ते जापै तथ, मेरे मन जपिए हर भगवंता, नाम दानो दे जन अपने, दुख दर्द का हंता रहाओ, जा कै कर सब किश है पाई, नौनिद परे पंडार, तिसकी कीमत ना पवै पाई, ऊंचा गम अपार, जी जंत प्रतपाल दा पाई, नित नित करदा सार, सतगुर पूरा भेटिए पाई, शब्द मिलावनहार, सच्चे चरण सिरेविय पाई, परंप हो वै नास, मिल संत सभा मन मांजिए पाई, हर कै नाम निवास, मिटे अंधेरा अज्ञानता पाई, कमल होवे प्रगास, गुर बचनी सुखी उपजे पाई, सब फल सतगुर पास, मेरा तेरा छोड़िए पाई, होई है सब की तूर, कट कट ब्रह्म पसारिया पाई, पेख सुने हजूर, जित दिन विसरे पार ब्रह्म पाई, तित दिन मरिए चूर, करण करावन समर्थो पाई, सर्व कला भरपूर, प्रेम पदार्थ नाम है पाई, माया मोह विनाश, तिस पावे ता मेल ले पाई, हृदय नाम निवास, गुरमुख कमल प्रगासिय पाई, हृदय होवे प्रगास, प्रगट भया प्रताप प्रपाई, मौल्या तरत आकाश, गुरपूरे संतोखिया पाई, अहन सलागा पाओ, रसना राम रवै सदा पाई, साचा साध सुआओ, करनी सुन सुन जीविया पाई, निचर पाया था ओ, जिस पर तीत न आवे पाई, सो जीअड़ा जल जाओ, बहुगुण मेरे साहेब पाई, हों तिसके बल जाओ, ओह निर्गुणी आरे पालदा पाई, दे निथावे थाओ, रिजक संबाहे सास सास पाई, गूड़ा जाका नाओ, जिस गुर साचा पेटिए पाई, पूरा तिस करवाओ, तिस बिन कड़ी ना जीवी है पाई, सर्व कला भरपूर, सास ग्रास ना विसरै पाई, पेखो सदा हजूर, साधु संग मिलाया पाई, सर्व रहया भरपूर, जिन्ना प्रीत ना लगिया पाई, से नित नित मर दे चूर, अंचल लाए तराया पाई, पौ जल दुख संसार, कर कृपा नजर निहालिया पाई, कीतो ने अंग अपार,
ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਇਆ ਭਾਈ, ਭੋਜਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਸਰਣਾਗਤੀ ਪਾਈ, ਜੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਕੱਟਣ ਹਾਰ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮਾਤ ਗਰਬ ਦੁਖ ਸਾਗਰੋ ਪਿਆਰੇ, ਤਹਿ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ, ਬਾਹਰ ਕਾਢ ਬਿਖ ਪਸਰੀਆ ਪਿਆਰੇ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਧਾਇਆ, ਜਿਸਨੋ ਕੀਤੋ ਕਰਮ ਆਪ ਪਿਆਰੇ, ਤਿਸ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ, ਸੋ ਵਾਰਾ ਦੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪਿਆਰੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵਲਾਇਆ, ਮਨ ਤਨ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਹੈ ਪਿਆਰੇ, ਮਨ ਤਨ ਤੇਰੀ ਟੇਕ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕਰਨ ਹਾਰ ਪਿਆਰੇ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਏਕ ਰਹਾਓ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮ ਆਇਆ ਪਿਆਰੇ, ਅਨਕ ਜੋਨ ਦੁਖ ਪਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸਰਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਬਹੁਤੀ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ, ਜਿਨ ਭੇਟੈ

माया लालच अटिया प्यारे चेतन आवै मूल जिंतु विसरै पार ब्रह्म स्वामी सेतन होए धूड़ बिललाट करै बहुतेरिया प्यारे उतरै नाही सूल जो गुरमेल सवारिया प्यारे तिनका रहया मूल साक्त संग ना की जई प्यारे जेका पार वसाए जिस मिले हर विसरै प्यारे सो मुह कल उठ जाए मन मुख टोई नह मिलै प्यारे दरगै मिलै सजाए जो गुरमिल सवारिया प्यारे तिन्ना पूरी पाए संजम सहस स्याण पां प्यारे एक न चली नाल जो बेमुख गोबिंद ते प्यारे तिन कुल लागै गाल होंदी वसना जातिया प्यारे कू न चली नाल सतगुर जिना मिलायोन प्यारे साचा नाम समाल सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारे जिसनो नदर करे अंधन कीर्तन गुण रवै प्यारे अमृत पूर परे दुख सागर तिन लंघिया प्यारे पवजल पार परे जिस पावै तिस मेल लह प्यारे सही सदा खरे समर्थ पुरख दयाल देओ प्यारे भगतां तिसका तान ते सरनाई टह पै प्यारे जे अंतर जामी जान हलत पलत सवारिया प्यारे मस्तक सच निशान सो प्रभ कदे न विसरै प्यारे नानक सत कुरबान सोरठ महला पंजवां कर दूजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अरबेद विचारियो निवल पुवंगम साधे पंच जना स्यो संग न छुटक्यो अधिक अहंग बुद्ध बाधे प्यारे इन बिद मिल न जाई मैं किए कर्म अनेका हार पर्यो स्वामी कै द्वारा दीजे बुद्ध बबेका रहाओ मोन पयो कर पाती रहो नगन फिरियो बन माही तड़ तीर्थ सब धरती प्रमयो दुबदा छुटकै नाही मन कामना तीर्थ जाए बसयो सिर करवत तराए मन की मैल ना उतरै एह बिद जे लख जतन कराए कनक कामनी है वर गैवर बहु बिद दान दा तारा अन्न बस्त्र भूम बहु अरपे न मिलिए हर द्वारा पूजा अर्चा बंधन डंडाओ तो खट कर मारत रहता हाहो करत बंधन मैं परया न मिलिए एह जुगता जोग सिद्ध आसन चौरासी ए पी कर रहया वड्डी हार जा फिर जन्मे हर स्यो संग न गया राज लीला राजन की रचना करया हुक्म अफारा सेज सोहनी चंदन चोवा नरक कोर का द्वारा हर कीर्त साध संगत है सिर कर मन कह कर्मा कहो नानक तिस भयो प्राप्त जिस पुरब लिखे का लहना तेरो सेवक हे रंग माता भयो कृपाल दीन दुख भंजन हर हर कीर्तन एहो मन राता रहाओ दूजा राग सोरठ वार महले चौथे की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला पहला सोरठ सदा सुहावनी जे सच्चा मन होए दंदी मैल ना कत मन जीबै सच्चा सोए ससरै पेये पैवसी सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे पिर मिले खुशी रावै पिर संग सदा सिंगारी नाओ मनो कदे ना मैल पतंग देवर जेठ मोए दुख ससु का डर किस जे पिर पावै नानका करम मणि सब सच महला चौथा सोरठ

हर प्रेम कसाई दिन सरात, हर रत्ती हर रंग चोले, हर जैसा पुरख ना लब्बई, सब देखिया जगत मैं टोले। गुर सतगुर नाम दृढ़ाया, मन अंत ना काहूं डोले, जन नानक हर का दास है, गुर सतगुर के गोल गोले। पौड़ी तू आपे सिष्ट करता सृजन हारिया, तुदे आपे खेल रचाए तुदे आप सवारिया, दाता करता आप भोगन हारिया, सब तेरा शब्द वरतै ओ पावन हारिया। हाँ गुरमुख सदा सलाही गुर कौ वारिया, श्लोक महला तीजा। हाँ मैं जल दे जल मोए, भ्रम आए दूजे पाए, पूरे सतगुर राख लिए अपने पन्ने पाए। एहो जग जलता नदरी आया, गुर कै शब्द सुभाए, शब्द रते से शीतल पाए, नानक सच कमाए महला तीजा। सफले ओ सतगुर सेवया, तन जन्म परवान, जिन्ना सतगुर जीवन दिया मोया ना विसरै, सही पुरख सुजान। कुल उधारे अपना सोजन होवै प्रमाण, गुरमुख मोए जीव दे प्रमाण है, मनमुख जन्म मराहे, नानक मोए ना आखिया, जे गुर कै शब्द समाहे। पौड़ी हर पुरख निरंजन सेव, हर नाम ते आई है, सतसंगत साधु लग हर नाम समाई है, हर तेरी वड्डी कार मैं मूर्ख लाई है, हां गोला लाला तुद मैं हुकुम फरमाई है, हां गुरमुख कार कमावा जे गुर समझाई है, श्लोक महला तीजा। पूर्व लिखिया कमावना जे करता आप लिखियास, मोहठ गौली पाई अन विसरिया गुणतास, मत जानो जग जीवन दा दूजे पाए मुयास, जिनी गुरमुख नाम ना चेतो से बहन ना मिलनी पास, दुख लागा बहुत घना पुत कलातना साथ कोई जास, लोका विच मोह काला होवा अंदर उबे सास, मनमुखा कोना विसही चुक गया वे सास, नानक गुरमुखा नो सुख अगला जनांतर नाम निवास। महला तीजा से सैन से सज्जना जे गुरमुख मिले सुभाए, सतगुर का पाणा अंदन करे से सच रहे सुमाए, दूजे पाए लगे सज्जन ना आखिए जे अभिमान करे वेकार, मनमुख आप सवारथी कार्ज ना सके सवार, नानक पूर्व लिखिया कमावना कोई न मिटन हार। पौड़ी तुदे आपे जगतो पाए कै आप खेल रचाया, त्रै गुण आप सिर

मन रे संसार अंध बहेरा, चहो दिस पसरो है जम जेवरा रहाओ। कपत पड़े पड़ कपता मुवे, कपड़ के दार जाई, जटा तार तार जोगी मुवे, तेरी गत इन ना पाई। दर्ब संच संच राजे मुवे, गडले कंचन पारी, बेद पड़े पड़ पंडित मुवे, रूप देख देख नारी। राम नाम बिन सब बिगूते, देखो निरख शरीरा, हर के नाम बिन किन गत पाई, कहे उपदेश कबीरा। जब जरिए तब होए पसम तानो, रह किरम दल खाई, काची गागर नीर परत है, या तन की यह बड़ाई, काहे पहिया फिरताओ फूलिया फूलिया। जब दस मास उर्द मुख रहता, सोदन कैसे भूलिया रहाओ। ज्यो मधमाखी त्यों सठोर रस, जोर जोर तन किया, मरती बार लेहो लेहो करिए, पूत रहन क्यों दिया। देहुरी लो बरी नार संग पई, आग है सजन सोहेला, मरकट लाओ सब लोग कुटम पयो, आग है हंस अकेला। कहत कबीर।

वेद पुराण सब मत सुन के करी कर्म की आसा, काल ग्रस्त सब लोग सियाने उठ पंडित पै चले निराशा, मन रे सरे ना एक काजा भज्यो ना रघुपत राजा रहाओ, बन खंड जाए जोग तप कीनो कंद मूल चुन खाया, नादी बेदी सबदी मोनी जम के पटाए लिखाया, भगत नार दीर दैना आई काश कूश तन दीना, राग राग नी डिंब होए बैठा उन हर पै क्या लीना, परयो काल सब जग उपर माहे लिखे परम ज्ञानी, कहो कबीर जन पहे खालसे प्रेम भगत जै जानी, कर दूजा दोए दोए लोचन पेखा हों हर बिरया और ना देखा,

बाजीगर डंक बजाई सब खलक तमाशे आई, बाजीगर स्वांग सकेला अपने रंग रवै अकेला।

हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बिलोव सपानी, काया मांजस कौन गुना, जौ कट पीतर है मलना रहाओ, लौकी अड़सर तीर्थ नाई, कौरा पंतऊ ना जाई, कह कबीर बिचारी, पवसागर तार मुरारी सोरठ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, बहु परपंच कर पर धन लियावै, सुधारा बयान लुटावै, मन मेरे पूले कपट ना कीजै, अंतन बेरा तेरे जी पहली जय रहाओ, छिन छिन तन छीजै जरा जनावै, तब तेरी ओक कोई पानी ओ ना पावै, कहत कबीर कोई नहीं तेरा, हृदय राम की ना जपै सवेरा, संत हो मन पवने सुख बनया, कि जोग प्राप्त गनया रहाओ, गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी, मूंद लिए दरवाजे, बाजी आले अनहद बाजे, कुंभ कमल जल भरिया, जल मेटिया उबा करिया, कहो कबीर जन जानिया, जो जानिया तो मन मानिया, राग सोरठ भूखे भगत ना कीजै, यह माला अपनी लीजै, हाँ मांगो संतन रेना, मैं नाही किसी का देना, माधो कैसी बने तुम संगे, आप ना देहो ता ले वो मंगे रहाओ, दोए शेर मांगो चूना, पाओ की ओ संग लूना, अध शेर मांगो दाले, मोको दोनों वक्त जिवाले, खाट मांगो चौपाई, सरहाना अवर तुलाई, ऊपर कौ मांगो खींदा, तेरी भगत करे जन थींदा, मैं नाही कीता लबो, एक नाव तेरा मैं फबो, कह कबीर मन मानिया, मन मानिया तो हर जानिया, राग सोरठ बाणी भगत नाम दे जी की, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जब देखा तब गावा, तो जन तीरज पावा, नाद समाए लोरे सतगुर पेटले देवा रहाओ, जह चिलमिलकार दिसंता, तै अनहद शब्द बजंता, ज्योति ज्योत समानी, मैं गुर प्रसादी जानी, रतन कमल कोठरी, चमकार बिजल तही, नेरै नाही दूर, निजात मैं रया भरपूर, जय अनहत सूर उजियारा, तह दीपक जलै शंशारा, गुरप्रसादी जानिया, जन नामा सहे समानिया, कर चौथा सोरठ, पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा, का पहचान शिवाई हो, तो पै दुगनी मजूरी दहाओ, मोको बेडी देहो बताई हो, रिबाई बेडी देन न जाई, देख बेडी रे उसमाई, हमारे बेडी प्राणे आधारा रहाओ, बेडी प्रीत मजूरी मांगे, जो को शान शवावे हो, लोग को टंब सबोते तोरे, तो अपन बेडी आवे हो, ऐसो बेडी बर्न ना सको, सब यंत्र सब ठाई हो, गुंगे महा अमृत रस चाखिया, पूछे कह न जाई हो, बेडी के गुण सुन री बाई, जल्द बांध तू था प्यो हो, नामे के स्वामी सी बहोरी, लंकप भीखण आ प्यो हो, सोरठ करती जा, अड़मड़िया मंदल बाजै, बिन सावन कन हर गाज।

हम बाती जाओ तुम तीर्थ तौ हम जाति साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी तुम स्यों जोरी अवर संग तोरी जह जह जाओ तहां तेरी सेवा तुम सो ठाकरे और ना देवा तुमरे भजन कटे जम फासा भगत हेत गावे रवदासा जल की पीत पवन का थंबा रगत बूंद का गारा हाड मास नाड़ी को पिंजर पंखी बसे बिचारा प्राणी क्या मेरा क्या तेरा जैसे तरवर पंख बसेरा रहाओ राखो कं उसारो नीवा साढ़े तीन हाथ तेरी सीवा बंके बाल पाग सिर डेरी एहो तन होए गो।

तुम शरणागत राजा रामचंद, कह रविदास चुमारा चमरटा गांठ ना जनई, लोग गठा वै पन ही रहाओ। आर नहीं जे तो पो, नहीं रामबी ठाओ रो पो, लो गंठ गंठ खरा बिगूचा, हम बिन गंठे जाए पहुचा। रविदास जपै राम नामा, मोहे जमस्यो नाही कामा। राग सोरठ बाणी भगत पीखन की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नैनो

हर हर अगमय अगाध बोध अपरंपर पुरख्या पारी जन कौ कृपा करो जग जीवन जन नानक पै सवारी। तनासरी महला चौथा हर के संत जना हर जपयो तिनका दुख भरम पौ भागी। अपनी सेवा आप कराई गुरमते अंतर जागी। हर कै नाम रता बैरागी हर हर कथा सुनी मन पाई गुरमत हर लिव लागी रहाओ। संत जना की जात हर स्वामी तुम ठाकर हम सांगी। जैसी मत देवो हर स्वामी हम तैसे बुलग बुलागी। क्या हम किरम नानक कीरे तुम वड पुरख वडागी। तुमरी गत मित कह ना सकै प्रभ हम क्यों कर मिलया पागी। हर प्रभ स्वामी कृपा तारो हम हर हर सेवा लागी। नानक दास संदास करो प्रभ हम हर कथा कथागी। तनासरी महला चौथा हर का संत सतगुर सतपुरखा जो बोले हर हर बानी। जो जो कह सुने सो मुक्ता हम तिस कह सतगुर बानी। हर के संत सुनो जस कानी हर हर कथा सुनो एक निमुख पाल। सब किल विख पाप लह जानी रहाओ। ऐसा संत साध जिन पाया ते वड पुरख वडानी। तिनकी तूर मंगै प्रभ स्वामी हम हर लोच लुचानी। हर हर सफलियो बिरख प्रभ स्वामी जिन जपियो से तृप्तानी। हर हर अमृत पी तृप्ता से सब लाथी पूख पुखानी। जिनके वडे भाग वड उच्चे तिन हर जपियो जपानी। तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी जन नानक दा दसानी। तनासरी महला चौथा हम अंधले अंध बिखै बिखराते क्यों चाले गुर चाली। सतगुर दया करे सुखदाता हम लावे अपन पाली। गुर सखमी चलो गुर चाली जो गुर कह सोई पल मानाओ। हर हर कथा निराली रहाओ। हर के संत सुनो जन पाई गुर सेवो बेग बेगाली। सतगुर सेव खर्च हर बांधाओ मत जानो वाज के काली। हर के संत जपो हर जपना हर संत चले हर नाली। जिन हर जपया से हर होए हर मिलिया केल के लाली। हर हर जपन जप लोच लुचानी हर कृपा कर बनवाली। जन नानक संगत साध हर मेलो हम साज जना पगराली। तनासरी महला चौथा हर हर बूंद पए हर स्वामी हम चात्रक बिलल बिललाती। हर हर कृपा करो प्रभ अपनी मुख देवो हर निमखाती। हर बिनो रह न सको एक राती जो बिन अमल अमली मर जाई है। त्यों हर बिनो हम मर जाती रहाओ। तुम हर सरवर अत अगाह हम लह न सके अंत माती। तू पर परे अपरंपर स्वामी मित जानो अपन गाती। हर के संत जना हर जपयो गुर रंग चलू लै राती। हर हर भगत बनियत सोभा हर जपयो उतम पाती। आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावै पाती। नानक जन तुमरी शरण आई हर राखो लाज पगाती। तनासरी महला चौथा कलयुग का धर्म कहो तुम पाई किव छूटे हम छुटका की। हर हर जप बेड़ी हर तुलहा हर जपयो तरै तराकी। हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भगते काकी रहाओ। हर के सेवक से हर प्यारे जिन जपयो हर बचना की। लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जमकी बाकी। हर के संत जपयो मन हर हर
लग संगत साध जना की, दिन यर सूर तृष्णा अग्न बुझानी, शिव चर्यो चंद चंदा की। तुम वड पुरख वड अगम्या गोचर, तुम आपे आप आपा की, जन नानक कहो प्रभ कृपा की, जय कर दस दास दसा की। तनासरी महला चौथा, कर पंजवा दोपद एक ओंकार, सतगुर प्रसाद उर तार विचार, मोरार रमो रम, मन मोहन नाम जपीने, अदृष्ट गोचर परंपर स्वामी, गुरपुरे प्रगट कर दीने। राम पारस चंदन हम काष्ट लोष्ट, हर संग हरी सतसंग पे, हर कंचन चंदन कीने रहाओ। नाम शे खट बोले मुख आगर, मेरा हर प्रभ इवना पतीने, जन नानक हर हृदय सत्यावो, इव हर प्रभ मेरा पीने। तनासरी महला चौथा, गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर, एव हर हर नाम ते आई, हर दरगह पावे फिर जन्म ना आवे, हर हर हर ज्योत समाई, जप मन नाम हरी होहे सर्व सुखी, हर जस ऊच सबना ते ऊपर, हर हर हर सेव छडाई रहाओ। हर कृपा निध कीनी, गुर भगत हर दीनी, तब हर स्यो प्रीत बने आई, बहु चिंत विसारी, हर नाम ओर तारी, नानक हर पय है सखाई। तनासरी महला चौथा, हर पढ़ हर लिख हर जप हर गाओ, हर भोजन पार उतारी, मन बचन हृदय ते आए, हर होए संतुष्ट, एव पण हर नाम मोरारी, मन जपिए हर जगदीश, मिल संगत साधु मीत, सदा आनंद होवे दिन राती, हर कीर्त कर बनवारी रहाओ। हर हर करी दृष्ट तब भयो मन उद्यम, हर हर नाम जपियो गत ही पई हमारी, जन नानक की पत राख मेरे स्वामी, हर आए परयो है शरण तुम्हारी। तनासरी महला चौथा, चौरासी सिद्ध बोत तीस कोट मुन जानो, सब चाहे हर जियो तेरो नाओ, गुरप्रसाद को विरला पावे, जिन कौल लाट लिखिया तुर पाओ, जप मन रामे नाम, हर जस उत्तम काम, जो गावे सुने तेरा जस स्वामी, हम तिनके सद बलिहारे जाओ रहाओ। शरणागत प्रतपालक हर स्वामी, जो तुम देहो सोई हाँ पाओ, दीन दयाल कृपा कर दीजै, नानक हर सिमरन का है चाओ। तनासरी महला चौथा, सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हरि उत्तम बानी, गाव्या सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुर की आग्या सत सत करमानी, बोलो पाई हर कीर्त हर पवजल तीर्थ, हर दर तिन की उत्तम बात है संतो, हर कथा जिन जनो जानी रहाओ। आपे गुर चेला है आपे, आपे हर प्रभ चोज विडानी, जन नानक आप मिलाए सोई हर मिलसी, अवर सब त्याग ओहा हर पानी। तनासरी महला चौथा, इच्छा पूरक सर्व सुखदाता हर, जा कै वस है काम तेना, सो ऐसा हर त्याई है मेरे जी अड़े, ता सर्व सुख पाव है मेरे मना, जप मानो सतनाम सदा सतनाम, हालत पलत मुखी उज्जल होई है, नित त्याई है हर पुरख निरंजना रहाओ। जय हर सिमरन पया तहे उपाद गत कीनी, वडपागी हर जपना, जन नानक कौ गुर एह मत दीनी, जप हर पवजल तरना। तनासरी महला चौथा,

सहा सब तुझी महेश माहे सबना की तू आस है मेरे प्यारे सब तुझे ते आवे मेरे सहा ज्यों पावे त्यों रख तू मेरे प्यारे सच नानक के पातशाह तनासरी महला पंजवां कर पहला चौपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद पवखंडन दुख पंजन स्वामी भगत वच्छल निरंकारे कोट प्राद मिटे खिन पीतर जां गुरमुख नाम सुमारे मेरा मन लागा है राम प्यारे दीन दयाल करी प्रभ कृपा वासकीने पंच दूतारे रहाओ तेरा थान सुहावा रूप सुहावा तेरे भगत सोहै दरबारे सर्व जिया के दाते स्वामी कर कृपा लिहो उबारे तेरा वर्ण ना जापै रूप ना लखिया तेरी कुदरत कौन बिचारे जल थल महियल रव्या सर्ब ठाई अगम रूप गिरधारे कीर्त करे सगल जन तेरी तू अबनासी पुरख मुरारे ज्यो पावे त्यों राखो स्वामी जन नानक शरण दुआरे तनासरी महला पंजवा बिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल सो हेत बढ़ायो कमल हेत बिन सो है पवरा उन मार्ग निकस ना पायो अब मान एक स्यो मोह कीना मरे न जावे सदी संगे सतगुर सबदी चीना रहाओ काम हेत कुंचर लै फांक्यो ओ परवस भयो बिचारा नाद हेत सिर डार्यो कुरंका उसी हेत बेदारा देख कुटांब लोभ मोहयो प्राणी माया को लपटाना अत रचियो कर लीनो अपना उड़ छोड़ सरा पर जाना बिन गोबिंदो अवर संग नेहा ओ जानो सदा दुहेला कहो नानक गुर एह बजायो प्रीत प्रभु सदकेला तनासरी महला पंजवा कर कृपा दियो मोहे नामा बंधन ते छुटकाए मन ते बिसरियो सगलो तंदा गुर की चरनी लाए साध संग चिंत बिरानी छाडी आं बुद्ध मोह मन बासनो दे कर गढ़ा गाडी रहाओ ना को मेरा दुश्मन रहा ना हम किसके बैराई ब्रह्म पसार पसारियो पीतर सदगुर ते सोजी पाई सब को मीत हम आपन कीना हम सबना के साजन दूर परायो मन का बिरहा ता मेल कियो मेरे राजन बिन सो टीठा अमृत बूठा शब्द लगो गुर मीठा जल थल महियल सर्व निवासी नानक रमैया डीठा तनासरी महला पंजवा जब ते दर्शन पेटे साधु भले दिनस ओए आए महा आनंद सदा कर कीर्तन पुरख विदाता पाए अब मोहे राम जसो मन गायो भयो प्रगास सदा सुख मन में सतगुर पूरा पायो रहाओ।

गुर की टहल गुरु की सेवा गुर की आज्ञा पानी कहो नानको जिन जमते काढ़े तिस गुर कै कुर्बानी। तनासरी महला पंजवा जिसका तन मानो तन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी। तिन ही सुनया दुख सुख मेरा तौ बिद नीकी खटानी जी की एक ही पहमानी। अवर जतन कर रहे बहु तेरे तिन तल नहीं कीमत जानी। रहाओ अमृत नाम निर्मोलक हीरा गुरदीनो मनतानी। डिगे न डोले दृढ़ कर रहे हो पूर्ण होए त्रिपतानी। ओए जो बीच हम तुम कश होते तिनकी बात बिलानी। अलंकार मिल थैली होई है ताते कनक वखानी। प्रगट्यो जो तो सहज सुख शोभा बाजे अनहत बानी। कहो नानको निचल कर बांधियो गुर की ओ बंधानी। तनासरी महला पंजवा वडे वडे राजन यार पूमन ताकि त्रिशन ना बूझी। लपट रहे माया रंग माते लोचन कशु ना सूजी। बिखिया मैं किन्हीं तृप्त ना पाई ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रप बिन हर कहां अगाई। रहाओ दिन दिन करत भोजन बहु बिंजन ताकि मिटै ना भूखा। उद्यम करै सुवान की न्याई चारे कुंटा कोखा। कामवंत कामी बहु नारी पर गृह जोहन चूकै। दिन प्रत करै करै पछतापै सोग लो मैं सूकै। हर हर नाम अपारिया मोला अमृत एक निधाना। सुख सहज आनंद संतन कै नानक गुर ते जाना। तनासरी महला पंजवा लवै न लागन कहो है कशुवै जाको फिर एहो तावै। जाको गुर दीनो एहो अमृत तिस ही को बन आवै। जाको आयो एक रसा खान पान आन नहीं खुदया ता कै चितना बसा। रहाओ मौल्यो मंतन होयो हरिया एक बूंद जिन पाई। बरन न साको उस ताकी कीमत कहन न जाई। काल ना मिलियो सेव ना मिलियो मिलियो आया चिंता। जाको दया करी मेरे ठाकर तिन गुरे कमानो मंता। दीन दयाल सदा कृपाला सर्व जिया प्रतपाला। ओत पोत नानक संग रव्या जो माता बाल गोपाला। तनासरी महला पंजवा बार जाओ गुरे अपने ऊपर जिन हर हर नाम दृढ़ाया। महा उद्यान अंधकार में जिन सीधा मार्ग

चंदन लेप होत देह कौ सुख गर्दप भस्म संगीत अमृत संग नाहे रुच आवत बखैठ गौरी प्रीत। उत्तम संत भले संजोगी इस युग में पवित पुनीत जात अकारथ जन्म पदार्थ काज बाद रह जीत। जन्म जन्म के किलविख दुख भागे गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत। साध संग इन दुखते निकसियो नानक एक प्रीत। तनासरी महला पंजवा पानी पखा पीसो संत आगै गुण गोविंद जस गाई साध सास मन नाम समारै ओह विश्राम निद पाई।

देखो पसार नैन सुनो साधु के बैन, प्राण पत चित राखो सगल है मरना रहाओ, चंदन चोवा रस भोग करता नेकै, बिखिया बिकार देखो सगल है फीके, एकै गोविंद को नाम नीको कहत है साध जन, तन तन अपन थापियो हर जपना निमख जापियो, अर्थ दर्ब देख कछ संग नाही चलना, जा को रे करम पल्ला तिन ओट गही संत पल्ला, तिन नाही रे जम संतावै साधु की संगना, पायो रे परम निदान मिट्यो है अभिमान, एक निरंकार नानक मन लगना, तनासरी महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे, काल कलेस लोभ मोह महापौजल तारे रहाओ, सास सास निमख निमख दिन सरहन चितारे, साध संग जपन संग मन दान तारे, चरण कमल नमस्कार गुण गोबिंद विचारे, साजना की रेण नानक मंगल सुख सधारे, तनासरी महला पंजवा कर अठवा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सिमराओ सिमर सिमर सुख पावाओ, सास सास संभाले ए लोक पर लोक संग सहाई, जत कत मोहे रखवाले गुर का बचन बस है।

निर्तन कौ तन अंदले कौ टेक मात दूध जैसे बाले सागर में बोहित पायो हर नानक करी कृपा कृपाले। तनाश्री महला पंजवा पै कृपाल दयाल गोविंदा अमृत हृदय सिंचाई नव निध रिद सिधार लाग रही जन पाई। संतन का आनंद सगली जाई गृह बार ठाकर भगतन का रवर आश्रम ठाई रहाओ। ता को कोई न पहुंचन हारा जा कै अंग गुसाई जमकी त्रासम कै जिस मृत नानक नाम ते आई। तनाश्री महला पंजवा दर्भवंत दर्भ देह गर्भ है पूमवंत अभिमानी राजा जन सगल राज हमरा त्यों हरजन टेक स्वामी। जे को अपनी उड़ सुमार है जैसा बेत तैसा हुए वर्त है अपना बल नहीं हार रहाओ। आन त्याग पै के असर सरन सरन कर आए संतानुग्रह।

आत्म जिणै सगल वस तां कै जां का सतगुर पूरा। ठाकुर गाइया आत्म रंग सरणी पावन नाम त्यावन सह समावन संग रहाओ। जन के चरण वसै मेरे ही अरै संग पुनीता देही जन की तूर दे हो कृपा निध नानक कै सुख एही। तनाश्री महला पंजवा जतन करै मान खुडहै कावै ओह अंतर जामी जानै पाप करे कर मुकर पावै पेख करै निर्बन जानत दूर तुमै प्रभ नेर उत ताकै उत ते उत पेखै आवै लोभी फेर रहाओ। जब लग तुटै नाही मन परमा तब लग मुक्त ना कोई कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई। तनाश्री महला पंजवा नाम गुर दी होए अपने जाके मस्त करमा नाम दृढ़ावै नाम जपावै ताका जुग मैं तरमा। जन कौ नाम वडाई सोब नामो गत नामो पत जन की मानै जो जो हो ग्रहाओ। नाम तानो जिस जन कै पालै सेई पूरा सहा नाम ब्योहारा नानक आधारा नाम प्राप्त लाहा। तनाश्री महला पंजवा नेत्र पुनीत पए दर्श पेखे माथे परोरवाल रस रस गुण गा।

महा आनंद मंगल रूप तुमरे बचनन उपर साल हृदय चरण शब्द सतगुर को नानक बांध्यो पाल। तनासरी महला पंजवा अपनी उकत खिलावै भोजन अपनी उकत खिलावै सर्व सुख भोग रस देवै मन ही नाल समावै। हमरे पिता गोपाल दयाल जो राख महतारी बारक कहो तैसे ही प्रपाल रहाओ। मीत साजन सर्व गुण नायक सदा सलामत देवा ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा। तनासरी महला।

मंतन राम नाम हितकारे। सुख सहजानंद मंगल सहित पवनित पार उतारे रहाओ। तन सो थान तन ओए पवना जा मैं संत बसारे। जन नानकी सरदा पूरो ठाकर भगत तेरे नमस्कारे। तनासरी महला पंजवा छडाए लियो महाबली ते अपने चरण परात। एक नाम दियो मन मंता बिनसना कतहू जात। सतगुर पूरे कीनी दात। हर हर नाम दियो कीर्तन कहो पई हमारी गात। रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने भगतन की राखी पात। नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात। तनासरी महला पंजवा पर हर ना लोभ झूठ निंद इव ही करत गुदारी। मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी ए टेक मन सादारी। सागत किया वरदा जाय बिरथारी। जैसे कागद के पार मूसा टूक गवावत। काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ए बंधन छुटकारी। बूढ़ त्यंद नानक प्रभ काढ़त साजना संगारी। तनासरी महला पंजवा सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना। शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म रह जाती। रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने कै चरण कमल निध थाती। रहाओ

नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे। तनासरी महला पंजवां औखी कड़ी ना देखण देई अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रतपाले। प्रभ स्यों लाग रहे हो मेरा चीत आदि अंत प्रभ सदा सहाई तन हमारा मीत रहाओ। मन बिलास पए साहेब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूर्ण पैज रखाई। तनासरी महला पंजवां जिसको बिसरे प्राण पत दाता सोई गनो अभागा चरण कमल जाका मन रंगयो। अमै सरोवर पागा तेरा जन राम नाम रंग जागा आलस शीज गया सब तंते प्रीतम स्यो मन लागा रहाओ। जय जय पेखो तै नारायण सगल कटा मैं तागा नाम उदक पीवत जन नानक त्यागे सब अनदागा। तनासरी महला पंजवां जन के पूर्ण होए काम कली काल महा बिख्या मह लज्जा राखी राम रहाओ। सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना निकट ना आवै जाम मुक्त बैकुंठ साध की संगत जन पायो हर का धाम चरण कमल हर जन की थाती कोट सुख विश्राम। गोबिंद मोदर सिमरो दिन रैन नानक सत कुरबान।

स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मदयंत प्रभ जापण नानक रंग लगा परमेश्वर बाहुड़ जन्म ना छापण तनासरी।

जत सत संजम हृदय समाए चौथे पद कहो जे मन पति आए साचे निर्मल मैल न लागै गुर कै शब्द भरम पौ भागै सूरत मूर्त आद्या रूप नानक जाचै साच स्वरूप तनासरी महला पहला सहज मिले मिलिया प्रवाण नात स्मरण न आवन जान ठाकुर मैं दा दास मैं सोए जै देखा तै अवर न कोए गुरमुख भगत सहज कर पाई बिन गुर भेटे मरिया जाइए रहाओ सो गुर करो जे साज दृढ़ावै अकथ कथावै शब्द मिलावै हर के लोग अवर नहीं कारा साचो ठाकर साच प्यारा तन मैं मनुआ मन मैं साचा सो साचा मिल साचे राचा सेवक प्रभ कै लागै पाए सतगुर पूरा मिले मिलाए आप दिखावै आपे देखै हठ ना पतीजै ना बहु पेखै घड़ पांडे जन अमृत पाया प्रेम भगत ब्राह्मण पति आया पड़ पड़ भूलै चोटा खाहे बहुत सियाण पे आवै जाहे नाम जपै पौ भोजन खाए गुरमुख सेवक रहे समाए पूज सिला तीर्थ बनवासा परमत डोलत पय उदासा मन मैलै सूचा क्यों होए साच मिलै पावै पत सोए।

आओ अन क्यों पाव करो माया को बचित धरो मेरी मेरी कर तो सद ही विहावै कोई ऐसो रे पेट संत मेरी लाहे सगल चिंत ठाकर स्यो मेरा रंग लावै पड़े रे सगल भेद नह चूके मन भेद एक खेना धीरे मेरे करके पंचा।

मन कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन सनाना सगलिया शर्म कीने मनु आनह पतीने।

दुर्योधन से भाई बारह जो जन शत्र चले था, देही गिरज न खाई सर्व सो इनकी लंका होती, रावण से अधकाई कहां पयो दर बांधे हाथी, खिन में पई पराई दुर्वासा सो करत ठगौरी, जादवे फल पाए कृपा करी जने अपने उपर, नाम देव हर गुण गाए दस बैर अग्न मोहे बस कीनी, पंचों का मिट नावो सत्र दोए भरे अमृतसर, बेको मार कढ़ावो पाछे बहुर ना आमन पावो, अमृत बाणी करते उचराओ आत्म को समझावो रहाओ, बजर कुठार मोहे है शीना कर मिन्नत लग पावो, संतन के हमें उल्ट

मैया चकवी कहो जैसे सूर बालहा मान सरोवर हंसला ज्यो तरणी कहो कंत बालहा त्यों मेरे मन रा मैया बारक कहो जैसे खीर बालहा चात्रक मुख जैसे जल तरा मछली कहो जैसे नीर बालहा त्यों मेरे मन रा मैया साधक सिद्ध सग

पिंदी उबकले संसारा भ्रम भ्रम आए तुम चे द्वारा तू कुनरे मैंजी नामा हो जी आला ते निवारणा जमकारणा पतत पावन माधो बिरद तेरा तन ते वह मुन जनो जिन त्यायो हर प्रभ मेरा।

नाम तेरो तागा नाम फूल माला, पार अठारह सगल जूठारे, तेरो किया तुझे क्या यार पाओ, नाम तेरा तुही चवर टोलारे। दस अठा अठ सठे चारे खानी, यह वर्तन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे। तनासरी बाणी भगता की, त्रिलोचन एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नारायण निंद सकाए भूली गवारी, दो कृष्त सुकृत थारो कर मरी रहाओ। संकरा मस्तक बस्ता सुरसरी इसनान रे, कुल जन मध्य मिलियो सारंग पान रे। कर्म कर कलंक मफीट सरी, विश्व का दीपक स्वामी, ताचे रे स्वार्थी पंखी राय गरड़ ताचे बादवा। कर्म कर अरण पिंगलारी, अनक पातक हरता त्रिपवन नाथरी। तीर्थ तीर्थ भ्रमता लह ना पार री, कर्म कर कपा

कालम फीट सरी अमृत ससी तेन लक्ष्मी कल्प तारो शिखर सुनागर नदी चे नाथं कर्म कर खारम फीट सरी दादी ले लंका गाड़ ओ पाड़ी ले रावण बाण साल बेसाल आण तोखी ले हरी कर्म कर कशौटी मफीट सरी पूर्व लो कृत कर्म न मिटैरी कर गेहन ताचे मोहे जापी आले राम चे राम बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन धूप दीप कृत साज आरती वारने जाओ कमलापति मंगला।

गुण गाहा, हर हर हर जस घूमर पावो, मिल सतसंग ओ महाराम, आओ सखी हर मेल मिलाहा, सुन हर कथा नाम लैलाहा, हर हर कृपा तार गुर मिलो, गुर मिले हरिओ महाराम, कर कीर्तो जस अगमाथा, खिन खिन राम नाम गावा, मोको तार कृपा मिलिए गुरदाते, हर नानक भगत्यो महाराम, जय श्री महला चौथा, रस रस राम रसाल सलाहा, मन राम नाम पीना लैलाहा, खिन खिन भगत करै दिन राती, गुरमत भगत्यो महाराम, हर हर गुण गोविंद जपाहा, मन तन जीत शब्द लैलाहा, गुरमत पंच दूत वस आवै, मन तन हर ओ महाराम, नाम रतन हर नाम जपाहा, हर गुण गाय सदा लैलाहा, दीन दयाल कृपा करमा दो,

जय श्री महला चौथा, आपे जोगी जुगत जुगाहा, आपे निरपौ ताड़ी लाहा, आपे ही आप आवर्त, आपे नाम्यो महाराम, आपे दीप लोभ दीपाहा, आपे सतगुर समुद मथाहा, आपे मथ मत कढ़ाए, जप नाम रतने ओ।

राम आपे वरदाना वरसाहा गुरमुख पूंजी नाम विसाहा हर हर दात करो प्रभाव है गुण नानक नामो महाराम। जैत सरी महला चौथा मिल सत संगत संग गुराहा पूंजी नाम गुरमुख वे साहा हर हर कृपा धार मध सूदन मिल सत संग यो महाराम। हर गुण बाणी श्रवण सुनाहा कर कृपा सतगुरु मिलाहा गुण गावे गुण बोले बाणी हर गुण जपियो महाराम। सब तीर्थ वर्त जग पुन तोलाहा हर हर नाम न पुजै पुजाहा हर हर अतुल तोलियत भारी गुरमत जपियो महाराम। सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा किल विख मैल पाप तोवाहा दीन दयाल हो जन उपर देहो नानक नामो महाराम। जैत सरी महला।

बेसुमार बेअंत बड़दाता मने गही रहो पेख प्रभु को जो चाहो सोई सोई पावो आसा मनसा पूरो जब प्रभु को गुर प्रसाद नानक मन वसया दुख न कबू चूरो बुझ प्रभु को जैत सरी महला पंजवा लोड़ींदड़ा साजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके कट कट उतसै बसेरा रहाओ सुख अराधन दुख अराधन बिसरै ना काहू बेरा नाम जपत कोट सूर्य उजारा बिनसै परम्या देरा थान थनंतर सबनी जाई जो दिसै सो तेरा संत संग पावै जो नानक तिस बहुर ना हुई है फेरा जैत सरी महला पंजवा कर चौथा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद अब मैं सुख पायो गुर आग तजी सियानप चिंत विसारी अहं छोड़ियो है त्याग रहाओ जो देखो तो सगल मोहे मोहियो तो शरण परयो गुर भाग कर कृपा टहल हर लायो तो जम छोड़ी मोरी लाग तरयो सागर पावक को जो संत पेटे वड भाग जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरणी चित लाग जैत सरी महला पंजवा मन में सतगुर ध्यान तरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहाओ काल जाल।

नाव रूप पयो साध संग पवनित पार परा अप्यो पियो गत थियो परमा कहो नानक अजर जरा जय श्री महला पंजवा जा कहो पय गोविंद सहाई सुख सहज आनंद सकल स्यों वा कहो ब्याध ना काई रहाओ दिसे सब संग रह अलेपा नह व्यापै उन माई एक रंग तत के बेते सदगुर ते बुद्ध पाई दया मया कृपा ठाकर की सही संत सुभाई तिन कै संग नानक निस्तरीय जिन रस रस हर गुण गाई जय श्री महला पंजवा गोविंद जीवन प्राण धन रूप अज्ञान मोह मगन महाप्राणी अंधियारे मैं दीप रहाओ सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम चरण कमलिया नूप अनक बार करो तह बंधन मने चिरावो धूप हार पर्यो तुमरे प्रभ द्वारे दृढ़ कर गही तुम्हारी लूक काढ़ लिहो नानक अपने कहो संसार पाव के कूप जैत सरी महला पंजवा कोई जन हर स्यों देवे जोर चरण गहो बकों शुभ रसना दीजे प्राणिया कोर रहाओ मन तन निर्मल करत के आरो हर सिंचे सुधा संजोर या रस मैं मगन होत कृपा ते महा बिख्या ते तोर आयो शरण दीन दुख पंजन चितवों तुमरी ओर अपै पद दान सिमरन स्वामी को प्रभ नानक बंधन शोर जय श्री महला पंजवा चात्रक चितवत बरसत में है कृपा सिंध करना प्रभ तारो हर प्रेम भगत को नेह रहाओ अनक सुख चकवी नहीं चाहत अनद पूर्ण पेख दे है आन पावना जीवत मीना बिन जल मरनाते हैं हाम्या नाथ नाथ हर सरणी अपनी कृपा करे है चरण कमल नानक आराध तिस बिन आन ना के है जय श्री महला पंजवा मन तन बस रहे मेरे प्राण कर कृपा साधु संग पेटे पूर्ण पुरख सुजान रहाओ प्रेम ठगौरी जिन कौ पाई तिन रस पियो पारी ताकि कीमत कहन ना जाई कुदरत कमन हमारी लाए लय लड़ दास जने अपने उधरे उधर नहारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण द्वारे जय श्री महला पंजवा आए अनक जन्म भ्रम सरणी उधर देह अंध कूपते लावो अपनी चरणी रहाओ ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना ना हिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लावो बिखम नदी जाए तरनी सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन मैं तरनी हर दर्शन तृप्त नानक दास पावत हर नाम रंग या परनी जय श्री महला पंजवा हर जन सिमरो हृदय राम हर जन को अपदा निकट ना आवे पूर्ण दास के काम रहाओ कोट बिघन बिनसे हर सेवा निचल गोविंद ताम भगवंत भगत को पौ किश नाही आदर देवत जाम तज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिनसत खाम चरण कमल हृदय गहो नानक सुख समूह विश्राम जय श्री महला नावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पूलेओ मन माया उरजायो जो जो कर्म कियो लालच लग तह तह आप बंधायो रहाओ समझ ना परी बिखै रस रचियो जस हर को बिसरायो संग स्वामी सो जान्यो नाहन बन खोजन को तायो
रतन राम कढ़ी के पीतर ता को ज्ञान ना पायो, जन नानक भगवंत भजन बिन बिरथा जन्म गवायो। जय श्री महला नावा, हर जू राख लेहो पत मेरी, जम को त्रास पयो।

नाहन गुण नाहन कछ जप तप कौन कर्म अब कीजै। नानक हार पर्यो शरणागत अपह दान प्रभ दीजै। जय श्री महला नावा मन रे साचा गहो बिचारा राम नाम बिन मिथ्या मानो सगरो यो संसारा रहाओ। जा को जोगी खोज तहारे पायो नाहे तह पारा सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेखते न्यारा। पावन नाम जगत मैं हर को कबू नाए संभारा नानक शरण पर्यो जग बंदन राखो बिरद तुहारा। जय श्री महला पंजवा शंत कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक। दर्शन प्यासी दिन सरात चितवो अंधन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत। शंत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया तिस मोहन लाल प्यारे हों फिरो को जंतिया। तिस दस प्यारे सिर तरी उतारे एक पूरी दर्शन दीजै। नैन हमारे प्रे रंग रंगारे एक तिलपी नाती रीजै। प्रभ स्यो मन लीना ज्यो जल मीना चात्रक जवैत संतिया। जन नानक गुर पूरा पाया सगली तिखा बुजंतिया। यार वे प्रे हब्बे सखिया मुंह कही ना जेहिया। यार वे हिक डू हिक चाड़े हौ किस चितेहिया। हिक दू हिक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बिलासा। तना देख मन चाओ उठंदा हौ कद पाई गुणतासा। जिन्नी मैंडा लाल रिजाया हौ तिस आग्या मन डेहिया। नानक कह सुन बिनो सुहागण मुंह दस डिखा पिर केहिया। यार वे प्रे अपन पाणा किस नी सी छंदा। यार वे तै रव्या लालन मुंह दस दसंदा। लालन तै पाया आप गवाया जै तन भाग मथाने। बहा पकड़ ठाकर हौ किदी गुण अवगुण ना पिछाणे। गुणहार तै पाया रंग लाल बनाया तिस हब्बो किछ सुहंदा। जन नानक तन सुहागण साई जे संग पतार वसंदा। यार वे नित सुख सुखेंदी सा मैं पाई वर लोड़ींदा आया वजी वादाई। महामंगल रहस्थिया पिर दयाल सद नवरंगिया वड भाग पाया गुर मिलाया साध कै सतसंगिया। आसा मनसा सगल पूरी प्रे अंक अंक मिलाई बिनवंत नानक सुख सुखेंदी सा मैं गुर मिल पाई। जय श्री महला पंजवा कर दूजा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक। ऊंचा अगमा पार प्रभ कहन न जाया कथ नानक प्रभ शरणागति राखन को समरथ। शंत ज्यो जानो त्यो राख हर प्रभ तेरिया केते गणो असंख अवगण मेरिया। असंख्य अवगण खते फेरे नित प्रत सद पूली है। मोह मगन बिकराल माया तौ प्रसादी कूली है। लूक करत बेकार बिखड़े प्रभ नेर हूं ते नेरिया। बिनवंत नानक दया तारो काढ़ पव जल फेरिया। सलोक निरत ना पवे असंख गुण ऊंचा प्रभ का नाओ। नानकी बेनंतिया मिलैन थावे थाओ। शंत दूसर नाही ठाओ का पह जाइय आठ पैर कर जोड़ सो प्रभ त्याई है। त्याए सो प्रभ सदा अपना मनह चिंदया पाई है। तजमान मोह विकार दूजा एक स्यों लिवलाई है। अर्प मन तन प्रभु आगे आप सगल मिटाई है। बिनवंत नानक धार कृपा साच नाम समाई है। सलोक अरे मनता को त्याई है सब जा के हाथ। राम नाम तन संची है नानक निभ है साथ। शंत साथी अड़ा प्रभ एक दूसर नाहे कोए। थान अंतर आप जलथल पूर सोए। जलथल महियल पूर रहया सर्वदाता प्रभ धनी। गोपाल गोविंद अंत नाही बेअंत गुण ताके क्या गनी। पाज सरन स्वामी सुख है गामी तिस बिना अन नाहे कोए। बिनवंत नानक दया तारो तिस प्राप्त नाम होए। सलोक
ਚਿਤ ਜੇ ਚਿਤਵਿਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਸੁਖ ਸਵਾਇਆ ਸ਼ੰਤ। ਅਬ ਮਨ ਛੂਟ ਗਇਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਲਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੇ। ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਮਿਟੇ ਕਿਲ ਵਿਖ, ਬੁੱਝੀ ਤਪਤਿਆ ਗਾਨਿਆ। ਗੈ ਪੁਜਾਲੀ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਾਨਿਆ। ਲੈ ਅੰਕ ਲਾਏ ਹਰ ਮਿਲਾਏ, ਜਨਮ ਮਰਨਾ ਦੁਖ ਜਲੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰੀ, ਮੇਲ ਲੀਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇ। ਜੈਤ ਸਰੀ ਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪਾਧਾਣੂ ਸੰਸਾਰ ਗਰਭ ਅਟਿਆ। ਕਰਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਟਿਆ। ਲੋਭ ਮੋਹੇ ਅਭਿਮਾਨ ਬੂਡੇ, ਮਰਨ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਵਿਵਹਾਰ ਬੰਤਾ ਇਹ ਕਰਤ ਬਿਹਾਵੇ। ਪੁਜ ਦਿਵਸ ਆਏ ਲਿਖੇ ਮਾਏ, ਦੁਖ ਧਰਮ ਤੂਤੈ ਡਿਠਿਆ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਨਾ ਮਿਟੈ ਨਾਨਕ, ਹਰ ਨਾਮ ਤਨ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ। ਉਦਮ ਕਰੈ ਅਨੇਕ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਗਾਵਹੀ, ਭਰਮੈ ਜੋਨਿਆ ਸੰਖ ਮਰਜਨ ਮੈਂ ਆਵਹੀ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀ ਸੈਲ ਤਰਵਰ ਗਣਤ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੇ। ਬੀਜ ਬੋਵਸ ਭੋਗ ਭੋਗੈ, ਕੀਆ ਆਪਣਾ ਪਾਵੇ। ਰਤਨ ਜਨਮ ਹਰ ਅੰਤ ਜੂਵੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਪਾਵਹੀ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਭਰਮੈ ਪਰਮਾਏ, ਖਿਨ ਏਕ ਟਿਕਣ ਨਾ ਪਾਵਹੀ। ਜੋਬਨ ਗਿਆ ਬਤੀ।

श्री राम रंगया पार पूर्णो नै निमख मन मैं उठिया, बिनवंत नानक कोट कागर बिन सबार ना झूठिया। चरण कमल शरण आए नानक आया, दुत्तर पै संसार प्रव आप तराया। मिल साध संगे भजे श्री तार, कर अंग प्रभ जी तारिया। हर मान लिए नाम दिए अवर कश ना बिचारिया। गुण निधान अपार ठाकर मन लोड़ींदा पाया, बिनवंत नानक सदा तृप्ते हर नाम भोजन खाया। जैत श्री महला पंजवा, वार श्लोका नाल एको अंकार सतगुर प्रसाद। सलोक आद पूर्ण मद पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर, सिमरंत संत सर्वत्र रमण, नानक अगनासन जगदीश्वर। पेखन सुनन सुनावन मन में दृढ़िय साच, पूर रहे ओ सर्वत्र मैं नानक हर रंग राज। पौड़ी हर एक निरंजन गाई है सब अंतर सोई, करण कारण समरथ प्रभ जो करे सो होई। खिन मैं थाप्यो थापदा तिस बिन नहीं कोई, खंड ब्रह्मंड पाताल दीप रविया सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी, निर्मल जन सोई। सलोक अरचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापन, सा सा स्मरंत नानक महायग्न ना बिनासन। मुख तले पैर उपरे वसंदो कहुथड़े थाए, नानक सो तनी क्यों विसारियो उदरे जिस दै नाए। पौड़ी रगत बिंद करने मिया अग्न उदर मजहार, उर्द मुख कुचीर बिकल नरक घोर गुबार। हर सिमरत तू ना जले, मन तन उर तार, बिखम थानो जिन रखिया तिस तिल ना विसार। प्रभ बिसरत सुख कदे नाहे, जासै जन्म हार। सलोक मन इच्छा दान करण सर्वत्र आसा पूर्ण, खंडन काल कलेस प्रभ सिमर नानक ने दूरन। हब रंग माने जिस संग तै स्यों लाइय ने हो, सो सहो बिंदना विसरो नानक जिन सुंदर रचिया दे हो। पौड़ी जियो प्राण तन तन दिया, दीने रस भोग गृह मंदर रथ अस दिए रचपले संजोग। सुत बनता साजन सेवक दिए प्रभ देवन जोग, हर सिमरतो तन मन हरिया लै जाए वियोग। साध संग हर गुण रमो बिनसे सब रोग, सलोक कुटम्ब जतन करण माया अनेक युद्ध में, हर भगत भावहीण नानक प्रभ बिसरत ते प्रेत तै। तुटड़िया सा प्रीत जो लाई बेअन स्यो, नानक सच्ची रीत साई से तीरत आ। पौड़ी जिस बिसरत तन पसम होए, कहते सब प्रेत खिन ग्रे मैं बिसना देवही, जिन स्यो सोई हेत। कर अनर्थ दर्ब संचया सो कार्य केत, जैसा बीजै सो लुणै कर में हो खेत। अकृत कणा हर विसरिया जोनी परमेत। सलोक कोटदान इस नानंग अनक सोधन पवित्र तै, उचरंत नानक हर हर रसना सर्व पाप विमुचते। ईंदन की तो मुकना पोरी दित्ती मुपाहे, मन वसंदड़ो सच सहो नानक हबो डुखड़े उलाहे। पौड़ी कोट अगा सब नाश होहे, सिमरत हर नाओ मन चिंदे फल पाई है हर के गुण गाओ।
जन मरण पै कटी है।

नाद कुरंकै बेदया सनमुख उठतावै पवर लोभी कुसुम बासका मिलिया बंधावै त्यों संत जना हर प्रीत है देख दर्श अगावै सलोक चितवंत चरण कमलं सास सास आराधन नै बिसरंत नाम यचत नानक आस पूर्ण परमेश्वर है शीतला मन मजाहे पलक न थीवै बाहरा नानक आसड़ी निवाहे सदा पेखंदो सच तनी पौड़ी आसावंती आस गोसाई पूरी है मिल गोपाल गोबिंद न कबहू झूरी है देहो दर्श मन चाओ ले जाए विसूरी है होए पवित्र शरीर चरना धूरी है पार ब्रह्म गुरुदेव सदा हजूरी है सलोक रसना उचरंत नामं श्रवणं सुनंत शब्द अमृत है नानक तन सद बलिहारं जिन्ना ध्यान पार ब्रह्मण है हब कूड़ावे काम एक सुसाई बाहरे नानक से ही तन जिन्ना पिरहड़ी सच स्यों पौड़ी सद बलिहारी तिन्ना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रधान निवावै प्रभ मथा हर जस लिखै बेअंत सोहै से हथा चरण पुनीत पवित्र चालै प्रपथा संता संग उदार सगला दुख लथा सलोक भावी अदोत करण हर रमण संयोग पूर्ण गोपाल दर्श भेटं सफल नानक सो मुहूर्त है कीम ना सका पाए सुख मिती हूं बाहरे नानक सा वेलड़ी प्रवान जित मिलंदड़ो मां पिरी पौड़ी सा वेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई सो मूर्त भला संयोग है जित मिलै गुसाई आठ पैर हर त्याय कै मन इच्छ पुजाई वड्डे भाग सतसंग होए निम लागा पाई मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई सलोक पतत पुनीत गोबिंद सर्व दुख निवारण सरण सूर भगवान जपंत नानक हर हर हरे छड्यो हब आप लगड़ो चरना पास नठड़ो दुख ताप नानक प्रापे खंदया पौड़ी मेल लहो दयाल टह पै द्वारे रख ले वो दीन दयाल परमत बवहारे आ भगत वछल तेरा बिरद हर पत ते उधारिया तुझ बिन नाही कोए बिना मोए सारिया कर गै लेहो दयाल सागर संसारिया सलोक संत उदरण दयालं आसरंग गोपाल कीर्तन निर्मलंग संत संगेन ओट नानक परमेश्वर है चंदन चंदना सरद रुत मूल न मिटई काम शीतल थी वै नानका जपंदड़ो हर नाम पौड़ी चरण कमल की ओट उदरे सगल जन सुन प्रताप गोविंद निरपो पय मन तोट न आवै मूल संचया नाम तन संत जना स्यो संग पाइय वड्डे पुन आठ पहर हर त्याए हर जस नित सुन सलोक दया करणं दुख हरणं उचरणं नाम कीर्तन दयाल पुरख भगवान नानक लिप्त नाम आया पाहे बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप जिन पाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप पौड़ी जा प्रभ पय दयाल ना व्यापै माया कोट अगा गए नास।

रे गली सैल उठावत चाहै ओए ऊहा ही है तरे जोर सकत नानक किश नाही प्रभ राखो शरण परे। टोडी महला पंजवां हर के चरण कमल मन त्याओ काढ कुठार पित बात हंता औखद हर को नाओ रहाओ। तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास ताको बिगड़ न को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास। संत प्रसाद वैद नारायण करण कारण प्रभ एक बाल बुद्ध पूर्ण सुखदाता नानक हर हर टेक। टोडी महला पंजवा हर हर नाम सदा सद जाप तार अनुग्रह पार ब्रह्म स्वामी वसदी की नी आप रहाओ। जिसके से फिर तिन ही समाले बिन से सोग संताप हाथ दे राखे जने अपने हर होए माई बाप। जी जंत होए मेहरवाना दया तारी हरनाथ नानक शरण परे दुख पंजन जाका वड प्रताप। टोडी महला पंजवा स्वामी शरण परयो दरबारे कोट पराध खंडन के दाते तुझ बिन कौन उधारे रहाओ। खोजत खोजत बहु प्रकारे सर्ब अर्थ बिचारे साध संग परमगत पाई ऐ माया रच बंध हारे। चरण कमल संग प्रीत मन लागी सुरजन मिले प्यारे नानक आनंद करे हर जप जप सगले रोग निवारे। टोडी महला पंजवा कर तीजा चौपद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हां हां लपट्योरे मूड़े कछु ना थोरी तेरो नहीं सोजानी मोरी रहाओ। आपन राम ना चीनो खिनुआ जो पराई सो अपनी मनुआ नाम संगी सो मन ना बसायो छोड़ जाए वाहू चित लायो। सो संचयो जित भूख तसायो अमृत नाम तोसा नहीं पायो। काम क्रोध

आनंद चिता हर खे पतीन तिस ही को गृह सोई प्रभ नानक सो ठाकुर तिस ही को तीन। टोडी महला पंजवा माई मेरे मन की प्रीत एही कर्म धर्म जप एही राम नाम निर्मल है रीत। रहाओ प्राण आधार जीवन तन मोरै देखन कौ दर्शन प्रवनीत। बाट घाट तोसा संग मोरै मन अपने कौ मैं हर सखा कीत। संत प्रसाद भय मन निर्मल कर कृपा अपने कर लीत। सिमर सिमर नानक सुख पाया आद जुगाद भगतन के मीत। टोडी महला पंजवा प्रभ जी मिल मेरे प्राण बिसर नहीं निमख ही अरे ते अपने भगत कौ पूर्ण दान। रहाओ खोवो परम राख मेरे प्रीतम अंतर जामी सूढ़ सुजान। कोट राज नाम तन मेरा अमृत दृष्ट धारो प्रमान। आठ पहर रसना गुण गावे जस पूरा गावे समर्थ कान। तेरी शरण जियन के दाते सदा सदा नानक कुर्बान। टोडी महला पंजवा प्रभ तेरे पग की तूर दीन दयाल प्रीतम मन मोहन कर कृपा मेरी लोचा पूर। रहाओ दै जसरव रहया जस तुमरा अंतर जामी सदा हजूर। जो तुमरा जस गावे करते सेजन कबो न मरते चूर। तंद बंद बिनसे माया के साधु संगत मिटे बिसूर। सुख संपत भोग इस जी के बिन हर नानक जाने कूर। टोडी महला पंजवा माई मेरे मन की प्यास एक खिन रह ना सको बिन प्रीतम दर्शन देखन कौ धारी मन आस। रहाओ सिमरो नाम निरंजन करते मन तन ते सब किल विखनास। पूरन पार ब्रह्म सुखदाते अविनाशी बिमल जा को जास। संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा भेटे गुणतास। सांत सहज सूख मन उपजियो कोट सूर नानक प्रगास। टोडी महला पंजवा हर हर पद पावन जी प्राण मान सुखदाता अंतर जामी मन को पावन। रहाओ सुंदर सुगड़ चतर सब बेता रिद दास निवास भगत गुण गावन। निर्मल रूप अनूप स्वामी करम भूम बीजन सो खावन। बिस्मन बिस्म पय बिस्मादा यान बियो दूसर लावन। रसना सिमर सिमर जस जीवा नानक दास सदा बल जावन। टोडी महला पंजवा माई माया शाल त्रिण की अगन में की छाया गोविंद भजन बिन हड़का जाल। रहाओ छोड़ सियान बहु चितराई दोए कर जोड़ साध मग चल। सिमर स्वामी अंतर जामी मानुख देह का एहो उत्तम फल। बेद बखयान करत साधु जान पागहीन समझत नहीं खल। प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दहन भय माल। टोडी महला पंजवा माई चरण गुर मीठे वड़े भाग देवे परमेसर कोट फला दर्शन गुर डीठे। रहाओ गुण गावत्या चुत बनासी काम क्रोध बिनसे मद टीठे। अस्त्र पए साच रंग राते जन्म मरण बाहुर नहीं पीठे। बिन हर भजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब झूठे। नाम रतन पायो जन नानक ना बेहून चले सब मूठे। टोडी महला पंजवा साध संग हर हर नाम चितारा सहजानंद होवे दिन राती अंकर भलो हमारा। रहाओ गुर पूरा पेट्यो वड भागी जा को अंत ना पारा वारा। कर गह काड लियो जन अपना बिकसागर संसारा।
जन्म मरण काटे गुरबचनी बहु न संकट द्वारा, नानक शरण गही स्वामी की पुनः पुनः नमस्कारा। टोडी महला पंजवा माई मेरे मन को सुख, कोट आनंद राज सुख भोगवै हर सिमरत बिनसै सब दुख रहाओ। कोट जन्म के किल बिख नास, सिमरत पावन तन मन सुख, देख स्वरूप पूर्ण पई आसा दर्शन पेट उत्तरी भुख। चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ ना तुख। टोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय और तारे, सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हमारे रहाओ। पुन दान पूजा परमेश्वर, हर कीर्त तत् विचारे, गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकर अगम्या पारे। जो जन पार ब्रह्म अपने कीने, तिनका बाहुर कश ना बिचारे। नाम रतन सुन जप जप जीवा, हर नानक कंठ मजारे। टोडी महला नावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कहो कहां अपनी अदमाई, उर्ज कनक कामनी के रस, नह कीर्त प्रभ गाई रहाओ। जग झूठे कहो साच जान कै, ता स्यो रुच उपजाई, दीन बंद सिमर्यो नहीं कबहू, होत जो संग सहाई। मगन रहो माया मैं निस्दन, छुट्टी न मन की काई, कह नानक अब नाहे अनत गत, बिन हर की सरनाई। टोडी बाणी भगता की एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर, जल की माछली चरै खजूर। काए रे बकबाद लायो, जिन हर पायो तने छपायो रहाओ। पंडित होए कै बेद बखाने, मूर्ख नाम देवरा मैं जाने। कौन को कलंक रहयो, राम नाम लेत ही पतत पवित पय राम कहत ही रहाओ। राम संग नाम देव, जन कौ परतग्या आई, एकादशी वर्त रह काहे कौ तीर्थ जाई। पंडित नाम देव सुकृत सुमत पय, गुरमत राम कह को ना बैकुंठ गए। तीन छंदे खेल अच्छा रहाओ, कुंभार के कर हांडी अच्छा, राजा के कर सांडी गो, बामन के कर रांडी अच्छा, रांडी सांडी हांडी गो, बाणिए के

दरियाओ तू दिहंद तू बिसियार तू धनी देह लेह एक तू दिगर को नहीं तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करी नामे चे स्वामी बखसंद तू हरी हल्ले यारा खुशखबरी बल बल जाओ हाँ बल बल जाओ निकी तेरी बिगारी आले तेरा नाओ रहाओ कुजा आमद कुजा रफती कुजा मेरवई द्वारका नगरी रास बगोई खूब तेरी पगरी मीठे तेरे बोल द्वारका नगरी काहे के मगोल चंदी हजार आलम एक लखाना हम चिनी पातशाह सामले बरना आसपात गजपात नर नरेंद नामे के स्वामी मीर मुकंद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद राग सुही

दूध कर्म फुन सुरत समायण होए निराश जमावो जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा रहाओ। एहो मनीटी हाथ करो फोनो नेत्रो नींद ना आवे रसना नाम जपो ता मथिया इन बदे अमृत पावो। मन संपटो जित सत सरनावण पावन पाती तृप्त करे पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहेब रवत रह। कहिंदे कहे कहे कह जावे तुम सर अवर ना कोई भगत हीन नानक जन जंपे हौसा लाही सच्चा सोई। सूही महला पहला कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद अंतर वसै ना बाहर जाए अमृत छोट काहे बिख खाए ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे होवो चक्र साचे केरे रहाओ। ज्ञान ध्यान सब कोई रवे बंधन बांधया सब जग पवे सेवा करे सो चाकर होए जल थल महियल रव रहया सोए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए प्रणवत नानक तारे सोए। सूही महला पहला कर शेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद उज्जल कहा चिलकना कोटम कर लड़ी मस तोतिया झूठ ना उतरै जे सो तो तिस सज्जन से ही नाल मैं चल दिया नाल चलन जिथे लेखा मंगिया तिथे खड़े दिसन रहाओ। कोठे मंडप माड़िया पासो चितवियां हां टठिया कम ना आवनी विचों सखणिया हां बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मंज वसन कुटकुट जिया खावने बग्गे ना कई अन्न। सिमर रुख शरीर मैं जन देख पुलान से फल कम ना आवनी ते गुण मैं तन हन। अंदले पार उठाया डूगर वाट बहुत अखी लोड़ी ना लहा हौ चढ़ लंगा कित चाकरियां चंगे आईया अवर स्याण पकित नानक नाम संभाल तू बद्दा छुट्टै जित। सूही महला पहला जप तप का बंद बेड़ला जित लंगे वहेला ना सरवर ना उछलै ऐसा पंथ सुहेला। तेरा एको नाम जीठड़ा रत्ता मेरा चोला साध रंग ढोला रहाओ। साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई जे गुण हो वै गंठड़ी है मेलेगा सोई। मिलिया होए ना विछड़ै जे मिलिया होई आवा गाउण निवारिया है साचा सोई। हाँ मैं मार निवारिया सीता है चोला गुरबचनी फल पाया सह के अमृत बोला। नानक कह सहेलियो सौ खरा प्यारा हम सह केरिया दासियां साचा खसम हमारा। सूही महला पहला जिन कौ पांडे पाओ तिना सवार सी सुखी करै पसाओ दुख विसार सी। सहसा मूले नाहे सर पर तार सी इतना मिलिया गुर आए जिन कौ लिखिया। अमृत हर का नाव देवै दिखिया चल ऐ सतगुर पाए पवै ना पीखिया। जा को महला हजूर दूजे नवै किस दर दर वाणी नाहे मूले पुछ तिस। छुट्टै ता कै बोल साहिब नदर जिस कल्ले आने आप जिस नाही दूजा मतै कोए। ताहे उसारे साज जाने सब सोए नाओ नानक बख्शीस नदरी कर्म होए। सूही महला पहला पांडा हच्छा सोए ज्योत स्पाव सी पांडा आत्मलीन तोता हच्छा ना होए सी। गुरु द्वारे होए सोजी पाए सी ये द्वारे तोए हच्छा होए सी। मैले हच्छे का विचार आप वरताए सी मत को जाने जाए अगै पाए सी। जेहे कर्म कमाए तेहा होए सी अमृत हर का नाव आप वरताए सी।
ਚੱਲਿਆ ਪਤ ਸਿਉ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵਾਜਾ ਵਾਏ ਸੀ ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਤਿਹ ਲੋਕ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਿਹਾਲ ਸਭ ਕੁਲਤਾਰ ਸੀ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੋਗੀ ਹੋਵੇ ਜੋਗ ਵੈ ਭੋਗੀ ਹੋਵੇ ਖਾਏ ਤਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਪ ਕਰੇ ਤੀਰਥ ਮਲ ਮਲ ਨਹਾਏ ਤੇਰਾ ਸਦੜਾ ਸੁਣੀ ਜੈ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋ ਬਹਿ ਅਲਾਏ ਰਹਾਓ ਜੈਸਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੈ ਜੋ ਖੱਟੇ ਸੋ ਖਾਏ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸਣਨੀ ਸਣੈ ਜਾਏ ਤੈ ਸੋ ਜੈਸਾ ਕਾਂਢੀਐ ਜੈਸੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਜੋ ਦਮ ਚੇਤਨਾ ਆਵਈ ਸੋ ਦਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਇਹੋ ਤਨ ਵੇਚੀ ਬੈ ਕਰੀ ਜੇ ਕੋ ਲੈ ਵਿਕਾਏ ਨਾਨਕ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਈ ਜਿਤਨ ਨਾਹੀ ਸੱਚਾ ਨਾਉ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰ ਸਤਵਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੋਗ ਨਾ ਖਿੰਥਾ ਜੋਗ ਨਾ ਡੰਡੈ ਜੋਗ ਨਾ ਭਸਮ ਚੜਾਈਐ ਜੋਗ ਨਾ ਮੁੰਦੀ ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾਇਐ ਜੋਗ ਨਾ ਸਿੰਘੀ ਵਾਈਐ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਐ ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸੰਸਰ ਜਾਣੈ ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਸੋਈ ਰਹਾਓ ਜੋਗ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਜੋਗ ਨਾ ਤਾੜੀ ਲਾਈਐ ਜੋਗ ਨਾ ਦੇਹ ਦਸੰਤਰ ਭਵੈ ਜੋਗ ਨਾ ਤੀਰਥ ਨਾਈਐ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਤਾਂ ਸਹਿਸਾ ਤੂਟੈ ਤਾਵਤ ਵਰਜ ਰਹਾਈਐ ਨਿਜਰ ਚਰੈ ਸਹਿ ਤੁਨ ਲਾਗੈ ਕਰਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਈਐ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕ ਜੀਵਤਿਆਂ ਮਰ ਰਹੀਐ ਐਸਾ ਜੋ ਕਮਾਈਐ ਵਾਜੇ ਬਾਜੋ ਸਿੰਘੀ ਵਾਜੈ ਤਉ ਨਿਰਭਉ ਪਦ ਪਾਈਐ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਜੋ ਜੁਗ ਤਉ ਪਾਈਐ

मेरे लाल जियो तेरा अंत ना जाना, तू जल थल मैयर भरपुर लीना, तू आपे सर्ब समाना रहाओ। मन तारा जी चित तोला, तेरी सेव शराब कमावा, कट ही पीतर सो सह तोली, इन विद चित रहावा। आपे कंडा तोल तो राजी, आपे तोलन हारा, आपे देखा आपे बूझे, आपे है मनजारा। अंदला नीच जात परदेसी, खिन आवे तिल जावे, ता की संगत नानक रहिंदा, क्यों कर मूड़ा पावे। राग सुही महला चौथा, कर पहला एको अंकार, सतगुर प्रसाद मन राम नाम आराध्या, गुर शब्द गुरु गुर के, सब इच्छा मन तन पूरिया, सब चूका डर जम के। मेरे मन गुण गावो राम नाम हर के, गुर तुठे मन पर बोधया, हर पिया रस गट के रहाओ। सत संगति उत्तम सतगुर केरी, गुण गावे हर प्रभ के, हर कृपा तार मिलो सत संगत, हम धोवे पग जन के। राम नाम सब है राम नामा, रस गुरमत रस रस के, हर अमृत हर जल पाया, सब लाथी तिस तिस के। हमरी जात पात गुर सतगुरु, हम वेचो सिर गुर के, जन नानक नाम परयो गुर चेला, गुर राखो लाज जन के। सुही महला चौथा, हर हर नाम भजो पुरखोत्म, सब बिन से दाल दलगा, पौ जन मरना मेट्यो गुर सबदी, हर अस्थर सेव सुख समगा। मेरे मन पज राम नाम अत पिरगा, मैं मंतन अर्प धरियो गुर आगै, सिर वेच लियो मुल महंगा रहाओ। नरपत राजे रंग रस मान, बिन नामे पकड़ खड़े सब कलगा, धर्म राय सिर डंड लगाना, फिर पछताने हथ फलगा। हर राख राख जन किरम तुम्हारे, सरनागत पुरख प्रत पलगा, दर्शन संत देहो सुख पावे, प्रभ लोच पूर जन तुमगा। तुम समरथ पुरख वड्डे प्रभ स्वामी, मोको कीजे दान हर निमगा। जन नानक नाम मिले सुख पावे, हम नाम विटाओ सद घुमगा। सूही महला चौथा, हर नामा हर रंग है, हर रंग मजीठ रंग, गुर तुठे हर रंग चाड़िया, फिर बहु न हो भी भंग। मेरे मानो हर राम नाम कर रंग, गुर तुठे हर उपदेसिया, हर पेटिया राओ निसंग रहाओ। मुंद आनी मन मुखी, फिर आवन जाना अंग, हर प्रभ चेतना आयो, मन दूजा पाओ सहलंग। हम मैल भरे दुहचारिया, हर राखो अंगी अंग, गुर अमृत सर नवलाया, सब लाथे किलवख पंग। हर दीना दीन दयाल प्रभ, सत संगत मेलो संग, मिल संगत हर रंग पाया, जन नानक मन तन रंग। सूही महला चौथा, हर हर करे नित कपट कुमावे, हिरदा सुध ना होई, आन दिन कर्म करे बहु तेरे, सुपने सुख ना होई। ज्ञानी गुरबिन भगत ना होई, कोरे रंग कदे ना चढ़े, जे लोचे सब कोई रहाओ। जप तप संयम वर्त करे पूजा।

उनका उत्तर जाएगा झूठ को मान, जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान, दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हूं करी वखियान, सुही महला चौथा कर सतवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद तेरे कमन कमन गुण कह कह गावा, तू साहेब गुणी निदाना, तुमरी महिमा वर्ण ना साकाओ, तू ठाकर ऊच भगवाना, मैं हर हर नाम तर सोई, ज्यो भावै त्यो राख मेरे साहेब, मैं तुझ बिन अवर ना कोई रहाओ, मैं तान दी बाण तू है मेरे स्वामी, मैं तुझ आगे अरदास, मैं होर थाओ नाही जिस पै करो बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास, विचे धरती विचे पानी, विच काष्ट अगंतरी जय, बकरी सिंह एक तै थाए राखे, मन हर जा भ्रम पौ दूर की जय, हर की वड़ियाई देखो संतो, हर निमाणिया मान देवाए, ज्यो धरती चरण तले ते उपर आवै, त्यो नानक साध जना जगत आन सब पैरी पाए, सूही महला चौथा तू करता सब किछ आपे जाने, क्या तुद पै आग सुनाई है, बुरा भला तू सब के सूझै।

चारों सगल समग गई मैं कर की जोड़ी, आस पे आसी पिर कौ लोड़ी, कवन कहां गुण कंत प्यारे, सुगुण स्वरूप दयाल मुरारे, रहाओ सत सिंगार पौ अंजन पाया, अमृत नाम तंबोल मुख खाया, कंगन बस्तर गहने बने सुहावे, तन सब सुख पावे, जा पिर कर आवे, गुण कामण कर कंत

प्रगटया सूर ज्योत उजियारा सेज विशाई सरदया पारा नवरंग लाल सेज राम ने आया जन नानक पिर तन मिल सुख पाया सूही महला पंजवा उमक्यो हियो मिलन प्रभताई खोजत चरियो देखो प्रे जाई सुनत संदेसरो प्रे गृह सेज विशाई भ्रम भ्रम आयो तौ नजर ना पाई किन बिद हियरो धीरे निमानो मिल साजनहा तुझ कुर्बानो रहाओ एका सेज विशी तन कंता तन सूती पिर सद जा गंता पियो मदरो तन मतवंता तन जागे जे पिर बोलंता पही निरासी बहुत दिन लागे देह दिसंतर मैं सगले चागे खिन रहन ना पावाओ बिन पग पागे होए कृपाल प्रभ मिले इस पागे भयो कृपाल सतसंग मिलाया बूझी तप्त करै पिर पाया सगल सिंगार हुण मुझे सुहाया कहो नानक गुर परम चुकाया जै देखा तै पिर है भाई खोलियो कपाट ता मन ठहराई रहाओ दूजा सूही महला पंजवा क्या गुण तेरे।

लाल रंगीले प्रीतम मन मोहनो, तेरे दर्शन कहो हम बारे रहाओ। प्रभ दाता मोहि दीन पेखारी, तुम सदा सदा उपकारे, सो किश नाही जे मैं ते होवै। मेरे ठाकुर अगमे अपारे, क्या सेवक मावो क्या कहरी जावो, बिदगित पावो दरसारे। मित नहीं पाई है अंत न लही है, मंत्र सह चरनारे, पावो दान ढीठ होए मांगो, मुख लागे संतरे नारे। जन नानक कहो गुर कृपा तारी, प्रभ हाथ दे निस्तारे। सुही महला पंजवा कर तीजा, एको अंकार सतगुर प्रसाद, सेवा थोरी मंगन बहुता, महल ना पावे कह तो पहुता। जो प्रेमाने तिनकी रीसा, कूड़े मूर्ख की हाठी सा रहाओ। पेख दिखावे सच ना कमावे, कह तो महली निकट ना आवे। अतीत सदाए माया का माता, मने प्रीत कह मुखराता। कहो नानक प्रभ बिनो सुनी जय, कुचल कठोर कामी मुक्त की जय। दर्शन देखे की वडियाई, तुम सुखदाते पुरख सुभाई, रहाओ दूजा। सूही महला पंजवा, बुरे काम को ऊठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया। अवसर अपना बुझे ना याना, माया मोह रंग लपटाना, रहाओ। लोभ लहर कौ बिकस फूल बैठा, सात जना का दर्शन दीठा। कबहू ना समझे अज्ञान गवारा, बहुर बहुर लपट्यो जंजारा, रहाओ। बिखे नाद करन सुन पीना, हर जा सुनते आलस मन कीना। दृष्ट नाही रे पेखते अंधे, छोड़ जाहे झूठे सब तंदे, रहाओ। कहो नानक प्रभ बख्श करी जय, कर कृपा मोहे साध संग दीजै। तौ किश पाईऐ जौ होइऐ रेना, जिसै बुझाए तिस नाम लैना। रहाओ सुही महला पंजवा, कर मैं ठाकुर नदर ना आवै, गल मैं पाहण लै लटकावै। भरमे पूला सागत फिरता, नीर बिरोलै खप खप मरता, रहाओ। जिस पाहण कौ ठाकर कहता, ओह पाहण लै उस कौ डुबता। गुनहगार लूण हरामी, पाहण नाव ना पार गिरामी। गुरमिल नानक ठाकर जाता, जल थल महियल पूर्ण विधाता। सुही महला पंजवा,

सच्चा धर्म पुन भला कराए, दीन कह तो सह दुनी ना जाए, सर्व निरंतर एको जागे, जित जित लाया तित तित को लागे। अगम्या गोचर सच साहिब मेरा, नानक बोले बोलाया तेरा। सुही महला पंजवा, प्रातः काल हर नाम उचारी, ईत ऊत की ओढ़ सवारी। सदा सदा जपिए हर नाम, पूर्ण होवे मन के काम। रहाओ प्रभ अविनाशी रहन दिन गाओ, जीवत मरत निहचर पावे थाओ। सो साहो सेव जे टोट ना आवै, खात खर्चत सुख अंध विहावै। जग जीवन पुरख साध संग पाया, गुर प्रसाद नानक नाम ते आया। सुही महला पंजवा, गुर पूरे जपहे दयाल, दुख बिन से पूर्ण पई काल। पेख पेख जीवा दर्श तुम्हारा, चरण कमल जाई बलिहारा। तुझ बिन ठाकुर कवन हमारा, रहाओ साध संगत स्यों प्रीत बन आई। पूर्व कर्म लिखत तुर पाई, जप हर हर नाम अचरज प्रताप। जाल न सके तीने ताप, निमख न बिसरे हर चरण तुम्हारे। नानक मांगे दान प्यारे। सुही महला पंजवा, से संजोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे।

जिस कृपा करे बसै तिस नेरा, जन की भूख तेरा नाम आहार, तू दाता प्रभ देवनहार। राम रमत संतन सुख माना, नानक देवनहार सो जाना। सुही महला पंजवा, बहती जात कदे दृष्णा तारत, मिथ्या मोह बंधे नित पारच। माधवे पज दिन नित रैणी, जन पदार्थ जीत हर सरणी रहाओ। करत बेकार दो कर चहारत, राम रतन रित नहीं तारत। परन पोखन संग औद बिहानी, जय जगदीश की गत नहीं जानी। सरण समर्थ अगोचर स्वामी, उदर नानक प्रभ अंतर जामी। सुही महला पंजवा, साध संग तरै पै सागर। हर हर नाम सिमर रतनागर, सिमर सिमर जीवा नारायण। दुख रोग सोग सब बिनसे, गुर पूरे मिल पापत जायण। रहाओ जीवन पदवी हर का नाओ, मन तन निर्मल साच सुवाओ। आठ पहर पार ब्रह्म ते आई है, पूर्व लिखत होए ता पाई है। शरण पै जप दीन दयाला, नानक जाचै संतर वाला। सुही महला पंजवा, कर का काज ना जानी रूड़ा, झूठे तंदै रचियो मूड़ा।

दर्शन कह लोचै सब कोई, पूरे भाग प्राप्त होई रहाओ। श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई, महामोहनी दूता लाई। प्रेम विशोहा करत गसाई, निर्दय जंत तिस दया ना पाई। अनक जन्म बीतियन परमाई, कर वासना देवै दुत्तर माई। दिन रहने अपना किया पाई, किस दोष ना दी जय कृत पवाई। सुन साजन संत जन पाई, चरण सरन नानक गत पाई। राग सुही महला पंजवां, कर चौथा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद भली सुहावी छापरी, जा मैं गुण गाए। कित ही कामना तौल हार, जित हर बिसराए रहाओ। अनद गरीबी साध संग, जित प्रभ चित आए। जल जाओ एह बड़पना, माया लपटाए। पीसन पीस ओड कामरी, सुख मन संतोखाए। ऐसो राजना कितै काज, जितने त्रिपताए। नगन फिरत रंग एक कै, ओहो सोभा पाए। पाठ पटंबर बिरथिया, जेहरा चलो बाए। सब किश तुमरै हाथ प्रभ, आप करे कराए। सास सास सिमरत रहा, नानक दान पाए। सूही महला पंजवां, हर का संत प्राण तानु, तिसका पनिहारा। भाई मीत सुत सगल ते, जीहू ते प्यारा। रहाओ केसा का कर बीजना, संत चौर टोलावो। शीस निहारो चरण तल, तूर मुख लावो। मिष्ट बचन बेनती करो, दीन की न्याई। तज मान सरणी परो, हर गुण निद पाई। अवलोकन पुनः पुनः करो, जन का दरसार। अमृत बचन मन में सिंचाओ, बंदाओ बार बार। चितवो मन आसा करो, जन का संग मांगो। नानक को प्रभ दया कर, दास चरणी लागो। सुही महला पंजवां, जिन मोहे ब्रह्मंड खंड, ताहू मैं पाओ। राख लेहो एहो बिखई जियो, देहो अपना नाओ रहाओ। जाते नाही को सुखी, ता कै पाछे जाओ। छोड़ जाहे जो सगल कहो, फिर लपटाओ। करहो कृपा करना पते, तेरे हर गुण गाओ। नानक की प्रभ बेनती, साध संग समाओ। राग सुही महला पंजवां, कर पंजवां पड़ताल। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना। जप मन गोबिंद एक है, अवर नहीं को लेख है। संत लाग मने छाड़, दुबदा की कुरिया रहाओ। निर्गुण हरिया सरगुण तरिया, अनक कोठरिया पिन पिन पिन पिन करिया। विच मन कोट वरिया, निज मंदिर प्रिया। तहां आनंद करिया, न मरिया न जरिया। कीर्तन जुरिया बहुविध फिरिया, पर कौ हिरिया। बिखना किरिया अब साधु संग परिया। हर द्वारे खरिया दर्शन करिया, नानक गुर मिरिया बहुर ना फिरिया। सुही महला पंजवां, रास मंडल कीनो आखारा। सगलो साज रखियो पासारा रहाओ। बहुविध रूप रंग आपारा, पेखै खुशी भोगन ही हारा। सब रस लैत बस्त निरारा, वर्ण चिहन नाही मुख नाम सारा। कहन न जाई खेल तुहारा, नानक रेण।

ज्यों भावै त्यों राखो स्वामी, मार्ग गुरै पठाया रहाओ। महादुत्तर माया जैसे पवन चुलाया, सुर सुन ही डराया कर रोत हमराया। ग्रह अंध कु पाया पावक सगराया, गही ओढ़ साधाया नानक हर त्याया। अब मैं पूरा पाया राग सूही महला पंजवां, कर छेवां एको ओंकार। सतगुर प्रसाद सतगुर पास बेनंतियां, मिले नाम आधारा। तुठा सच्चा पात साहो ताप गया संसारा। भगता की टेक तू संता की ओट तू, सच्चा सिरजनहारा रहाओ। सच तेरी सामगरी सच तेरा दरबारा, सच तेरे खजीनिया सच तेरा पासारा। तेरा रूपया गम है अनूप तेरा दरसारा, हौ कुरबानी तेरिया सेवका जिन हर नाम प्यारा। सबे इच्छा पूरियां जा पाया अगम्या पारा, गुरु नानक मिलिया पार ब्रह्म तेरिया चरणा कौ बलिहारा। राग सूही महला पंजवा, कर सतवां एक ओंकार। सतगुर प्रसाद तेरा पाना तू है मनाए, जिसनो होए दयाला। साई भगत जो तुद पावे, तू सर्व जिया प्रतपा।

आस चुकाई मेरे राम राए तुद चित आया उबरे तेरी टेक प्रभासा तुमरा जपनाम तुम्हारा उदरे रहाओ अंध कूप ते काल लिए तुम आप है कृपाला सार समाल सर्व सुख दिए आप करे प्रतपाला अपनी नदर करे परमेसर बंधन काट छड़ाए अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाए परम गया पै मोह बिनासे मिटिया सगल विसूरा नानक दया करी सुखदाता पेटिया सतगुर पूरा सूही महला पंजवा जब कछ ना सीओ तब क्या करता कवन कर्म कर आया अपना खेल आप कर देख ठाकर रचन रचाया मेरे राम राय मुझते कछु न होई आपे करता आप कराए सर्व निरंतर सोई रहाओ गणती गणी न छूटे कतहू काची दे आनी कृपा करो प्रभ करण हारे तेरी बख्श निराली जी जंत सब तेरे कीते कट कट तू ही ते आई है तेरी गतमित तू है जाने कुदरत कीम ना पाई है निर्गुण मुग्द अजान अज्ञानी कर्म धर्म नहीं जाना दया करो नानक गुण गावे मिठा लगे तेरा पाना सूही महला पंजवा पाग ठड़े हर संत तुम्हारे जिन कर तन हर नामा प्रवान गणी से ही एह आए सफल तिना के काम मेरे राम हर जन कह हम

तेरी बख्शना मेटे कोई सतगुर का दिलासा। नाम ते आए न सुख फल पाए न आठ पहरे आराधै, तेरी शरण तेरे परवासै पंच दुष्ट लै सादै। ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। सूही महला पंजवां सगल त्याग गुरसरणी।

आठ पहर प्रभ अपना त्याई है, गुर प्रसाद पौतरी है, आप त्याग होई है सब रेणा, जीवत्या इं मरी है, सफल जन्म तिसका जग पीतर, साध संग नाव जापे।

कर कृपा अपना नाम दीजै, नानक साधर वाला। राग सूही अष्टपदियां महला पहला, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सब अवगुण में गुण नहीं कोई, क्यों कर कंत मिलावा होई। ना मैं रूप ना बंके नैना, ना कुल ढंग ना मीठे बैना रहाओ। सहज सिंगार कामन कर आवै, ता सुहागण जा कंतै पावै। ना तिस रूप ना रेख्या काई, अंत ना साहेब सिमरिया जाई। सुरत मत नाही चतराई, कर कृपा प्रभ लावो पाई। खरी सियाणी कंत ना पाणी, माया लागी परम पुलाणी। हौ मैं जाई ता कंत समाई, तौ कामण प्यारे नवनिध पाई। अनक जन्म बिछरत दुख पाया, कर गै लेहो प्रीतम प्रभराया। पंडित नानक।

कच्चा रंग कसुंबका थोड़िया दिन चार जियो विनावै परम पुलिया ठग मुठी कूड़ियार जियो सच्चे सेती रत्या जन्म ना दूजी वार जियो रंगे काक्या रंगी है जो रत्ते रंग लाए जियो रंगण वाला सेवी है सच्चे सोच तलाए जियो रहाओ चारे कुंडा जे पवै बिन भागा।

तिन मुख नाम न उपजै, दूजै व्यापे चोर जियो। मूल न बुझै अपना, से पशुआ से ढोर जियो। नित नित खुशियां मन करे, नित नित मंगै सुख जियो। करता चित न आवई, फिर लगै दुख जियो। सुख दुख दाता मन वसै, ते तन कैसी भुख जियो। बाकी वाला तलबिया सिर मारे जंदार जियो। लेखा मंगै देवना, पुछै कर विचार जियो। सच्चे की लिव उबरै, बख्शे बख्शनहार जियो। अन को की जय मित्रा, खाक रलै मर जाए जियो। बहु रंग देख पुलाया, पुल पुल आवै जाए जियो। नजर प्रभु ते छुट्टी है, नजरी मेल मिलाए जियो। गाफल ज्ञान में होनिया, गुरबिन ज्ञान ना पाल जियो। खिंचो तान में गुची है, बुरा भला दोए नाल जियो। बिन शब्द पैर ते आ, सब जो ही जमकाल जियो। जिन कर कारण तारे आ, सब सहदे आधार जियो। सो क्यों मनो विसारी है, सदा सदा दातार जियो। नानक नाम ना

मानस जन्म दुलंब गुरमुख पाया मन तन होए चुलंब जे सतगुर पाया चले जन्म सवार वखर सच लै पथ पाए दरबार सतगुर शब्द पै रहाओ मन तन सच सलाहे साचे मन पाया लाल रता मन मानिया गुरपूरा पाया हौ जीवा गुण सार अंतर तू वसै मन माए सहजे रस रसै मूर्ख मन समझाए आखो के तड़ा गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा नित नित हृदय संभाल प्रीतम अपना जे चले गुण नाल नाही दुख संतापना मन मुख परम पुलाना ना तिस रंग है मरसी होए विडाणा मन तन भंग है गुर की कार कमाए लाहा कर आणिया गुरबाणी निर्बाण शब्द पछाणिया एक नानक की अरदास जे तुद भावसी मैं दीजै नाम निवास हर गुण गावसी सूही महला पहला ज्यों आरन लोहा पाए पन कढ़ाई है त्यों साक्त जोनी पाए पवै पवाई है बिन बूझे सब दुख दुख कमावना हो मैं आवै जाए परम पुलावना रहाओ तू गुरमुख रखन हार हर नाम ते आई है मेलै तुझै रजाए शब्द कमाई है तू कर कर वेखै आप देह सो पाई है तू देखै थापो थाप दर भी नाई है देही होवग खाक पमन उडाई है इहो किथे कर औताक महल ना पाई है देहो दीवी अंधकोर कब मुहाई है गर्भ मुसै कर चोर किस रू आई है गुरमुख चोर ना लाग हर नाम जगाई है शब्द निवारी आग जोधी पाई है लाल रतन हर नाम गुरसुरत बुझाई है सदा रह निकाम जे गुरमत पाई है आराध्य है हर नाम मन वसाई है नानक मेल मिलाए जे तुद पाई है सूही महला पहला मनो ना नाम विसार अहन सत्याई है जो राखे कृपा तारत वै सुख पाई है मैं अंदले हर नाम लखटी टोहनी रहो साहिब की टेक ना मोह मोहनी रहाओ जै देखो तै नाल गुर देखालिया अंतर बाहर पाल शब्द निहालिया सेवी सतगुर पाए नाम निरंजना तुद पावै तवैर जाए परम पौ पंजना जन्मत ही दुख लागै मरना आए कै जन्म मरण परवान हर गुण गाए कै हौ नाही तू होवै तुद ही साजिया आपे थापो थाप शब्द निवाजिया देही भस्म रुलाए ना जापी कह गया आपे रया समाए सो विस्माद पया तू नाही प्रभ दूर जाने सब तू है गुरमुख वेखा दूर अंतर पी तू है मैं दीजै नाम निवास अंतर सांत होए गुण गावै नानक दास सतगुर मत दे राग सूही महला तीजा कर पहला अष्टपदिया एको अंकार सतगुर प्रसाद नामै ही ते सब किश होवा बिन सतगुर नाम ना जापै गुर का शब्द महारस मीठा बिन चाखे साध ना जापै कौडी बदलै जन्म गवाया चीनस नाही आपै गुरमुख होवै ताए को जाने हौ मैं दुख ना संतापै बलिहारी गुरे अपने विटाओ जिन साचे स्यों लिवलाई शब्द चीन आत्म पर गासिया सहजे रिया समाई रहाओ गुरमुख गावै गुरमुख बूझै गुरमुख शब्द बीचारे जियो पिंड सब गुरते उपजै गुरमुख कारज सवारे मनमुख अंधा अंध कमावै बेखटे संसारे माया मोहे सदा दुख पाए बिन गुरियत प्यारे
ਸੋਈ ਸੇਵਕ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਚਾਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਸਾਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿਫਤ ਹੈ ਸਾਚੀ ਸਾਚਾ ਮਨ ਵਸਾਏ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੈ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਕਰਮ ਹੈ ਸਾਚਾ ਸਾਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਖੱਟੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਾਏ ਸਦਾ ਅਲਿਪਤ ਸਾਚਾ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਮਨਮੁਖ ਸਦ ਹੀ ਕੂੜੋ ਬੋਲੈ ਬਿਖ ਬੀਜੈ ਬਿਖ ਖਾਏ ਜਮਕਾਲ ਬਾਦਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾਦਾ ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਮਣ ਛਡਾਏ ਸੱਚਾ ਤੀਰਥ ਜਿਤ ਸਤ ਸਰ ਨਾਵਣ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਅੜ ਸੜ ਤੀਰਥ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਿਖਾਏ ਤਿਤ ਨਾ ਤੈ ਮਲ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੈ ਨਾ ਲਾਏ ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਾਲਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ ਤਨ ਮਨ ਸਭ ਕਿਛ ਹਰ ਤਿਸ ਕੇਰਾ ਦੁਰਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ ਹਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਸਹਿਜੇ ਚਾਖੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਯਗਨ ਬੁਝਾਏ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਰਾਤਾ ਸਹਿਜੇ ਮਾਤਾ ਸਹਿਜੇ ਰਿਆ ਸਮਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਕੈ ਪਾਏ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ਸੱਚੇ ਨਾਏ ਪਿਆਰੇ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸਮੈ ਵਰਤੈ ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪੇ ਮੇ ਲਏ ਤਾਂ ਬਖਸੇ ਸੱਚੀ ਭਗਤ ਸਵਾਰੇ ਸਭੋ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮੋ ਵਰਤੈ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਤਿਸਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਵੈ ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਕਾਇਆ ਕਾਮਣ ਅਤ ਸਵਾਲਿਓ ਪਿਰ ਵਸੈ ਜਿਸ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲੇ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ

काया अंदर सब किश वसै खंड मंडल पाताला, काया अंदर जग जीवन दाता वसै सबना करे प्रतपाला, काया का मनसदा सुहेली गुरमुख नाम समाला, काया अंदर आपे वसै अलख ना लखया जाई, मन मुख मुग्ध बूझै नाही बाहर पालन जाई, सतगुर सेवे सदा सुख पाए सतगुर अलख दिता लिखाई, काया अंदर रतन पदार्थ भगत परे भंडारा, इस काया अंदर नौखंड पृथ्वी हाट पटन बाजारा, इस काया अंदर नाम नौ निध पाई गुर कै शब्द विचारा, काया अंदर तोल तुलावै आपे तोलन हारा, एहो मन रतन जवाहर माणक तिसका मोल अफारा, मोल कित ही नाम पाइए नाही नाम पाइए गुर बिचारा, गुरमुख होवै सो काया खोजै होर सब परम पुलाई, जिसनो दे सोई जन पावै होर क्या को करे चतराई, काया अंदर पाओ पाओ वसै गुर प्रसादी पाई, काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा सब ओपत जित संसारा, सच्चा अपना खेल रचाया आवा गौण पसारा, पूरे सतगुरे आप दिखाया सच नाम निस्तारा, सा काया जो सतगुर सेवै सच्चा आप सवारी, विण नावै दर ढोई नाही ता जम करे खुवारी, नानक सच वडियाई पाए जिसनो हर कृपा धारी, राग सुही महला तीजा कर दसवां एक ओंकार, सतगुर प्रसाद दुनिया ना साला है जो मर वंज सी, लोका ना साला है जो मर खाक थी, वाहो मेरे साहेबा वाहो गुरमुख सदा सलाही है सच्चा वे प्रवाहो, रहाओ दुनिया केरी दोस्ती मनमुख दज मरन, जंपर बदे मारी है वेला ना लाहन, गुरमुख जन्म सकार था सच्चे शब्द लगन, आत्म राम प्रगासिया सहजे सुख रहन, गुर का शब्द विसारिया दूजे पायर चन, तिसना भुख न उतरै अंधन जलत फिरन, दुष्टा नाल दोस्ती नाल संतां वैर करन, आप डुबे कुटंब स्यों सगले कुल डोबन, निंदा पली किसै की नाही मनुख मुग्ध करन, मोह काले त्रिनिंदका नरके कोर पवन, ए मन जैसा

ओए अमृत भरे भरपूर है ओना तिल ना तुमाए, गुणकारी गुण संगर अवरा उपदेश सेवड़ भागी जे।

मैं तर सच्चे नाम की हर नाम रहन लिवलाए। गुर ज्ञान पदार्थ नाम है हर नामो दे दृढ़ाए। जिस प्राप्त सोल है गुरचरणी लागे आए। अकथ कहानी प्रेम की को प्रीत में आख आए। तिस देवा मन अपना निम निम लागा पाए। सज्जन मेरा एक तू करता पुरख सुजान। सतगुर मीत मिलाया मैं सदा सदा तेरा तान। सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए। ओह अबनासी पुरख है समय रह समाए। राम नाम तन संचया साबत पूंजी रास। नानक दरगह मन्या गुर पूरे साबास। राग सूही अष्टपदियां महला पंजवां। कर पहला एको अंकार सतगुर प्रसाद। उर्ज रहे हो बिखिया कै संगा। मने व्यापत अनक तिरंगा। मेरे मन अगम्य गोचर कत पाइए पूर्ण परमेश्वर रहाओ। मोह मगन में रहया व्यापे अतृष्णा कबहू नहीं त्रापे। बसै क्रोध शरीर चंडारा अज्ञान ना सूजै महा गुबारा। प्रमत व्यापत जरे केवारा जान ना पाइए प्रभ दरबारा। आसा अंदेसा बंद पराना महल ना पावै फिरत बिगाना। सगल ब्याद कै वस कर दीना फिरत प्यास ज्यों जल बिन मीना। कछु सियान पयुगत ना मोरी एस एक आस ठाकर प्रभ तोरी। करो बेनती संतन पासे मेल लहो नानक अरदासे। भयो कृपाल साध संग पाया नानक तृप्ते पूरा पाया। रहाओ दूजा राग सूही महला पंजवां। कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मिथन मोह अग्न शोक सागर कर कृपा उदर हर नागर।

नानक पैसा गरतरिया पूर्ण काज हमारे। गुण गोपाल गावो नित सखियो सगल मनोरथ पाए राम। सफल जन्म होआ मिल साधु एकंकार ते आए राम। जप एक प्रभु अनेक रव्या सर्व मंडल छाया। ब्रह्मो पसारा ब्रह्म पसरिया सब ब्रह्म दृष्टि आया। जल थल महियल पूर पूर्ण तिस बिना नहीं जाए। पेख दर्शन नानक बिकसै आप लय मिलाए। सूही महला पंजवा अब चल नगर गोबिंद गुरु का। नाम जपत सुख पाया राम। मन इच्छे से ही फल पाए करता आप वसाया राम। करता आप वसाया सर्व सुख पाया पुत भाई सिख बिगासे। गुण गावे पूर्ण परमेश्वर कार्य आया रासे। प्रभ आप स्वामी अपे आपे रखा आप पिता आप माया। कहो नानक सतगुर बलिहारी जिन एहो थान सुहाया। घर मंदर हट नाले सोहे जिस विच नाम निवासी राम। संत भगत हर नाम आराध है कटिया जम की फासी राम। काटी जम फासी प्रभु बनासी हर हर नाम ते आए। सगल समग्री पूर्ण होई मन इच्छे फल पाए। संत सज्जन सुख माने रलिया दुख दर्द भ्रम नासी। शब्द सवारे सतगुर पूरै नानक सदबल जासी। दात खसम की पूरी होई नित नित चढ़े सवाई राम। पार ब्रह्म खसमाना किया जिस दी वड्डी वड्याई राम। आद जुगाद भगतन का राखा सो प्रपया दयाला। जी जंत सब सुखी वसाए प्रभ आपे कर प्रतपाला। दय दिसपुर रहया जा स्वामी कीमत कहन ना जाई। कहो नानक सतगुर बलिहारी जिन अब चल नीम रखाई। ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर हर हर कथा नित सुनिए राम। अनहद चोज भगत पव पंजन।

राम अनहद चुन कारे तत विचारे संत गोष्ठ नित होवे हर नामा राधे मैल सब काटे किलवे सगले खोवे तह जन्म न मरना आवन जाना बहुन न पाइये जोनी है नानक गुर परमेसर पाया जिस प्रसाद इच पुनी है सूही महला पंजवा संता के कार्य आप खलोया हर कम करावने आया राम तरत सुहावी तार सुहावा विच अमृत जल छाया राम अमृत जल छाया पूर्ण साज कराया सगल मनोरथ पूरे जय जयकार भया जग अंतर लाथे सगल विसूरे पूर्ण पुरख अचुत अविनाशी जस वेद पुराणी गाया अपना बिरद रखिया परमेसर नानक नाम ते आया नवनिध सिद्ध रिद दीने करते तोट न आवे काई राम खात खर्चत बिलशत सुख पाया करते की दासवाई राम दासवाई ने खुट न जाई अंतर जामी पाया कोट बिघन सगले उठ नाठे दुख ना नेड़े आया सात सहज आनंद कनेरे बिनसी भूख सवाई नानक गुण गावे स्वामी के अचरज जिस वड्याई राम जिसका कार्य तिन्ही किया मानस क्या वेचारा राम भगत सोहन हर के गुण गावे सदा करे जयकारा राम गुण गाए गोविंद अंध उपजे साध संगत संग बनी जिन उद्यम किया ताल के रा तिसकी उपमा क्या गनी आठ साठ तीर्थ पुन किरिया महा निर्मल चारा पत पावन बिरद स्वामी नानक शब्द आधारा गुण निधान मेरा प्रभ करता उसत कौन करी जय राम संतां की बेनती स्वामी नाम महारस दी जय राम नाम दी जय दान की जय बिसर नाही एक खिनो गुण गोपाल उचर रसना सदा गाइय अंदेनो जिस प्रीत लागी नाम सेती मंतन अमृत पीजै बिनवंत नानक इच्छ पुनी पेख दर्शन जी जय राग सुही महला पंजवा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा हौ संभल थकी जी ओह कदे ना बोले कौरा कौड़ा बोल ना जाने पूर्ण भगवान अवगुण को ना चितारे पतत पावन हर बिरद सदाए एक तिल नहीं पन्ने कहले कटकट वासी सर्व निवासी नेरे ही ते नेरा नानक दास सदा शरणागत हर अमृत सज्जन मेरा हां बिसम भई जी हर दर्शन देखिया पारा मेरा सुंदर स्वामी जी हां चरण कमल पग शारा प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा तिस जेवड़े अवर ना कोई आद अंत मध प्रभ रव्या जल थल मई अलसोई चरण कमल जप सागर तरिया पवजल उतरे पारा नानक शरण पूर्ण परमेसर तेरा अंत ना पारा वारा हाउ निमख ना छोड़ा जी हर प्रीतम प्राण आधारो गुर सतगुर कहया जी साचा या गंभीचारो मिल साधु दीना ता नाम लीना जन्म मरण दुख नाठे सहज सुख आनंद कनेरे हमे बिंठी गाठे सब कै मद सबहू ते बाहर राग दुख ते न्यारो नानक दास गोविंद सरनाई हर प्रीतम मने सदारो मैं खोजत खोजत जी हर निहचर सो कर पाया सब अत्रुव डिठे जियो ता चरण कमल चितलाया प्रभ अविनाशी हों तिसकी दासी मरै न आवै जाए धर्म अर्थ काम सा पूर्ण मन चिंदी इच्छ पुजाए स्रोत सिमरत गुण गावै करते सिद्ध साधक मुन जंत आया नानक शरण।
ਪਾ ਨਿਧ ਸਵਾਮੀ ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਹਰ ਗਾਇਆ। ਇਕ ਓਵੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਰ ਸੂਹੀ ਕੀ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ।

जिस तू मिले सो तुद मिले सोई सचियारा। श्लोक महला तीजा। सूह भी है सूहा सब संसार है, जिन दुर्मत दूजा पाओ। खिन मैं झूठ सा बिनस जाए, जो टिके ना बिरख की शाओ। गुरमुख लालो लाल है जो रंग मजीठ सचड़ाओ। उल्टी सख्त सवै करे आई, मन वस्या हर अमृत नाओ। नानक बलिहारी गुरे अपने, जित मिलिया हर गुण गाओ। महला तीजा। सूहा रंग विकार है, कंत न पाया जाए। इस लैंदे बिलम ना हो वही, रंड बैठी दूजे पाए। मुंद एयाणी दुमणी सूहै वे सुलभाए, शब्द सच्चा रंग लाल कर पह पाए। सिंगार बनाए नानक सदा सुहागनी, जे चलन सतगुर पाए। पौड़ी आपे आप हो पाया ने, आप कीमत पाई। तिसदा यंत्रा जा पई, गुर शब्द बुझाई। माया मोह गुबार है दूजे परमाई, मन मुख ठौर ना पाई नी फिर आवै जाई। जो तिस पावै सो थीऐ, सब चलै रजाई। सलोक महला तीजा। सूहै वेस कामन को लखनी, जो प्रभ छोड़ पर पुरख धरे प्यार। ओस सील ना संजम सदा झूठ बोलै, मन मुख कर्म खुवार। जिस पूर्व होवै लिखिया, ते सतगुर मिलै पतार। सूहा वेस सब उतार धरे, गल पहरै खिमा सिंगार। पेयै सहुरै बहु सोभा पाए, तिस पूज करे सब संसार। ओहर लाई किसै दी ना रलै, जिस रावे सृजनहार। नानक गुरमुख सदा सुहागणी, जिस अविनाशी पुरख परतार। महला पहला। सूहा रंग सुपने निसी, बिरता गे गलहार। सच्चा रंग मजीठ का, गुरमुख ब्रह्म विचार। नानक प्रेम महारसी, सब बुरियाइयां शार। पौड़ी एहो जग आपो पायो न, कर चोज विडान। पंच तात विच पाईया न, मोह झूठ गुमान। आवै जाए पवाई है मनमुख अज्ञान। एक ना आ बुझायो न, गुरमुख हर ज्ञान। भगत खजाना बख्शे हो न, हर नाम निदान।

एको ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद। राग बिलावल महला।

अगमा गोचर लाख्या पारा चिंता करो हमारी, जल थल मैयल भरपुर लीना कड़कड़ जोत तुम्हारी। सिख मत

जी जंत सब सरण तुम्हारी, सर्व चिंत तुद पासे, जो तुद भावै सोई चंगा। एक नानक की अरदासे, बिलावल महला पहला। आपे शब्द आपे निशान, आपे सुरता आपे जान। आपे कर कर वेखै तान, तू दाता नाम प्रमाण। ऐसा नाम निरंजन देओ, हम जाचक तुम लाखा पेओ रहाओ। माया मोह तरकटी नार, पूंडी कामण कामण यार। राज रूप झूठा दिन चार, नाम मिले चानन अंधियार। चख छोड़ी सहसा नहीं कोए, बाप दिसै वे जात ना होए। एके कहो नाही पौ कोए, करता करे करा वैसोए। शब्द मोए मन मन ते मारिया, ठाक रहे मन साचै धारिया। अवरना सूजै गुर कौ वारिया, नानक नाम रते निस्तारिया। बिलावल महला पहला, गुरबचनी मन सही ध्याने। हर कै रंग रता मन माने, मनमुख परम भुले बौराने। हर बिन क्यों रही है गुर शब्द पछाने। बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई, हर बिन जियारा रह ना सकै। खिन सतगुर बूझ बुझाई रहाओ, मेरा प्रभ बिसरै हमरो दुखाली। सास गिरास जपो अपने हर पाली, सद बैरागन हर नाम निहाली। अब जाने गुरमुख हर नाली, अकथ कथा कहिए गुर पाए। प्रभ आगमा गोचर दे दिखाए, बिन गुर करनी क्या कार कमाए। हम मैं मेड़ चले गुर शब्द समाए, मनमुख विछड़े खोटी रास। गुरमुख नाम मिले साबास, हर कृपा तारी दसन दास। जन नानक हर नाम धन रास। बिलावल महला तीजा, कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद, त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया। त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया, त्रिग शरीर कुटुंब सहित सिओ। जित हुण खसम ना पाया, पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवै। अहला जन्म गवाया, दूजा पाव ना दे लिव लागण। जिन हर के चरण विसारे, जग जीवन दाता।

मुक्त बंद सब तुते होए ऐसा आख वखाणे गुरमुख होवै सो मुक्त कहिए मनमुख बंद विचारे सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी।

हर उदरियो परियो सरना प्रभ दीन दयाल भगत पवतारनो हम पापी राख पपना हर दासन दास दास हम करियो जन नानक दास दसन्ना बिलावल महला चौथा हम मूर्ख मुग्ध अज्ञान मती सरनागत पुरखिया जन्मा कर कृपा रख लेवो मेरे ठाकरो हम पाथरहीन अकर्मा मेरे मन भज राम नाम मैं रामा गुरमत हर रस पाई है होर त्यागो निफल कामा रहाओ हर जन सेवक से हर तारे हम निर्गुण राख उपमा तुझ बिन अवर ना कोई मेरे ठाकुर हर जपिया वड्डे करमा नामहीन त्रिग जीवते तिन वर दुख सहमा ओए फिर जोन पवाई है मंद भागी मूड़िया करमा हर जन नाम आधार है तुर पूर्व लिखे वड़करमा गुर सतगुर नाम दृढ़ाया जन नानक सफल जन्मा बिलावल महला चौथा हमरा चित लुभत मोहे बिखिया बहु दुर्बत मैल परा तुमरी सेवा करना सके प्रभ हम क्यों कर मुग्ध तारा मेरे मन जप नरहर नाम नरहरा जानी ऊपर कृपा प्रभ तारी मेरा सतगुर पार परा रहाओ हमरे पिता ठाकुर प्रभ स्वामी हर देहो मती जस करा तुमरा संग लगे से उधरे ज्यो संग काष्ट लोह तरा सागत नर होची मत मध्यम जिन हर हर सेव ना करा ते नर भागहीन दोचारी ओए जन्म ओए फिर मरा जिन कहो तुम हर मेलो स्वामी ते नाए संतोख गुरसरा दुर्मत मैल गई हर भजया जन नानक पार परा बिलावल महला चौथा आवो संत मिलो मेरे भाई मिल हर हर कथा करो हर हर नाम बोए थे कल जुग खेवट गुर सब तरो मेरे मन हर गुण हर उचरो मस्तक लिखथ रखे गुण गाए मिल संगत पार परो रहाओ काया नगर में राम रासी उत्तम क्यों पाई अब दे जन करो सतगुर सेव सफल हर दर्शन मिल अमृत हर रस पियो हर हर नाम अमृत हर मीठा हर संतो चाख दिखाओ गुरमत हर रस मीठा लागा तिन बिसरे सब बिखरसो राम नाम रस राम रसायण हर सेवो संत जनो चार पदार्थ चारे पाए गुरमत नानक हर भजो बिलावल महला चौथा खत्री ब्राह्मण सूद वैस को जापै हर मंत्र जपैनी गुर सतगुर पार ब्रह्म कर पूजो नित सेवो दिन सो सब रैनी हर जन देखो सतगुर नैनी जो इच्छो सोई फल पावो हर बोलो गुरमत बैनी रहाओ अन क्यों पाव चितवी बहु तेरे सा होवै जे बात हो वैनी अपना पला सब कोई बंश है सो करे जे मेरा चितना चितैनी मन की मत आगो हर जन एह बात कठैनी आन दिन हर हर नाम ते आवो गुर सतगुर की मत लैनी मत समत तेरे वस स्वामी हम जंत तू पुरख जनतैनी जन नानक प्रभ करते स्वामी ज्यो पावै तवै बुलैनी बिलावल महला चौथा अंध मूल त्यायो पुरखोत्म अंध दिन अंध आनंदे धर्म राय की कान चुकाई सब चूके जमके छंदे जप मानो हर हर नाम गोविंदे वडभागी गुर सतगुर पाया गुण गाए परमानंदे रहाओ साकत मूड़ माया के बद्धक विच माया फिरै फिरंदे तृष्णा जलत किरत के बांधे ज्यो तेली बल्द पवंदे गुरमुख सेव लगे से उधरे वडभागी सेव करंदे जिन हर जपया तिन फल पाया सब टूटे माया फंदे आपे ठाकुर आपे सेवको सब आपे आप गोविंदे जन नानक आपे।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद बोलो भैया राम नाम पतत पावनो हर संत भगतारनो हर भरपुरे रहा जल थले राम नाम नित गाइए हर दुख बिसारनो रहाओ हर किया है सफल जन्म हमारा हर जपया हर दुख बिसार नहारा गुर भेटिया है मुक्त दाता हर की हमारी सफल जाता मिल संगति गुण गावनो मन राम नाम करया सा पाओ दूजा बिनस बिनासा विच आसा होए निरासी सो जन मिलिया हर पासी कोई राम नाम गुण गावनो जन नानक तिस पग लावनो राग बिलावल महला पंजवां चौपदे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद नदरी आवे तिस्यो मोह क्यों मिलिया प्रभ नासी तोहे कर कृपा मोय मार्ग पावो सात संगत कै अंचल लावो क्यों तरिया बिख्या संसार सतगुर बोहित पावे पार रहाओ पवन चुलारे माया।

हम मैं पचे दीपक देख पतंगा, सगल सिंगार करे नहीं पावै, जा होए कृपाल ता गुरु मिलावै। हाँ फिरो उदासी मैं करतन दसाया, निर्मोल हीरा मिले ना उपाया। हर का मंदिर तिसमें लाल, गुर खोलिया पर्दा देख पही निहाल। जिन चाखिया तिस आया साध, जो गूंगा मन में बिस्माद। आनंद रूप सब नजरी आया, जन नानक हर गुण अक्ष माया। बिलावल महला पंजवा, सर्व कल्याण किए गुरुदेव, सेव के अपनी लायो सेव। बिघन ना लागे जप अलाख्या पेव, तरत पुनीत पई गुण गाए, दुरत गया हर नाम ते आए रहाओ। सबनी थाई रव्या आप, आद जुगाद जाकावड़ प्रताप। गुर प्रसाद ना होए संताप, गुर के चरण लगे मन मीठे। निर्विघ्न होए सब थाई बूठे, सब सुख पाए सदगुर तूठे। पार ब्रह्म प्रभै रखवाले, जिथे किथे दिसे नाले। नानक दास खसम प्रतपाले, बिलावल महला पंजवा। सुख निदान प्रीतम प्र मेरे, अगणत गुण ठाकर प्रभ तेरे। मोहे अनाथ तुमरी सरनाई, कर कृपा हर चरण ते आई। दया करो बसो मन आए, मोहे निर्गुण लीजे लड़ लाए रहाओ। प्रभ चित आवे ता कैसी भीड़, हर सेवक नाही जंपीड़। सर्व दुख हर सिमरत नसे, जा कै संग सदा प्रभ बसै। प्रभ का नाम मंतन आधार, बिसरत नाम होवत तनसार। प्रभ चित आए पूर्ण सब काज, हर बिसरत सब का मोहताज। चरण कमल संग लागी प्रीत, बिसर गई सब दुर्मत रीत। मन तन अंतर हर हर मंत, नानक भगतन कै कर सदा आनंद। राग बिलावल महला पंजवा, कर दूजा जानड़िए कै कर गावना। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे। मैं मन तेरी टेक, अवर स्याणपा बिरथिया प्यारे। राखण कहो तुम एक रहाओ, सतगुर पूरा जे मिले प्यारे। सो जन होत निहाला, गुर की सेवा सो करे प्यारे। जिसनो होए दयाला, सफल मूर्त गुरदेव स्वामी। सर्व कला पर पूरे, नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर। सदा सदा हजूरे, सुन सुन जीवा सोए तिना की। जिने अपना प्रभ जाता, हर नाम आराध्य नाम वखाण। हर नाम में ही मन राता, सेवक जन की सेवा मांगे। पूरे कर्म कमावा, नानक की बेनंती स्वामी। तेरे जन देखण पावा, वडभागी से काढ़िए प्यारे। संत संगत जिन्ना वासो, अमृत नाम आराधिए निर्मल। मने होवे परगासो, जन्म मरण दुख काटिए प्यारे। चूके जमकी काणे, तना प्राप्त दर्शन नानक। जो प्रभ अपने पाणे, ऊंच या पा

पशु प्रेत मुगत कवतारे पान पारो तारे नानक दास तेरी सरनाई सदा सदा बलिहार है। बिलावल महला पंजवा बिखै बन फीका त्यागरी सखिए नाम महारस पियो बिन रस चाखे बुट गई सगली सुखी ना होवत जियो। मान महात्मा शक्ति काई सादा दासी थियो नानक से दर सो बावंते जो प्रभ अपने कियो। हर चंदौरी चित प्रम सखिए मृग तृष्णा द्रुम छाया चंचल संगना चालती सखिए अंत तज जावत माया। रस भोगण अत रूप रस माते इन संग सुख नाम पाया धन धन हर सा जन सखिए नानक जिन्नी नाम ते आया। जाय बसो वट पागणी सखिए संता संग समाई है तह दुख ना भूख ना रोग व्यापै चरण कमल लिवलाई है। तह जन्म ना मरण ना आवन जाना निश्चर सरणी पाई है प्रेम बिछोना मोह व्यापै नानक हर एक त्याई है। दृष्ट तार मन बेदया प्यारे रतड़े सह सुभाए से सुहावी संग मिल प्रीतम अंध मंगल गुण गाए। सखी सहेली राम रंग राती मन तन इच पुजाए नानक अचरज अचरज स्यों मिलिया कहना कछु ना जाए। राग बिलावल महला पंजवा कर चौथा एको ओंकार सतगुर प्रसाद एक रूप सगलो पा सारा आपे बणजे आप ब्योहारा ऐसो ज्ञान बिरलोई पाए जत जत जाइए तत दृष्टाए रहाओ अनक रंग निर्गुण एक रंगा आपे जल पा आप ही तिरंगा आप ही मंदिर आपै सेवा आप ही पुजारी आप ही देवा आपै जोग आप ही जुगता नानक के प्रभ सद ही मुक्ता। बिलावल महला पंजवा आपो पावन आप सुधरना आप करावन दोष ना लेना आपन बचनो

आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही घट घट आप लिपना, आपे अवगत आप संगरचना, कहो नानक प्रभ के सब जचना। बिलावल महला पंजवा, पूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरवड भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे, बस रहे हृदय गुरचरण प्यारे। रहाओ काम क्रोध लोभ मोहे मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुख सुख करत जन्म फरमुआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया, अग्न सागर बूढ़ संसारा, नानक बहा पकड़ सतगुर निस्तारा। बिलावल महला पंजवा, तन मन धन अर्पो सब अपना, कमर समत जित हर हर जपना, कर आसा आयो प्रभ मंगन, तो पेखत सोभा मेरा अंगन। रहाओ अनक जुगत कर बहुत विचारो, साध संग इस मन उधारो, मत बुद्ध सुरत नाही चितराई, ता मिलिया जा ले मिलाई, नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया, कहो नानक सफल सो आया। बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत साथ ना माया, साध संग सब दुख मिटाया, रव रहया प्रभ सब मैं आपे, हर जप रसना दुख ना व्यापे। रहाओ तिखा भूख बहुत तप्त व्यापिया, शीतल पय हर हर जस जापिया, कोट जतन संतोख ना पाया, मंत्र बताना हर गुण गाया, देहो भगत प्रभ अंतर जामी, नानक की बेनंती स्वामी। बिलावल महला पंजवा, गुरपुरा वडपागी पाई है, मिल साधु हर नाम ते आई है, पार ब्रह्म प्रभ तेरी सरना, किलवे काटे पज गुर के चरना। रहाओ अवर कर्म सब लोकाचार, मिल साधु संग होए उधार, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, जपिए नाम जित पार उतारे, जन नानक प्रभ कृपा करिय, साधु तूर मिले निस्तरिय। बिलावल महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय मैं चीना, सगल मनोरथ पूर्ण आसीना, संत जना का मुख उज्जल कीना, कर कृपा अपना नाम दीना। रहाओ अंध कूपते कर गया।

कहो नानक प्रभ भए प्रसीना। बिलावल महला पंजवा, सगल मनोरथ पाई मीता, चरण कमल स्यों लाइया चीता। हाँ बलिहारी जो प्रभु ते आवत, जलन बुझै हर हर गुण गावत रहाओ। सफल जन्म होवत वटभागी, साह संग्राम लिव लागी। मत पत धन सुख सहज आनंदा, एक निमख ना विसराओ परमानंदा। हर दर्शन की मन प्यास कनेरी, पंत नानक शरण प्रभ तेरी। बिलावल महला पंजवा, मोहे निर्गुण सब गुणे बेहूना, दया तारे अपना कर लीना। मेरा मन तन हर गोपाल सुहाया, कर कृपा प्रभ घर में आया। रहाओ भगत वछल पै कट नहारे, संसार सागर अब उतरे पारे। पतत पावन प्रभ बिरद वेद लेखिया, पार ब्रह्म सो नैनो पेखिया। सासंग प्रगटे नारायण, नानक दास सब दुख पलायण। बिलावल महला पंजवा, कवन जाने प्रभ तुमरी सेवा। प्रभ अविनाशी लाख्या पेवा, गुण बेअंत प्रभ गैर गंभीरे। ऊंच महल स्वामी प्रभ मेरे, तू अपरंपर ठाकुर मेरे रहाओ। एक सबे नाही को दूजा, तुम ही जानो अपनी पूजा। आपो कछु न होवत पाई, जिस प्रभ देवै सो नाम पाई। कहो नानक जो जन प्रभ पाया, गुण निदान प्रभ तिन्ही पाया। बिलावल महला पंजवा, मात गरमै हा दे राखिया। हर छोड़ बिख्या फल चाखिया, भज गोबिंद सब छोड़ जंजाल। जब जम आए संगारे मूड़े, तब तन बिन सजाए बेहाल। रहाओ तन मन तन अपना कर थापिया, करण हार एक निमख ना जापिया। महा मोह अंध कू परिया, पार ब्रह्म माया पटल बिसरिया। वड्डे भाग प्रभ कीर्तन गाया, संत संग नानक प्रभ पाया। बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत बंधु भाई। नानक होवा पार ब्रह्म सहाई, सुख सहज आनंद घणे। गुरपूरा पूरी जाकी बाणी, अनक गुणा जाके जाहे ना गणे। रहाओ सगल सरंजाम करे प्रभ आपे, भय मनोरथ सो प्रभ जापे। अर्थ धर्म काम मोह का दाता, पूरी पई सिमर सिमर विधाता। सा संग नानक रंग माणिया, कर आया पूरे गुरियाणिया। बिलावल महला पंजवा, सरवण दान पूर्ण गुरदेव रहाओ। हर हर नाम जपत नर जीवे, मर खुआर सगत नर थीवे। राम नाम होवा रखवारा, चख मारो सगत बेचारा। निंदा कर कर पचै कनेरे, मृतक फास गलै सिर पैरे। कहो नानक जपै जन नाम, ताके निकट ना आवै जाम। राग बिलावल महला पंजवा, कर चौथा दुपदे एक ओंकार। सतगुर प्रसाद कवन संयोग, मिलो प्रभ अपने। पल पल निमख सदा हर जपने, चरण कमल प्रभ के नित त्यावो। कवन सुमत जित प्रीतम पावो, रहाओ ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे। हर नानक बिसर ना काहूं बेरे। बिलावल महला पंजवा, चरण कमल प्रभ हृदय त्याए। रोग गए सगले सुख पाए, गुर दुख काटिया दीनो दान। सफल जन्म जीवन परवान रहाओ। अकथ कथा अमृत प्रभानी, कहो नानक जब जीवे ज्ञानी। बिलावल महला पंजवा, सांत पाई गुर सतगुर पूरे। सुख उपजे बाजे अनहद तूरे, रहाओ। ताप पाप संताप बिनासे, हर सिमरत किलविक सब नासे। अनद करो मिल सुंदर नारी, गुरु नानक मेरी पै सवारी। बिलावल महला पंजवा, ममता मोह त्रोह मदमाता, बंधन बांध्यात बिकराल। दिन दिन शिजित बिकार करत आओद, फाही फाथा जम कै जाल।
ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਯਾਲਾ, ਮਹਾ ਬਿਖਮ ਸਾਗਰਤ ਭਾਰੀ, ਉਧਰੋ ਸਾਧੂ ਸੰਗਰ ਵਾਲਾ ਰਹਾਓ। ਪ੍ਰਭ ਸੁਖਦਾਤੇ ਸਮਰੱਥ ਸਵਾਮੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੁਮਰਾ ਮਾਲ, ਪ੍ਰਮ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਗਲਾ ਆਨੰਦ ਕੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਸੰਵਾਰਿਆ, ਸਾਜਨਾ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਬਿਖਸੇ ਸਭ ਪਰਵਾਰਿਆ, ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਸਵਾਰਿਆ, ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ, ਸੁਖ ਮੰਗਲ ਕਲਿਆਣ ਵਿਚਾਰਿਆ ਰਹਾਓ। ਵਨ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਹਰਿਆ ਹੋਏ, ਸਗਲੇ ਜੀ ਸਾਧਾਰਿਆ, ਮਨ ਇੱਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ, ਪੂਰਨ ਇੱਛ ਪੁਜਾਰਿਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਹੋਵਤ ਦਇਆਲ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਕਾਟੈ ਸੋ ਕਾਲ ਰਹਾਓ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਜੀਐ ਗੋਪਾਲ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੂਟੈ ਜਮਜਾਲ, ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਨਾਨਕ ਜਾਚੈ ਸਾਧਰਵਾਲ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿੰਚੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ, ਅੰਦਨ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਮ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੋ ਨੇਰੇ, ਰਹਾਓ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਭਾਗ, ਹਰ ਚਰਨੀ ਤਾਂ ਕਾ ਮਨ ਲਾਗ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਰੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਨੀਂਦ ਪਈ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਕਰ ਆਇਆ, ਰਹਾਓ ਰਜ ਰਜ ਭੋਜਨ ਖਾਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਧਮਾਇ ਤਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਪੂਰੇ ਸਰਨਾਈ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਦੀਨੇ ਅਸਥਿਰ ਘਰ ਬਾਰ, ਰਹਾਓ ਜੋ ਜੋ ਨਿੰਦ ਕਰੈ ਇਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀ, ਤਿਸ ਆਗਿਆ ਹੀ ਮਾਰੈ ਕਰਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਨਾਈ, ਜਾਂ ਕੋ ਸਬਦਿਆ ਖੰਡਿਆ ਪਾਰ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤਾਪ ਸੰਤਾ

गुण गावो नित राम के, ए अवखद जोग आए बसो कर देश में, एह भले संजोग नानक प्रभ सो प्रसन्न भय लह गए बेयोग। बिलावल महला पंजवा, काहू संग न चल ही माया जंजाल, ऊठ सिधारे छत्रपातो संतन कै ख्याल, रहाओ अहं बुद्ध कौ बिनसना एह तुरकी ढाल, बह जोनी जन्म मरै बिखिया बिकराल, सत बचन साधु कह नित जपै गोपाल, सिमर सिमर नानक तरे हर के रंग लाल। बिलावल महला पंजवा, सह समाद आनंद सुख पूरे गुरदीन, सदा सहाई संग प्रभ अमृत गुण चीन, रहाओ जय जय कार जगत्र मैं लोचै सब जिया, सो प्रसन्न पए सतगुर प्रभु कछ बिघ्न थिया, जा का अंग दयाल प्रभ ताके सब दास, सदा सदा वड़ियाइया नानक गुरपास। राग बिलावल महला पंजवा, घर पंजवा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मृत मंडल जग साजिया ज्यो बालू घर बार, बिनसत बार ना लाग गई ज्यो कागद बूंदार। सुन मेरी मनसा मनै माहे सत देख बिचार, से सतग गिरी जोगी तज गए कर बार, रहाओ जैसा सुपना रैन का तैसा संसार, दृष्ट मान सब बिनसी है क्या लगे गवार, कहां सो भाई मीत है देख नैन पसार, एक चाल सह सब अपनी वार, जिन पूरा सतगुर सेवया से असर हर द्वार, जन नानक हर का दास है राग पैज मुरार। बिलावल महला पंजवा, लोकन किया वड्याइया बैसंतर पागो, जो मिले प्यारा अपना ते बोल करा गो, जो प्रभ जियो दयाल होए तो भक्ति लागो, लपट रहो मन बासना गुर मिले त्यागो, रहाओ करो बेनती अत कनी यो जियो हमांगो, अर्थ आन सवारिया प्रे निम्क सुहागो, पंच संग गुर ते छुट्टे दोख हर रागो, हृदय प्रगास प्रगट भया निस्बा सिर जागो, सरण सुहागन आया जिस मस्तक भागो, कहो नानक तिन पाया तन मन सीत लागो। बिलावल महला पंजवा, लाल रंग तिसको लगा जिसके वड भागा, मैला कदे ना हो वही न लागे दागा, प्रभ पाया सुखदाइया मिलिया सुख पाए, सह समाना भीतरे छोड़िया न जाए, रहाओ जरा मरा न व्यापई फिर दुख ना पाया, पी अमृतिया गान्या गुर अमर कराया, सो जाने जिन चाखिया हर नाम मोला, कीमत कही ना जाइए क्या कह मुख बोला, सफल दर्श तेरा पार ब्रह्म गुण तेरी बाणी, पावो तूर तेरे दास की नानक कुर्बानी। बिलावल महला पंजवा, राखो अपनी सरन प्रभ मोहे कृपा तारे, सेवा कछु ना जानो नीच मूर्खारे, मान करो तुदी उपरे मेरे प्रीतम प्यारे, हम अपराधी सद पूलते तुम बख्शन हारे, रहाओ हम अवगन करें असंख नीत तुम निर्गुण दातारे, दासी संगत प्रभु त्याग ए कर्म हमारे, तुम देवो सबके दया तार हम अकृत कनारे, लाग परे तेरे दान स्यो नैचित खसमारे, तुई ते बाहर किश नहीं पव कट नहारे, कहो नानक सरण दयाल गुर लेहो मुगदे उधारे। बिलावल महला पंजवा, दोष ना काहू दीजिए प्रभ अपना त्याई है, जित सेवे सुख होए घना मन सोई गई है, कहिए काय प्यारे तुझ बिना तुम दयाल स्वामी सब

नीच खन में थाप है कीमत कहीं ना जाई है ठाकर परताप है। देखत लीला रंग रूप चलने दिन आया सुपने का सुपना पया संग चलिया कमाया। कारण कारण समरथ प्रभ तेरी सरनाई हर दिन सरैण नानक जप है साध साध बल जाई। बिलावल महला पंजवा जल ढोव एह सीस कर पग पख लावो बार।

देव सुहनी साध के बीजन टोलावाओ रहाओ। अमृत गुण संत बोलते सुन मने पीलावाओ। ओवा रस में सांत तृप्त होए बिखे जलन बुझावाओ। जब भगत करे संत मंडली तिन मिल हर गावाओ। करो नमस्कार भगत जान तूर मुख लावाओ। उठत बैठत जपो नाम एहो कर्म कमावाओ। नानक की प्रभ बेनती हर शरण समावाओ। बिलावल महला पंजवा एहो सागर सोई तरै। जो हर गुण गाए साध संगत कै संग वसै। वडभागी पाए सुन सुन जीवै दास तुम बाणी जन आखी। प्रगट पई सब लो मैं सेव की राखी रहाओ। अग्न सागर ते काढ़िया प्रभ जलन बुझाई। अमृत नाम जल संचया गुर पै सहाई। जन्म मरण दुख काटिया सुख का थान पाया। काटी सिलक प्रभ मोह की अपने प्रभ पाया। मत कोई जानो अवर कश सब प्रभ कै हाथ। सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ। बिलावल महला पंजवा बंधन काटे आ प्रभ होवा कृपाल। दीन दयाल प्रभ पार ब्रह्म ताकि नदर निहाल। गुरपुरे कृपा करी काटिया दुख रोग। मन तन शीतल सुखी पाया प्रभ त्यावन जोग रहाओ। औखद हर का नाम है जित रोग ना व्यापै। साध संग मन तन हितै फिर दुख ना जापै। हर हर जापिए अंतर लिवलाई। किलवख उतरै सुध होए साधु सरनाई। सुनत जपत हर नाम जस ताकि दूर बलाई। महामंत्र नानक कथै हर के गुण गाई। बिलावल महला पंजवा पहते उपजै भगत प्रभ यंत्र होए सांत। नाम जपत गोविंद का बिनसै परम प्रांत। गुरपुरा जिस पेटिया ता कै सुख प्रवेश। मन की मत त्यागी सुनिया उपदेश रहाओ। सिमरत सिमरत सिमरिया सो पुरख दातार। मन ते कवो न विसरै सो पुरख अपार। चरण कमल स्यो रंग लगा अचरज गुरुदेव। जा कहो कृपा करो प्रभ ता कहो लावो सेव। निध निधान अमृत पिया मन तन आनंद। नानक कबो ना विसरै प्रभ परमानंद। बिलावल महला पंजवा त्रिशन बुझी ममता गई। नाठे पै परमा थित पाई आनंद पया। गुर कीने धर्मा गुरपुरा आराध्या। बिनसी मेरी पीर तन मन तन मन सब शीतल पया। पाया सुख बीर रहाओ सोवत हर जप जागया। पेख्या बिस्माद पी अमृत तृप्ता सिया ता का अचरज स्वाद। आप मुक्त संगीतरे कोल कुटां ब्योदारे। सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारे। नीचा नाथया जान मैं निर्गुण गुणहीन। नानक कहो कृपा पई दास अपना कीन। बिलावल महला पंजवा हर भगता का आसरा अन नाही ठाओ। तान दीबाण परवार तन प्रभ तेरा नाओ। कर कृपा प्रभ अपनी अपने दास रख लिए। निंदक निंदा कर पचे जमकाल ग्रसिए रहाओ। संता एक त्यावना दूसर को नाहे। एक सिया गै बेनती रव्या सर्वथाए। कथा पुरातन इयो सुनी भगतन की बानी। सगल दुष्ट खंड खंड की ए जान लिए मानी। सत बचन नानक कहे प्रगट सब माहे। प्रभ के सेवक शरण प्रभ तिन को पौ नाहे। बिलावल महला पंजवा
बंधन काटै सो प्रभु जाकै कल हाथ, अवर कर्म नहीं छूटियै राखो हरनाथ। तौ शरणागत माधवे पूर्ण दयाल, छूट जाए संसार ते राखै गोपाल राव। आशा परम विकार मोह इनमें लोभाना, झूठ समग्री मन वसी पार ब्रह्म ना जाना। परम ज्योत पूर्ण पुरख सब जी तुम्हारे, ज्यों तू राखै त्यों रहा प्रभ अगम अपारे। करण कारण समर्थ प्रभ देह अपना नाओ, नानक तरिए साध संग हर हर गुण गाओ। बिलावल महला पंजवां, कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत, महामोहनी मोहया नरक की रीत। मन खुट हर तेरा नहीं विश्वास, तू महा उदमादा खरका पैखर तव छुटै जो ऊपर लादा रहाओ। जप तप संजम तुम खंडे, जम के दुख डांड सिवरै नाही जोन दुख निर्लजे पांड। हर संग सहाई महामीत तेस्यों तेरा भेद, बीदा पंच बटवारई उपजो महाखेद। नानक तिन संतन शरणागति, जिन मन वस कीना तन तन सर्बसे अपना, प्रभ जन कौ दीना। बिलावल महला पंजवां, उदम करत आनंद भया सिमरत सुखसार, जप जप नाम गोबिंद का पूर्ण विचार। चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा, पार ब्रह्म आराध ते मुख अमृत पीवा। रहाओ जी जंत सब सुख बसे, सब कै मन लोच पर उपकार नित चितवते नाही कछ पोच। तन सो थान बसंत तन जह जपिए नाम, कथा कीर्तन हर अत घना सुख सहज विश्राम। मन ते कदे न विसरै अनाथ को नाथ, नानक प्रभ शरणागति जाकै सब किश हाथ। बिलावल महला पंजवां, जिन तू बंद कर छोड़िया फुन सुख मैं पाया, सदा सिमर चरणार बिंद शीतल होताया। जीवत या अथवा मोया किश काम ना आवै, जिन एहो रचन रचाया को ते स्यो रंग लावै रहाओ। अरे प्राणी उसन सीत करता करै, काम ते काढ़ै कीरी ते अस्ति करै, टूटा ले गंढै। अंडज जेरज सेतज उत्पुजा, प्रभ की यह किरत किरत कमावन सर्व फल रविय हर निरत। हम ते कछु ना होवना शरण प्रभ साध, मोह मगन कूप अंध ते नानक गुर काड। बिलावल महला पंजवां, खोजित खोजित मैं फेरा खोजो बनथान, अशाल्या शे दा भेद प्रभ ऐसे भगवान। कब देखो प्रभ अपना आत्म कै रंग, जागन ते सपना पला बसिए प्रभ संग रहाओ। वर्ण आश्रम शास्त्र सुनाओ दर्शन की प्यास, रूप ना रेखना पंच तत् ठाकर अबनास। ओहो स्वरूप संतन कह विरले जोगीसर, कर कृपा जाको मिले तन तन ते ईसर। सो अंतर सो बाहरे बिरसे तह परमा, नानक तिस प्रपेटिया जाके पूर्ण कर्मा। बिलावल महला पंजवां, जी जंत सो प्रसन्न पए देख प्रभ प्रताप, कर जो तारिया सतगुरु कर हर आप। खात खर्चत निबहत रहै गुरशब्द अखूट, पूर्ण पई समग्री कबहु नहीं टूट रहाओ। साध संग आराधना हर निद्या पार, धर्म अर्थ हर काम मोख देते नहीं बार। भगत आराध्या एक रंग गोबिंद गोपाल, राम नाम तन संचिया जाका नहीं सुमार। शरण परे प्रभ तेरिया प्रभ की वडियाई, नानक अंत ना पाई है बेअंत गुसाई। बिलावल महला पंजवां,
सिमर सिमर पूर्ण प्रभु कार्य पै रास, करतारपुर करता वसै संतन के पास रहाओ। बिघन न को लागता गुपै अरदास, रखवाला गोबिंद राय भगतन की रास। तोट न आवे कदे मूल पूर्ण भंडार, चरण कमल मंतन बसे प्रभाग में अपार। बस्त कमावत सब सुखी किश न दिसै, संत प्रसाद पेटे प्रभु पूर्ण जगदीसै। जय जयकार सबै करै सच थान सुहाया, जप नानक नाम निधान सुख पूरा गुर पाया। बिलावल महला पंजवा, हर हर हर यारा दिया होइए आरोग। रामचंद की लष्ट का जिन मारिया रोग, रहाओ गुरपुरा हर जापिया नित कीचे भोग। साध संगत कह वारण मिलया संयोग, जिस सिमरत सुख पाईए बिन सह बेहोग। नानक प्रभ शरणागति करण कारण योग। राग बिलावल महला पंजवा, दो पदे कर पंजवा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद आवरियो पाप सब त्यागया, दारू नाम लया ताप पाप सब मिटे रोग। शीतल मन भया गुरपुरा आराध्या, सगला दुख गया राखन हारे राखिया अपनी करमया। रहाओ बहा पकड़ प्रभ काढ़िया, की ना अपनया सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निरपया। बिलावल महला पंजवा, कर धर मस्तक थापिया नाम दीनो दान। सफल सेवा पार ब्रह्म की ताकी नहीं हान, आपे ही प्रभ राखता भगतन की आन। जो जो चित वह साध जान सो लेता मान। रहाओ शरण परे चरणार बिंद, जन प्रभ के प्राण सह सुभाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बिलावल महला पंजवा, चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप। प्रभ शरणांगत जन परे ताका सत प्रताप, राखन हारिया पार प्रभ ताकी निर्मल सेव। राम राज रामदास पुर कीने गुरुदेव, रहाओ सदा सदा हर त्याई किश बिघन ना लागे। नानक नाम सलाही है पै दुश्मन भागे। बिलावल महला पंजवा, मन तन प्रभ आराधिय मिल साध समागै। उचरद गुण गोपाल जस दूर ते जम भागै। राम नाम जो जन जपै आंदन सज जागै, तंत मंत न जो है तित ताख न लागै। रहाओ काम क्रोध मद मान मोह बिन से अनरागै। आनंद मगन रस राम रंग नानक शरणागै। बिलावल महला पंजवा, जी जूत वस प्रभु कै जो कह सो करना। पय प्रसन्न गोपाल राय पौ किश नहीं करना।

मीत हमारे सजना राखे गोविंद, निंदक मृतक होए गए तुम हो निचिंद रहाओ। सगल मनोरथ प्रभ किए पेटे गुरुदेव, जय जयकार जगत में सफल जा की सेव। ऊच अपार गणत हर सब जी जिस हाथ, नानक प्रभ शरणागति जत कत मेरे साथ। बिलावल महला पंजवां।

गावत प्रभु नाम सहज सुख आनंद रस पूर्ण सब काम रहाओ। जलन बुझी शीतल पय राखे प्रभु आप, नानक प्रभु शरणागति जा कावड़ परताप। बिलावल महला पंजवां तरत सुहावी सफल थान पूर्ण पय काम। पौनाठा प्रभ मिट गया रव्या नित राम। सात जना कै संग बस्त सुख सहज विश्राम। साई कड़ी सुलखणी सिमरत हर नाम रहाओ। प्रगट भय संसार मैं फिरते पहनाम। नानक ते शरणागति कड़कड़ सब जान। बिलावल महला पंजवां रोग मिटाया आप प्रभ उपजा सुख सात। वट प्रताप अचरज रूप हर की नीदात। गुर गोविंद कृपा करी राख्या मेरा पाई। हम तिसकी शरणागति जो सदा सहाई रहाओ। बिरथी कदे न हो वही जन की अरदास। नानक जोर गोविंद का पूर्ण गुणतास। बिलावल महला पंजवां मर मर जन्मे जन बिसरिया। जीवन का दाता पार ब्रह्म जन सेवया अंदन रंगराता। सांत सहज आनंद घना पूर्ण पई आस। सुख पाया हर साध संग सिमरत गुणतास रहाओ। सुन स्वामी अरदास जन तुम अंतर जामी। थान थनंतर रव रहे नानक के स्वामी। बिलावल महला पंजवां ताती वाओ न लगई। पार ब्रह्म शरणाई चौगिर्द हमारे रामकार। दुख लगे न पाई सतगुर पूरा भेटिया। जिन बणत बनाई राम नाम औखद दिया। एका लिवलाई रहाओ। राख लिए तिन रखन हार सब व्याध मिटाई। कहो नानक कृपा भई प्रभय सहाई। बिलावल महला पंजवां अपने बाल के आप रखिया नो पार ब्रह्म गुरुदेव। सुख सात सहज आनंद पय पूर्ण पई सेव रहाओ। भगत जना की बेनती सुनी प्रभ आप। रोग मिटाए जी वालियां नो जा कावड़ प्रताप। दोखा मारे बख्शिया नो अपनी कल तारी। मन बाइत फल दित्या नो नानक बलिहारी। राग बिलावल महला पंजवां चौप दे दुप दे कर शेवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे मोहन श्रवण यह ना सुनाए। साकत गीत नाद तुन गावत बोलत बोलिया जाए रहाओ। सेवत सेव सेव साध सेवाओ सदा करो करताए। अपैदान पावो पुरख दाते मिल संगत हर गुण गाए। रसना अगह अगह गुण राती नैन दर्श रंग लाए। हो कृपाल दीन दुख पंजन मोहे चरण हृदय वसाए। सब हूं तले तले सब ऊपर एह दृष्ट दृष्टाए। अभिमान खोए खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए। अतुल अतुल अतुल नह तुलिय भगत वच्छल कृपाए। जो जो शरण पर्यो गुर नानक अपह दान सुख पाए। बिलावल महला पंजवां प्रभ जी तू मेरे प्राण आधार है। नमस्कार डंडौत बंदना अनक बार जाऊं बार है रहाओ। उठत बैठत सोवत जागत एहो मन तुझे चितार है। सुख दुख इस मन की बिरथा तुझ ही आगे सार है। तू मेरी ओट बाल बुद्ध तन तुम ही तुम है मेरा परिवार है। जो तुम करहो सोई पल हमरे।

प्रताप। सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल रख मन माही, ताकि शरण पर्यो नानक दास, जाते उपर को नाही। बिलावल महला पंजवां, सदा सदा जपिए प्रभ नाम, जरा मरा कहीं दुख न व्यापै, आगै दरगै पूर्ण काम। रहाओ आप त्याग परिये नित सरणी, गुर ते पाइए हो निदान, जन मरण की कटिए फांसी, साची दरगै का निशान। जो तुम करहो

आए तन तन कलातो सब देख अब महन्ना बिन नावै किछ संग ना जाना रहाओ कीचै रस भोग खुशियां मन केरी तन लोका तन पसमै टेरी खाकू खाक रलै सब फैल बिन शब्द नहीं उतरै मैल गीत राग कंताल से कूरे त्रिगुण उपजे बिन से दूरे दूजी दुर्मत दर्द ना जाए छूटै गुरमुख दारू गुण गाए तोती उजल तिलक गल वाला अंतर क्रोध पड़े नाटशाला नाम विसार माया मद पिया बिन गुर भगत नाही सुखथिया सूकर स्वान गर्दप मंजारा पशु मलेश नीचंडाला गुर ते मोह फेरे तन जोन पवाईऐ बंधन बांध्याई जाइऐ गुर सेवा ते लह पदार्थ हृदय नाम सदा कृतार्थ साची दरगह पूछना होए माने हुक्म सीजै दरस होए सतगुर मिलै तां तिसको जाणै रहि रजाई हुक्म पछाणै हुक्म पछाण सच्चै दरवास काल बिकाल शब्द पै नास रह अतीत जाणै सब तिसका तन मन अर्पै है ओ जिसका ना ओ आवै ना ओ जाए नानक साचे साज समाए बिलावल महला तीजा अष्टपदी कर दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद जग कौआ मुख चुंच ज्ञान अंतर लोभ झूठे मान बिन नामै पाज रह निदान सतगुर सेव नाम वसै मन चीत गुर भेटे हर नाम चितावै बिन नामै होर झूठ प्रीत रहाओ गुर कहे आसा कार कमावो शब्द चीन सहज कर आवो साचै नाए वडाई पावो आप न बूझै लोक बुझावै मन का अंधा अंध कमावै दर घर महल ठौर कैसे पावै हर जियो सेवियै अंतर जामी घट घट अंतर जिसकी जोत समानी तिस नाल क्या चलै पहनामी साचा नाम साचा शब्द जानै आपै आप मिलै चुकै अभिमानै गुरमुख नाम सदा सदा वखानै सतगुर सेवै दूजी दुरमत जाई औगुण काट पापा मत खाई कंचन काया ज्योति जो समाई सतगुर मिलै वड्डी वड्याई दो काटे हृदय नाम वसाई नाम रते सदा सुख पाई गुरमत मान्या करनी सार गुरमत मान्या मोख द्वार नानक गुरमत मान्या परवार है साधार बिलावल महला चौथा अष्टपदियां घर ग्यारवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद आपै आप खाए हो मेटै आन दिन हर रस गीत गवैया गुरमुख परचै कंचन काया निरपो ज्योति ज्योत मिलैया मैं हर हर नाम आधार रमैया खिन पल रह न सको बिन नावै गुरमुख हर हर पाठ पढ़ैया रहाओ एक गिरो दस द्वार हैं जाके अहन सो तस्कर पंच चोर लगैया धर्म अर्थ सब हिर ले जावै मनमुख अंदले खबर ना पैया कंचन कोट बहुमानक भरिया जागे ज्ञान तत् लिव लैया तस्कर हेरू आए लुकाने गुर कै शब्द पकड़ बंद पैया हर हर नाम पोत बोए था खेवट शब्द गुरपार लंगैया जम जागाती नेण ना आवै ना को तस्कर चोर लगैया हर गुण गावै सदा दिन राती मैं हर जस कहते अंत न लहिया गुरमुख मनुआ इकत घर आवै मिलो गोपाल निशान बजैया नैनी देख दर्श मंत्र तै श्रवण बाणी गुर शब्द सुनैया सुन सुन आत्म देव है पीने रस रस राम गोपाल रवैया त्रै गुण माया मोहे वे आपे तुरिया गुण है गुरमुख लैया एक दृष्ट सब सम कर जान है नदरी आवै सब ब्रह्म पसरैया राम नाम है जोत सबाई
ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਅਲਖ ਲਖਈਆ, ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਏ ਹੈ, ਭਗਤ ਪਾਏ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਈਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੀਤਲ ਜਲ ਧਿਆਵੋ, ਹਰ ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਸੁਗੰਧ ਗੰਦਈਆ। ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਹਿਰਡ ਪਲਾਸ ਸੰਗ ਹਰ ਬੁਹੀਆ। ਜਪ ਜਗਨਨਾਥ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਈਆ, ਸਰਨ ਪਰੇ ਸੇ ਜਨ ਉਬਰੇ, ਜਿਉ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਉਧਾਰ ਸਮਈਆ। ਰਹਾਓ ਪਾਰ ਅਠਾਰੈ ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਊਤਮ, ਚੰਦਨ ਨਿਕਟ ਸਭ ਚੰਦਨ ਹੋਈਆ। ਸਾਕਤ ਕੂੜੇ ਊਬ ਸੁੱਕ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਅਵਮਾਨ ਵਿਛੜ ਦੂਰ ਗਈਆ। ਹਰ ਗਤਮਿਤ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਜਾਣੈ, ਸਭਿਦ ਹਰ ਹਰ ਆਪ ਬਨਈਆ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਕੰਚਨ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮਿਟੈ ਨਾ ਮਿਟਈਆ। ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ, ਸਾਗਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਖੁਲਈਆ। ਗੁਰਚਰਨੀ ਇੱਕ ਸਰਦਾ ਉਪਜੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਿਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਪਹੀਆ। ਪਰਮ ਬੈਰਾਗ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹਰ ਧਿਆਏ, ਮੈਂ ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਿਤੇ ਪਾਵਨੀ ਕਹੀਆ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਖਿਨ ਖਿਨ ਪਲ ਕਹੀਏ, ਹਰ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਵੈ ਪਰੈ ਪਰਈਆ। ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰੈ, ਧਰਮ ਕਰੋ ਖਟ ਕਰਮ ਦਰੜਈਆ। ਮਨਮੁਖ ਪਾਖੰਡ ਭਰਮ ਵਿਗੂਤੇ, ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਨਾਵ ਪਾਰ ਬੁਡਈਆ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮੇ ਗਤ ਪਾਵੋ, ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤਰ ਨਾਮ ਦਰੜਈਆ। ਹਉਮੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚੈ ਪਰਮ ਪਦ ਪਈਆ। ਇਹੋ ਜਗ ਵਰਨ ਰੂਪ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਜਿਤਲਾ ਵੈਸੇ ਕਰਮ ਕਮਈਆ। ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਜਾਏ ਵਾਜੈ, ਜਿਤ ਭਾਵੈ ਤਿਤ ਰਾਹੇ ਚਲਈਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਅਗਮਿਆ ਗੋਚਰ ਧਿਆਇਆ, ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਪੁਰਖਈਆ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਵਸਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਰ ਨਾਮ ਸਮਈਆ। ਜਨ ਕੀ ਟੇਕ ਹਰ ਨਾਮ ਟਕਈਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਤਰ ਲਾਗਾ ਜਾਵਾ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਦਰ ਲਹੀਆ। ਰਹਾਉ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਕਰਮ ਕੀ ਧਰਤੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੱਥ ਮੱਥ ਤਤ ਕਢਈਆ। ਲਾਲ ਜੇ ਵੇਹਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਭਾਂਡੈ ਭਾਉ ਪਵੈ ਤਿਤਈਆ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦਾਸ ਹੋਏ ਰਹੀਐ, ਜੋ ਜਨ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਿਜ ਪਈਆ। ਮਨ ਬੁੱਧ ਅਰਪ ਧਰੋ ਗੁਰੇ ਆਗੈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮੈਂ ਕਥ ਕਥਈਆ। ਮਨਮੁਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਵਿਆਪੇ, ਇਹੋ ਮਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲਤ ਦਿਖਈਆ। ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਪਾਇਆ, ਅਗਨ ਬੁਝੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਈਆ। ਇਹੋ ਮਨ ਨਾਚੈ ਸਤਿਗੁਰੇ ਆਗੈ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਤੁਨ ਤੂਰ ਵਜਈਆ। ਹਰ ਹਰ ਉਸਤ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਰਖ ਰਖ ਚਰਨ ਹਰ ਤਾਲ ਪੂਰਈਆ। ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ ਰਤਾ ਮਨ ਗਾਵੈ, ਰਸ ਰਸਾਲ ਰਸ ਸ਼ਬਦ ਰਵਈਆ। ਨਿਜ ਕਰ ਧਾਰ ਚੋ ਐਤ ਨਿਰਮਲ, ਜਿਨ ਪੀਆ ਤਿਨਹੀ ਸੁਖ ਲਈਆ। ਮਨ ਅਠ ਕਰਮ ਕਰੈ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਜਿਉ ਬਾਲਕ ਬਾਲੂ ਕਰ ਉਸਰਈਆ। ਆਵੈ ਲਹਿਰ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਕੀ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਟੈ ਪਈਆ। ਹਰ ਸਰ ਸਾਗਰ ਹਰ ਹੈ ਆਪੇ, ਇਹੋ ਜਗ ਹੈ ਸਭ ਖੇਲ ਖਿਲਈਆ। ਜਿਉ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜਲ ਜਲੈ ਸਮਾਵੈ, ਨਾਨਕੇ ਆਪੇ ਆਪ ਰਮਈਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚੈ ਮਨ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਤਨ ਪਸਮ ਦਰੜਈਆ। ਅਮਰ ਪਿੰਡ ਭਏ ਸਾਧੂ ਸੰਗ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋ ਮਿਟ ਗਈਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਧਸੂਦਨ ਮਾਧੋ। ਮੈਂ ਖਿਨ ਖਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਪਖਈਆ। ਰਹਾਓ ਤਜੈ ਗ੍ਰਸਤ ਭਇਆ ਬਨਵਾਸੀ, ਇੱਕ ਖਿਨ ਮਨੁਆ ਟਿਕੈ ਨਾ ਟਕਈਆ। ਧਾਵਤ ਤਾਏ ਤਦੇ ਕਰ ਆਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਸਾਧੂ ਸਰਨ ਪਵਈਆ। ਤੀਆਂ ਪੂਤ ਛੋੜ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਆਸਾ ਆਸਮਨ ਬਹੁਤ ਕਰਈਆ। ਆਸਾ ਆਸ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਾਸ ਸੁਖ ਲਈਆ। ਉਪਜੀ ਤਰਕ ਦਿਗੰਬਰ ਹੋਵਾ, ਮਨ ਦੈ ਦਿਸ ਚਲ ਚਲ ਗਮਨ ਕਰਈਆ।
पर भवन करै बुझै नहीं तृष्णा मिल संग साध दया कर लहिया आसन सिद्ध सिखै बहु तेरे मन मांगै रिद सिद्ध चेटक चेटकैया तृप्त संतोख मन शांत न आवै मिल साधु तृप्त हर नाम सिद्ध पैया अंडज जेरज सेतज उत्पुज सब वर्ण रूप जी जंतो पैया साधु शरण भरै सो उबरै खत्री ब्राह्मण सूद वैसो चंडाल चंडैया नामा जय देव कंबीर त्रिलोचन औ जात रविदास चमयार चमैया जो जो मिले साधु जन संगत धन धन्ना जट सहन मिलया हरदैया संत जना की हर पैज रखाई भगत वछल अंगीकार करैया नानक शरण परे जग जीवन हर हर कृपा तार रखैया बिलावल महला चौथा अंतर प्यास उठी प्रभ केरी सुन गुर बचन मन तीर लगैया मन की बिरथा मन ही जाने अवर के जाने को पीर परैया राम गुर मोहन मोहे मन लैया हों आकल बिकल पई गुर देखे हों लोट पोट होए पैया रहाओ हों निरखत फिराओ सब दे दिसंतर मैं प्रभ देखन को बहुत मन चैया मन तन काट दे गुरे आगे जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाई कोई आन संदेशा दे प्रभ केरा हृदय अंतर मन तन मीठ लगैया मस्त काट दो चरणा तल जो हर प्रभ मेले मेल मिलैया चल चल सखी हम प्रभ प्रबोधै गुण कामण कर हर प्रभ लैया भगत वछल उवा को नाम कहियत है शरण प्रभु तिस पाछै पैया खिमा सिंगार करे प्रभ खुशियां मन दीपक गुर ज्ञान बलैया रस रस भोग करे प्रभ मेरा हम तिस आगे जियो कट कट पैया हर हर हार कंठ है बनया मन मोती चूर बड़ गहन गहनैया हर हर सरदा सेज विशाई प्रभ छोड़ ना सके बहुत मन पैया कह प्रभ अवर अवर किश की जय सब बाद सिंगार फोगट फोगटैया कियो सिंगार मिलन कह ताई प्रभ लियो सुहागन थूक मुख पैया हम चेरी तू अगम गुसाई क्या हम करै तेरे वस पैया दयाधीन करो रख ले वो नानक हर गुर शरण समैया बिलावल महला चौथा मैं मंतन प्रेम अगम ठाकर का खिन खिन सरदा मन बहुत उठैया गुर देखे सरदा मन पूरी जो चातरक प्रयो प्रयो बूंद मुख पैया मिल मिल सखी हर कथा सुनैया सतगुर दया करे प्रभ मेले मैं तिस आगे सिर कट कट पैया रहाओ रोम रोम मंतन एक बेदन मैं प्रभ देखे बिन नींद ना पैया वैदिक नाटक देख भुलाने मैं हृदय मंतन प्रेम पीर लगैया हों खिन पल रह ना सको बिन प्रीतम ज्यो बिन अमले अमली मर गैया जिन को प्यास होए प्रभ केरी तिने अवर ना पावै बिन हर को दुइया कोई आन आन मेरा प्रभु मिलावै हों तिस विटो बल बल घूम गैया अनेक जन्म के विछड़े जन मेले जा सत सत सतगुर शरण पवैया सेज एक एको प्रभ ठाकर महल ना पावै मनमुख परमैया गुर गुर कर तो शरण जे आवै प्रभ आए मिले।

पिता ताहे क्या नाम सदैया, पूर्व जन्म भगत कर आए। गुर हर हर हर हर भगत जमैया, भगत भगत करते हर पाया। जा हर हर हर हर नाम समैया, प्रभ आन आन मेहंदी पीसाई। आपे कोल कोल अंग लैया, जिन को ठागर कृपा तारी। बहां पकड़ नानक कढ लैया। राग बिलावल महला पंजवा, अष्टपदी घर बारवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। उपमा जात ना कही मेरे प्रभ की, उपमा जात ना कही तज आन शरण गही रहाओ। प्रभ चरण कमल आधार, हौ जाऊं सद बलिहार। मन प्रीत लागी ताहे, तज आन कत ना जाहे। हर नाम रसना कहन, मल पाप कल मल दहन। चढ़ नाव संत उधार, पैतरे सागर पार। मन डोर प्रेम प्रीत, ए संत निर्मल रीत। तज गए पाप बेकार, हर मिले प्रभ निरंकार। प्रभ पेखी है बिस्माद, चख आनंद पूर्ण साध। नह डोलिए इतियूत, प्रभ बसे हर हर चीत। ते नाहे नरक निवास, नित सिमर प्रभ गुणतास। ते जमना पेखे नैन, सुन मोहे अनहत बैन। हर शरण सूर गोपाल, प्रभ।

एक में एक अंकार निराला, हमारा जोनी जात ना जाला, आगमा गोचर रूप ना रेखिया, खोइत खोइत कटकट देखिया, जो देख देखावे तिसको बल जाई, गुर प्रसाद परम पद पाई, क्या जब जापो बिन जगदीश है, गुर के शब्द महल कर दीसै रहाओ। दूजे पाए लगे पछताने, जमदर बांधे आवन जाने, क्या ले आवे क्या ले जाहे, सिर जमकाल से चोटा खाहे, बिन गुर शब्द ना छूट सकोए, पाखंड कीने मुक्त ना होए, आपे सच किया कर जोड़, अंडज फोड़ जोड़ विछोड़, धरत आकाश किए बैसन को थाओ, रात दिनंत किए पौ पहाओ, जिन किए कर वेखण हारा, अवरना दूजा सिरजण हारा, तृतीया ब्रह्मा विष्ण महेशा, देवी देवो पाए वेसा, ज्योति जाति गणत ना आवै, जिन साजी सो कीमत पावै, कीमत पाए रहया भरपूर, किस नेड़े किस आखां दूर, चौथे उपाए चारे बेदा, खानी चारे बाणी भेदा, अष्ट दशा खड़की ने उपाए, सो बुझे जस्या बुझाए, तीन समावै चौथे वासा, प्रणवत नानक हम ताके दासा, पंचमी पंच भूत बेताला, आपा गोचर पुरख निराला, एक ब्रह्म पूखे मोह प्यासे, एक रस चाख शब्द तृप्तासे, एक रंगराते एक मरतूर, एक दर कर साचे देख दूर, झूठे को नाही पत नाओ, कबो न सूचा काला काओ, पिंजर पंखी बंदिया कोए, शेरी परमे मुक्त ना होए, तव छूटे जा खसम छड़ाए, गुरमत मेले भगत रड़ाए, खष्टी खट दर्शन प्रभ साजे, अनहद शब्द निराला वाजे, जे प्रभ पावै ता महल बुलावै, शब्दे भेदे तौ पद पावै, कर कर वेश खपै जल जावै, साचे साचे साज समावै, सप्तमी सत संतोख शरीर, सात समुंद भरे निर्मल नीर, मज्जन सील सच हृदय विचार, गुर कै शब्द पावै सब पार, मन साचा मुख साचो पाए, सच निशाने ठाक ना पाए, अष्टमी अष्ट सिद्ध बुद्ध साधै, सच नेह केवल कर्म आराधै, पौन पानी अग्नि बिसराओ, तही निरंजन साचो नाओ, तिसमें मनुआ रहया लिवलाए, प्रणवत नानक काल ना खाए, नाओ नौमी नवे नाथ नव खंडा, घट घट नाथ महा बलवंडा, आई पूता एहो जग सारा, प्रभ आदेश याद रखवारा, आज जुगादी है पी होग, ओ परंपर करना जोग, दसवीं नामदान इशनान, अंदन मज्जन सच्चा गुण ज्ञान, सच मैल न लागै भ्रम पौ पागै, बिलम न टूट सका चै तागै, ज्यों तागा जग एवै जानो, अस्त्र चा अस्त्र जी साज रंग माणो,

जागत जाग रहे लिवलाए, गुर परचय तस्खाल ना खाए। अतीत भय मारे बैराई, प्रणवत नानक तै लिवलाई। द्वादशी दया दान कर जाने, बाहर जा तो भीतर आने। बरती बरत रह नेकाम, अजपा जाप जपै मुख नाम। तीन पवन में एको जाने, सब सुत संयम साच पछाण। तेर सतरवर समुद किनार, अमृत मूल शिखर लिवतार। डर डर मरे ना बूढ़े कोए, निडर बूंड मरे पत खोए। डर मैं घर घर मैं डर जाने, तख्त निवास सच मन पाने। चौदस चौथे थावे लै पावे, राजस तामस सतकाल समावे। ससियर कै कर सूर समावे, जो जूत की कीमत पावे। चौदस पवन पताल समाए, खंड ब्रह्मंड रहा लिवलाए। अमावस्या चंद गुप्त गहनार, बुझो ज्ञानी शब्द विचार। ससियर गगन जोत तिहो लोई, कर कर वेखै करता सोई। गुरते दिसै सो तिसही माहे, मनमुख पूले आवै जाए। घर दर थाप थिरथान सुहावै, आप पछाणै जां सतगुर पावै। जह आसा तह बिनस बिनासा, फूटे खप्पर दुबदा मनसा। ममता जाल ते रह उदासा, प्रणवत नानक हमता के दासा। बिलावल महला तीजा, वार सत कर दसवां एक ओंकार। सतगुर प्रसाद आदित वार, आद पुरख है सोई। आपे वरत वरना कोई, ओत पोत जग रहा परोई। आपे करता करे सो होई, नाम रते सदा सुख होई। गुरमुख विरला बूझै कोई, हृदय जपनी जपो गुणतासा। हर अगम्या गोचर परंपर स्वामी, जन पग लग त्यावो होए दासन दासा रहाओ। सोमवार सच रहा समाए, तिसकी कीमत कहीं ना जाए। आख आख रहे सब लिवलाए, जिस देवै तिस पल्ले पाए। अगमा गोचर लखिया ना जाए, गुर कै सबधार रहा समाए। मंगल माया मोह उपाया, आपे सिर सिर तंद लाया। आप बुझाए सोई बूझे, गुर कै शब्द दर कर सूझे। प्रेम भगत करे लिवलाए, हम मैं ममता शब्द जलाए। बुधवार आपे बुध सार, गुरमुख करनी शब्द विचार। नाम रते मन निर्मल होए, हर गुण गावे हम मैं मल खोए। दर सच्चे सद सोभा पाए, नाम रते गुर शब्द सुहाए। लाहा नाम पाए गुरुद्वार, आपे देवै देवनहार। जो देवै तिसको बल जाइए, गुर प्रसादी आप गवाइए। नानक नाम रखो और तार, देवन हारे कौ जयकार। वीरवार वीर परम पुलाए, प्रेत पूत सब दूजे लाए। आप उपाय कर वेखै वेका, सबना करते तेरी टेका। जी जंत तेरी शरणाई, सो मिले जिस लह मिलाई। शुक्रवार प्रवरया समाई, आप यो पाए सब कीमत पाई। गुरमुख होवै सो करै विचार, सच संयम करनी है कार। वर्त नेम निता प्रत पूजा, बिन बूझे सब पाओ है दूजा। शनिश्चरवार सौन शास्त्र विचार, हम मैं मेरा परमै संसार। मनमुख अंधा दूजे पाए, जमदर बाधा चोटा खाए। गुर प्रसादी सदा सुख पाए, सच करनी साच लिवलाए। सतगुर सेवै सेवड पागी, हम मैं मार सच लिवलागी। तेरा रंगराते सहि सुभाए, तू सुखदाता लह मिलाए। एक स्ते दूजा नहीं कोए, गुरमुख बूझै सो जी होए। पंद्रह थित्ती तैं सत वार, महारुति आवै वार वार। दिन सरैण तवै संसार, आवा गौण किया करतार। निहचल साच रहया कलतार, नानक गुरमुख बूझै।

बिलावल महला तीजा। आदि पुरख आपे सिरठ साजे, जी जंत माया मोहे पाजे। दूजे पाए परपंच लागे, आवे जाए मरया भागे। सतगुर भेटे सोजी पाए, परपंच चूके सच समाए। जा कै मस्तक लिखिया लेख, ता कै मन वसिया प्रभ एक रहाओ। सृष्टि उपाए आपे सब वेख, कोई न मिटे तेरे लिखै। सिद्ध साधक जे को कह कहाए, परमे पूला आवै जाए। सतगुर सेवै सो जन बूजै, हौ मैं मारे तांदर सूजै। एक स्ते सब दूजा हुआ, एको वरतै अवर न बिया। दूजे ते जे एको जाणै, गुर कै शब्द हर दर निसाणै। सतगुर भेटे तां एको पाए, विचों दूजा ठाक रहाए। जिसदा साहिब डाढ़ा होए, तिसनों मार ना सकै कोए। साहिब की सेवक रह सरनाई, आपे बख्शे दे वड़ियाई। तिसते उपर नाही कोए, कौन डरे डर किसका होए। गुरमति सांत वसै शरीर, सब चीन फिर लगे ना पीर। आवे ना जाए ना दुख पाए, ना मेरा ते सहि समाए। नानक गुरमुख वेखै हदूर, मेरा प्रभ सद रहया भरपूर। एक सेवक एक भरम भुलाए, आपे करे हर आप कराए। एको वरतै अवर ना कोए, मन रोस कीजै जे दूजा होए। सतगुर सेवे करनी सारी, दर साचै साचे विचारी। थिती वार सब शब्द सुहाए, सतगुर सेवे तां फल पाए। थिती वार सब आवै जाहे, गुर शब्द निह चलो सदा सच समाहे। थिती वार तां जां सच राते, बिना मैं सब पर मैं काचे। मनमुख मरे मर बिगती जाहे, एक न चेतै दूजै लोभाहे। अचेत पिंडी अज्ञान अंधार, बिन शब्द क्यों पाए पार। आपो पायो पावन हार, आपे कीतुन गुर विचार। बहुते पेख करे पेख तारी, पाव पाव पर मैं काची सारी। एथे सुख न आगे होए, मन मुख मोए अपना जन्म खोए। सतगुर सेवे परम चुकाए, कर ही अंदर सच महल पाए। आपे पूरा करे सो होए, एह थिती वार दूजा दोए। सतगुर बाजौ अंध गुबार, थिती वार सेवै मुक्त गवार। नानक गुरमुख बूजै सो जी पाए, एक तनाम सदा रहया समाए। बिलावल महला पहला, शमत दखणी एको अंकार। सतगुर प्रसाद मुंदन वेलड़िया, गोयल आई राम। मटकी डार धरी हर लिव लाई राम। लिवलाए हर सिंह रही गोयल, सहज शब्द सिंगारिया। कर जोड़ गुरपै कर बिनंती, मिलो सच प्यारिया। धन पाए भगती देख प्रीतम, काम क्रोध निवारिया। नानक मुंदन वेल सुंदर, देख पिर साधारिया। सच निवेलड़िए जोबन बाली राम, आओ ना जाओ कही अपने सहनाली राम। नाह अपने संग दासी, मैं भगत हर की भावे। अगाद बोध अकथ कथिय, सहज प्रभ गुण गावे। राम ना राम नाम रसाल रसिया, रवै सच प्यारिया। गुर शब्द दिया दान किया, नानका विचारिया। श्री धर मोहड़ी पेर संग सूती राम, गुर कह पाए चलो साज संगूती राम। तन साज संगूती हर संग सूती, संग सखी सहेलिया। एक पाए एक मन नाम वसिया, सतगुरु हमेलिया। दिन रैन कड़ी ना चसा विसरै, सास सास निरंजनो। शब्द जोत जगाए दीपक, नानका पौ भंजनो। जोत सबाइड़िए त्रिपवन सारे राम। काट काट रव रहया अलाख्या पारे राम। अलाख्या पारिया पार साचा, आप मार मिलाइय। हम मैं ममता लोभ जालो, शब्द मैल चुकाइय। दर जाए दर्शन करी भाने, तार तार नहारिया।
ਹਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਖ ਤ੍ਰਿਪਤੀ, ਨਾਨਕਾ ਉਰਤਾਰਿਆ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮੈਂ ਮਨ ਚਾਉ ਕਣਾ ਸੱਚ ਵਿਗਾਸੀ ਰਾਮ, ਮੋਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰੇ ਪ੍ਰਭਵ ਨਾਸੀ ਰਾਮ। ਅਵਗਤੋ ਹਰਨਾਥ ਨਾਥੈ ਤਿਸੈ ਪਾਵੈ ਸੋਥੀਐ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ਦਾਤਾ। ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਜੀਐ ਮੈਂ ਅਵਰ ਗਿਆਨ ਨ ਧਿਆਨ ਪੂਜਾ, ਹਰਨਾਮ ਅੰਤਰ ਵਸ ਰਹੇ ਪੇਖ ਪਵਨੀ ਹਠ ਨਾ ਜਾਨਾ ਨਾ

ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिया एक एक वखाणिया आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना नहीं जानिया आप करता आप पहुता आप कारण किया बिनवंत नानक से ही जाने जिन्नी हर रस पिया। बिलावल महला पंजवा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सखी आओ सखी वस आओ सखी असी फिरका मंगल गावे तजमान सखी माते अपने प्रीतम पावे तजमान मोह विकार दूजा सेव एक निरंजन हो लग चरण सरण दयाल प्रीतम सगल दुर्त बिखंडनो होए दास दासी ताजो दासी बहुड़ बिदी ना तावा नानक पयम पै करो कृपा ताम मंगल गावा। अमृत प्रे का नाम मैं अंधले टोहनी ओह जो है बहु प्रकार सुंदर मोहनी मोहनी महाबचित्र चंचल अनक भाव दिखावे होए टीठ मीठी मन लागे नाम लैण ना आवे गरे बने तीरे बर्त पूजा बाट काटे जोहनी नानक पयम पै दया तारो मैं नाम अंदरे टोहनी मोह नाथ प्रे नाथ ज्यो जानो त्यो रखो चतराई मोह नाए रिझावो कै मुखो नह चतर सुगर सुजान बेती मोहे निर्गुण गुण नहीं नह

कोई वाहे को लुणे को पाए खलहान, नानकेव ना जापई कोई खाए निदान। महला पहला, जिस मन वसया तरिया सोए, नानक जो पावे सो होए। पौड़ी, पार ब्रह्म दयाल सागर तारिया, गुरपुरै मेहरवान परम पौ मारिया। काम क्रोध विकराल दूत सब हारिया, अमृत नाम निदान कंठे उर तारिया। नानक साधु संग जन्म मरण सवारिया, सलोक महला तीजा। जिन्नी नाम विसारिया, कूड़े कहन कहन। पंच चोर तिन्ना घर मोहन, हम मैं अंदर सन। सागत मुठे दुरमति हर रस ना जानन, जिन्नी अमृत परम लुटाया बिकसो रचै रचन। दुष्टा सेती परहड़ी जन स्यो वाद करन, नानक सागत नरक मैं जंबदे दुख सहन। पया किरत कमाम दे जिव राखै तवै रहन। महला तीजा, जिन्नी सतगुर सेवया तान निताने तिस, सास ग्रास सदा मन वसै जम जोहे न सकै तिस। हिरदय हर हर नाम रस कवला सेवक तिस, हर दासा का दास होए परम पदार्थ तिस। नानक मंतन जिस प्रभ वसै हौ सतगुर बाणै तिस, जिनको पूर्व लिखिया रस संत जना स्यो तिस। पौड़ी, जो बोले पूरा सतगुरु सो परमेसर सुनिया, सोई वर्तिया जगत मैं कट कट मुख पणिया। बहुत वडियाइया साहेब नै जाही गणिया, सच सहज आनंद सतगुरु पास सच्ची गुरमणिया। नानक संत सवारे पार ब्रह्म सच्चे ज्यो बणिया। सलोक महला तीजा, अपना आप ना पछाणई हर प्रभ जाता दूर, गुर की सेवा विसरी क्यों मन रह हजूर। मन मुख जन्म गवाया झूठे लाल चकूर, नानक बख्श मिलाया न सच्चे शब्द हदूर। महला तीजा, हर प्रभ सच्चा सोहेला गुरमुख नाम गोविंद, अंध नाम सलाहना हर जपया मन आनंद। वडभागी हर पाया पूर्ण परमानंद, जन नानक नाम सलाहया बहुन नमन तन पंग। पौड़ी, कोई निंदक होवै सतगुरु का फिर शरण गुर आवै, पिछले गुने सतगुर बख्श लए सतसंगत नाल रलावै। ज्यो मीहे उठे गलियां नालियां टोबियां का जल, जाए पवै विच सुरसरी सुरसरी मिलत पवित्र पावन होए जावै। ए वड्याई सतगुर निर्वैर विच जित मिलिया तिसना भुख उतरै हर सांत तड़ियावै। नानक हो अचरज देखो मेरे हर सच्चे साहका, जे सतगुरु नो मन्नै सो सबना पावै। सुध बिलावल बाणी भगतां की, कबीर जियो की एक ओंकार। सतनाम करता पुरख गुरप्रसाद, ऐसो संसार।

हर के सेवक जो हर पाए तिन की कथा निरारी रे आवै ना जाए ना कबहू मरते पार ब्रह्म संगारी रे पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया एह तजो जी जानी रे कहत कबीर सुनो रे संतो मिल है सारंग पानी रे बिलावल विद्या ना परो बाद नहीं जानो हर गुण कथत सुनत बौरानो मेरे बाबा मैं बौरा सब खलक सियानी मैं बौरा मैं बिगड़ियो बिगड़ै मत औरा रहाओ आपन बौरा राम कियो बौरा सतगुर जार गयो प्रमोरा मैं बिगड़े अपनी मत खोई मेरे परम भूलो मत कोई सो बौरा जो आप ना पछाने आप पछाने ता एक कह जाने अबे ना माता सो कबो ना माता कह कबीर रामै रंगराता बिलावल गृहोता जबान खंड जाइए चुन खाइए कंदा अजो बेकार ना छोड़ई पापी मन मंदा क्यों छूटो कैसे तरो पाव जल निध पारी राख राख मेरे बीठला जन शरण तुम्हारी रहाओ बिखे बिखे बिखे बिखे की बसना तजी ने जाई अनक जतन कर राखी है फिर लपटाई जरा जीवन जोबन गया किशकिया ना निका एहो जियरा निर्मोल को कौडी लग मीका कहो कबीर मेरे माधवा तू सर्वव्यापी तुम समसर नाही दयाल मोहे समसर पापी बिलावल नित उठ कोरी गागर अन लीपत जियो गयो ताना बाना कशुना सूजै हर हर रस लपटो हमारे कुल कौने राम कयो जबकि माला लई निपूते तब ते सुख ना पयो रहाओ सुनो जेठानी सुनो देरानी अचरज एक पयो सात सूत इन मुंडिये खोए एहो मुंडिया क्यों नाम यो सर्व सुखा का एक हर स्वामी सो गुर नाम दयो संत प्रहलाद की पै जन राखी हर नाक्ष नख विदरियो घर के देव पितर की छोड़ी गुर को शब्द लयो कहत कबीर सगल पाप खंडन संत लै उदरियो बिलावल को हर समान नहीं राजा ए भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवा जा रहाओ तेरो जन होए सोए कत डोले तीन पवन परशा जा हाथ पसार सके को जन को बोल सके ना आंदा जा चेत या चेत मूड मन मेरे बाजे अनहद बाजा कह कबीर संसा भ्रम चूको ध्रुव प्रहलाद निवाजा बिलावल राख लिहो हम ते बिगरी सील धर्म जब भगत ना कीनी हम अपमान टेढ़ पगरी रहाओ अमर जान संचिए काया ए मिथ्या काची गगरी जिन्हें निवाज साज हम किए तिसे बिसार अवर लगरी संदक तोहे साध नहीं कहियो शरण परे तुमरी पगरी कह कबीर ए बिनती सुनियो मत कालो जमकी खबरी बिलावल दर मानदे ठंडे दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजै खोल के वार रहाओ तुम तन तनी उदार त्यागी श्रवणन सुनियत सुजस तुमार मंगों काहे रंक सब देखो तुम ही ते मेरो निस्तार जय देव नामा बिप सुदामा तिन कहो कृपा पई है अपार कह कबीर

तही जैसे पुरवन पात मिथ्या कर माया तजी सुख सहज विचार। कह कबीर सेवा करो मन मंज मुरार, बिलावल जन मरण का भ्रम गया गोविंद लिवलागी, जीवत सुन समानिया गुरसाखी जागी रहाओ। काशी ते तुनी उपजै तुन काशी जाई, काशी फूटी पंडता तुन कहां समाई। त्रिगुटी संद मैं पेखिया कट हूं कट जागी, ऐसी बुद्ध समाचरी कट माहे त्यागी। आप ते जानिया तेज तेज समाना, कहो कबीर अब जानिया गोविंद मनमाना। बिलावल चरण कमल जहां कर दे बसै, सो जन क्यों डोले देव। मानो सब सुख नव नित ताकै, सहज सहज जस बोले देव रहाओ। तब एह मत जो सब मैं पेखै, कुटल गांठ

एको ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद। राग गोंड चौप दे महला चौथा कर पहला। जे मन चित आस रखे हरि उपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई। हर जाने सब किश जो जिए वरतै प्रभ कालिया किसै का एक तिल ना गवाई। हर जिसकी आस की जय मन मेरे जो सब मैं स्वामी रह समाई। मेरे मानो आसा कर जगदीश गुसाई। जो बिन हर आस अवर काहू की जय साने फल आस सब वृथी जाई रहाओ। जो दिसे माया मोह कुटंब सब मत तिसकी आस लग जन्म गवाई। इनके किश हाथ नहीं कहां करे एह बपड़े इनका वाहया कश नाम वसाई। मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की। जो तुझ तारे तेरा कुटंब सब छिड़ाई। जे किश आस अवर करह पर मित्री मत तू जाने तेरे कितए कम आई। ए आस पर मित्री पाओ दूजा है खिर मैं झूठ बिनस सब जाई। मेरे मन आसा कर हर प्रीतम साचे की। जो तेरा कालिया सब थाए पाई। आसा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी। जैसी तू आस करावे तैसी को आस कराई। किश किसी के हाथ नहीं मेरे स्वामी ऐसी मेरे सतगुरु बुझ बुझाई। जन नानकी आस तू जाने हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई। गोंड महला चौथा। ऐसा हर सेवी है नित्याई है जो खिन मैं किले विखो सब करे बिनासा। जे हर त्याग अवर की आस की जय ता हर नेफल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेवो सुखदाता स्वामी जित सेव सब भूख लहसा। मेरे मन हरि उपर की जय प्रभासा। जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी हरि अपनी पैज रखे जनदासा रहाओ। जे अपनी बिरथा कहो अवरा पहे ताया गए अपनी बिरथा बह बहुत कटासा। अपनी बिरथा कहो हरि अपने स्वामी पह जो तुमरे दुख तत्काल कटासा। सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पह कहिए अवरा पह कहे मन लाज मरासा। जो संसार है के कुटंब मित्र भाई दिसे मन मेरे ते सब अपने स्वाय मिलासा। जे

जो तुद उपकर दुख सुखासा तिसका प्रवासा, क्योंकि जय मन मेरे जोवंती अवसर रखना सुकासा। हर जप मंत गुरु उपदेश लै जप, तने अंत छाए जिन हर प्रीत चितासा। जन नानक अंदर नाम जपो हर संतो, एहो छूटन का साचा प्रवासा। गोंड महला चौथा, हर सिमरतो सदा होए आनंद, सुख अंतर सांत शीतल मन अपना। जैसे सगत सूर बहु जलता, गुर सस देखे लह जाए सब तपना। मेरे माने अंदन त्याए नाम हर जपना, जहां कहां तुझ राखे सब ठाई। सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना रहाओ। जा मैं सब निदान सो हर जप मन मेरे, गुरमुख खोज लो हर तना। जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी, तिन के चरण मलो हर दसना। सब

मेरे मन नाम हरी पज सदा दीवान, जो हर महल पावे गुरबचनी तिस जेवड़े अवर नाही किसै दातान। हरहाओ जितने तनवंत कुलवंत मिलखवंत, दिसै मन मेरे सब बिनस जाहे जो रंग कुसुंभ जान। हर सत निरंजन सदा सेव मन मेरे, जित हर दरगह पावै तू मान। ब्राह्मण खत्री सूद वैस चार वर्ण चार आश्रम है, जो हर त्यावै सो प्रधान। ज्यों चंदन निकट वसै हिरड बपड़ा, त्यों सत संगत मिल पतत परवान। ओह सब ते उचा सब ते सूचा, जा कै हृदय वसया भगवान। जन नानक तिसके चरण पखालै, जो हर जन नीच जात सेवकान। गोंड महला चौथा, हर अंतर जामी सब तै वरतै, जिहा हर कराए तिहा को करैयै। सो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे, जो तुदनो सब दू रख लईयै। मेरे मन हर जप हर नित पढ़ैयै, हर बिन को मार जीवाल ना साकै, ता मेरे मन कायत कड़ैयै। रहाओ हर परपंच किया सब करतै, विच आपे अपनी जोत रहीयै। हर एक को बोले हर एक बुलाए, गुरपूरे हर एक दिखाइयै। हर अंतर नाले बाहर नाले, कहो तिस पासो मन क्या चोरैयै। निहकपट सेवा की जय हर केरी, ता मेरे मन सर्व सुख पईयै। जिस दै वस सब किछ सो सब दू वड्डा, सो मेरे मन सदा धियै। जन नानक सो हर नाल है तेरै, हर सदा ध्याए तू तुदले छडैयै। गोंड महला चौथा, हर दर्शन कहो मेरा मन बहुत तृप्तै, जो त्रिखावंत बिरनीर। मेरे मन प्रेम लगो हर तीर, हमरी बेदन हर प्रभ जानै। मेरे मन अंतर की पीर, रहाओ मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावै। सो भाई सो मेरा वीर, मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के, ले सतगुर की मत धीर। जन नानक की हर आस पुजावो, हर दर्शन सांत शरीर शकायक। राग गौंड महला पंजवा, चौप देकर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद सब करता सब भुगता, रहाओ सुनतो करता पेखत करता, दृष्टो करता दृष्टो करता, उपत करता परलो करता, व्याप्त करता लिपतो करता, भक्तो करता बूजत करता, आयावत करता जात पी करता, निर्गुण करता सरगुण करता, गुर प्रसाद नानक समदृष्टा। गोंड महला पंजवा, फाक्यो मीन कब की न्याई, तू उर्ज रहे कुसुम्भाए ले। भगतारे सास ले खैले, तो उदरे हर गुण गाए ले। मन समझ छोड़िया वाए ले, अपने रहन कौ ठौर ना पावे, काए पर कह जाए ले। रहाओ ज्यो मैंगल इंद्री रस प्रेरियो, तू लाग परयो कुटुम्बाए ले। ज्यो पंखी एकत्र होए फिर विशरै, थिर संगत हर हर त्याए ले। जैसे मीन रसन साध

आए सो प्रभ मन मेरे सदा त्याए आए न जावै निश्चल धनी बेअंत गुणाता के गनी लाल नाम जाके परे भंडार सगल घटा देवै आधार सत पुरख जा को है नाउ मिटै कोट अग्नि।

जन्म मरण की त्रास मिटाई, गुरपूरे की बेअंत वडाई, गुर प्रसाद ऊर्द कमल विगास, अंधकार मैं भया प्रगास, जिन किया सो गुर ते जानिया, गुर कृपा ते मुग्ध मन मानिया, गुर करता गुर करने जोग, गुर परमेश्वर है पी होग, कहो नानक प्रभ यह जनाई, बिन गुर मुक्त ना पाई है पाई, गोंड महला पंजवा, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई न मिटे दात, गुर परमेश्वर एको जान, ज्योत पावे सो प्रवान, रहाओ गुर चरणी जाका मन लागे, दुख दर्द प्रमता का भागे, गुर की सेवा पाए मान, गुर उपर सदा कुर्बान, गुर का दर्शन देख निहाल, गुर के सेवक की पूर्ण काल, गुर के सेवक को दुख ना व्यापै, गुर का सेवक दे दे जापै, गुर की महिमा कथन ना जाए, पार ब्रह्म गुर आसमाए, कहो नानक जाके पूरे भाग, गुर चरणी ता का मन लाग, गोंड महला पंजवा, गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद, गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत, गुर मेरा देओ अलाखा पेओ, सर पूचरण गुर सेओ, गुर बिन अवर नाही मैं थाओ, अंधन जपो गुरु गुर नाओ, रहाओ गुर मेरा ज्ञान, गुर दे ध्यान, गुर गोपाल पुरख भगवान, गुर की शरण रहो कर जोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर बोइथ तारे पवपार, गुर सेवा जमते छुटकार, अंधकार मैं गुर मंत्र उजारा, गुर कै संग सगल निस्तारा, गुर पूरा पाई वड भागी, गुर की सेवा दुख ना लागी, गुर का शब्द ना मेटे कोए, गुर नानक नानक हर सोए, गोंड महला पंजवा, राम राम शंकर व्यवहार, राम राम राम प्राण आधार, राम राम राम कीर्तन गाए, रमत राम सब रे उसमाए, संत जना मिन बोलो राम, सब ते निर्मल पूर्ण काम, रहाओ राम राम तन संच पंडार, राम राम राम कर आहार, राम राम विसर नहीं जाए, कर कृपा गुर दिया बताए, राम राम राम सदा सहाय, राम राम राम लिव लाए, राम राम जप निर्मल पै, जन्म जन्म के किल बिख गए, रमत राम जन्म मरण निवार, उचरत राम पै पार उतार, सब ते ऊच राम प्रगास, निस्बासर जप नानक दास, गोंड महला पंजवा, उनको खसम कीनी ठाक हारे, दास संगते मार बिदारे, गोविंद भगत का महल ना पाया, राम जना मिल मंगल गाया, सगल श्रेष्ठ के पंच सिकदार, राम भगत के पानी हार, रहाओ

जंत अपने कौ दीजै हाथ राओ। सिमरत शास्त्र वेद पुराण पार ब्रह्म का करै वख्याण। जोगी जति

मोहे निर्गुण गुण किशु ना है, सर्वनिधान तेरी दृष्टि मा है। नानक दीन जाचे तेरी सेव, कर कृपा दीजे गुरुदेव। गुण

जा कौ राखे राखनहार तिसका अंकर निरंकार रहाओ। मात गर्भ में अगन ना जो है काम क्रोध लोमो ना पो है साध संग जपे निरंकार निंद कै मोय लागे शार। राम कवच दास का सना हो दूत दुष्ट तिस पोहत ना है जो जो गर्भ करे सो जाए गरीब दास की प्रभ शरणाए। जो जो शरण पया हर राए सो दास रखिया अपने कंठ लाए। जे को बहुत करे अहंकार ओ खिन में रुलता खाकू नाल है पी साचा हो बनहार उस दास दा जाई बलिहार। अपने दास रखे कृपा तार नानक के प्रप्राण आधार। गोंड महला पंजवा अचरज कथा महानूप प्रात्मा पार ब्रह्म का रूप रहाओ। ना हो बूढ़ा ना हो बाला ना इस दुख नहीं जमजाला। ना हो बिनसे ना हो जाए आज गादी रह समाए। ना इस पुसन नहीं है सीत ना इस दुश्मन ना इस मीत। ना इस अर्ख नहीं है सोग सब किश इसका एहो करने जोग। ना इस बाप नहीं है समाया एहो परम्पर होता आया। पाप उनका इसलिए अपना लागे कट कट अंतर सद ही जागे। तीन गुणा एक सकतो पाया महा माया ता की है छाया। अशाला शेदा पे दयाल दीन दयाल सदा कृपाल ता की गतमित कशु ना पाए। नानक ता कह बल बल जाए गोंड महला पंजवा संतन कह बलहार है जाओ संतन कह संग राम गुन गाओ। संत प्रसाद किलवख सब गए संत शरण वड पागी पए। राम जपत कछ विघ्न ना लागे राम जपत कछ विघ्न ना व्यापै गुर प्रसाद अपना प्रभ जापै रहाओ। पार ब्रह्म जब होए दयाल साधु जन की करे लवाल। काम क्रोध इस तंते जाए राम रतन वसै मन आए। सफल जन्म ताका प्रवाण पार ब्रह्म निकट कर जान। पाए भगत प्रभ कीर्तन लागे जन्म जन्म का सोया जागे। चरण कमल जन का आधार गुण गोविंद रहो सच व्यापार। दास जना की मनसा पूर नानक सुख पावे जन तुहूर। राग गौंड

इस मरते कहो जे कहो रोवे, जो रोवे सोई पत खोवे। गुर प्रसाद मैं डगरो पाया, जीवन मरण दो मिटवाया। कहो कबीर एहो राम की अंश, जस कागत पर मिटे ना मंस गोंड। टूटे तागे निखुटी पान, द्वार ऊपर चिलकावे कान। कूच बिचारे फूए फाल, या मुंडिया सर चढ़ बोकाल। एहो मुंडिया सगलो दर्ब खोई, आवत जात नाग सर होई रहाओ। तुरी नार की छोड़ी बाता, राम नाम वाका मन राता। लड़की लड़कन खैबो नाहे, मुंडिया अंदन तापे जाहे। एक दोए मंदर एक दोए बाट, हम को साक्षर उनको खाट। मूंड पलोस कमर बद पोथी, हमको चाबन उनको रोटी। मुंडिया मुंडिया हुए एक, ए मुंडिया बुढ़द की टेक। सोन अंदली लोई बेपीर, इन मुंडिया न पज सरन कबीर गोंड। खसम मरे तो नार ना रोवे, उस रखवारा और होवे। रखवारे का हुए विनाश, आगे नरक यहां भोग बिलास। एक सुहागन जगत प्यारी, सगले जी जंत की नारी रहाओ। सोहागन गल सो है हार, संत को बेख बिकसे संसार। कर सिंगार बह पखियारी, संत की ठिठकी फिरै बिचारी। संत भाग हो पाछे परै, गुर प्रसादी मारो डरै। सागत की हो पिंड परायण, हम को दृष्ट परै त्रखडायण। हम तिसका बहु जान्या पेओ, जब हुए कृपाल मिले गुरुदेव। कहो कबीर अब बाहर परी, संसार है कै अंचल लरी। गोंड गृह सोभा जा कह रे नाहे, आवत पैया खुदे जाहे। वाकै अंतर नहीं संतोख, बिन सोहागन लागै दोख। तन सोहागन महापवीत, तपित पीसर डोलै चीत रहाओ। सोहागन कृपन की पूती, सेवक ताज जगत स्यों सूती। साधु कै ठांडी दरबार, शरण तेरी मोको निस्तार। सोहागन है अत सुंदरी, पग नेवर शनक शन हरी। जव लग प्राण तव लग संगे, नाहे ता चली बेग उठ नंगे।

मन कूट तो जमते छूट कुट कुट मन कसवटी लावे सो कूटन मुक्त बहु पावे। कूटन किसे कहो संसार सगल बोलन के माहे विचार रहाओ। नाचन सोए जो मन स्यो नाचे झूठ ना पतिए पर चै साचे। इस मन आगे पूरे ताल इस नाचन के मन रखवाल। बजारी सो जो बजार है सो दे पांच पलीत कौ प्रबोद। नौ नायक की भगत पछान सो बाजारी हम गुरमाने। तस्कर सोए जे तात ना करे इंद्री के जतन नाम उचर। कहो कबीर हम ऐसे लखन धन गुरदेव अतरू बिचखन गोंड। धन गोपाल धन गुरदेव धन अनाद भूखे कवल टहकेव। धन वे संत जिन ऐसी जानी तिनको मिलबो सारिंग पानी। आद पुरखते हुए अनाद जपिए नाम अन्न कै साध रहाओ। जपिए नाम जपिए अन्न अंबे का संग निका वन। अन्न बाहर जो नर होवे तीन भवन में अपनी खोवे। छोड़े अन्न करे पाखंड ना सोहागण ना ओहे रंड। जग में

राग गोंड बाणी नाम देओ जी की कर पहला एको ओंकार सतगुर प्रसाद। असमेत जग ने तुला पुरख दाने प्राग इशनाने तौ ना पुजे हर कीर्तनामा अपने रामै भज रे मन आलसिया रहाओ। गया पिंड भरता बनारस अस बसता मुख बेद चतर पड़ता सगल धर्म अशता गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता खट कर्म सहित रहता सेवा सख्त संबादं मन छोड़ छोड़ सगल भेदं सिमर सिमर गोबिंदं भज नामा तरस पव सिंदं गोंड। नाद प्रमे जैसे मिर गाए प्राण तजे वाको ध्यान न जाए ऐसे रामा ऐसे हेराओ राम छोड़ चित अंत ना फेराओ रहाओ। ज्यो मीना हेरै पशुआरा सोना गढ़ते हरै सोनारा ज्यो बिखई हेरै परनारी कौडा डार तेहरै जुआरी जय जय देखो तै तै रामा हर के चरण नित त्यावै नामा गोंड।

नारते सुर होए जात निमुख मैं सतगुर बुद्ध सिखलाई नरते उपज सुर्ग कौ जीते ओ सो अवखद मैं पाई जहां जहां तू नारद टेकै नैकट कावो मोहे तेरे नाम अवलंब बहुत जने उदरे नामे की निजमत एहे गोंड मोहे लागती ताला बेली बछरे बिन गाय अकेली पानिया बिन मीन तलफै ऐसे राम नामा बिन बापरो नामा रहाओ जैसे गाय का बाछा शूठला तन थन चोखता माखन कूटला नाम देव नारायण पाया गुर भेट लख लखाया जैसे बिखै हेत पर नारी ऐसे नामे प्रीत मुरारी जैसे ताप ते निर्मल कामा तैसे राम नामा बिन बापरो नामा राग गोंड बाणी नाम देव जियो की कर दूजा एको अंकार सदगुर प्रसाद हर हर करत मिटे सब परमा हर को नाम लै उत्तम धर्मा हर हर करत जात कुल हरी सो हर अंधले की लाकरी हर ए नमस्ते हर ए नमः हर हर कर तो नहीं दुख जमाए रहाओ हर हर नाक्स हरे।

बर्द चढ़े डौरू टमकावे, महा माई की पूजा करे, नरसै नर होए अवतरे। तू कहत ही अद भवानी, मूत की बरिया कहां छपानी। गुरमत राम नाम गहो मीता, प्रणवै नामा यो कह गीता।

मारिया था। पांडे तुमरा रामचंद सो पी आवत देखिया था। रावण सेती सरबर होई कर की जो गवाई थी। हिंदू अन्ना तुर्कू काना दोहा ते ज्ञानी सियाना। हिंदू पूजै देहोरा मुसलमान मसीत नामे सोई सेव्या जय देहोरा नाम सीत। रागोंड बाणी रविदास जियो की कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। मुकंद मुकंद जपो संसार बिन मुकंद तन होए अवहार। सोई मुकंद मुक्त का दाता सोई मुकंद हमरा पित माता।

जप मुकंद मस्तक निशान, सेव मुकंद करै बैरागी सोई मुकंद दुर्बल तन लादी, एक मुकंद करै उपकार हमरा कहाँ करै संसार।

पास अवतृष्णा चुकी जप मुकंद सेवा ताहू की गौंड जे हो 68 तीर्थ नावै जे हो द्वादश शिला पूजावै जे हो कूप तटा देवावै करै निंद सबिर था जावै साध का निंदक कैसे तर

जे हो अनक प्रसाद करावै भूम दान शोभा मंडप पावै अपना बिगार बिराना सांडै करै निंद बोजो नी हांडै निंदा कहाँ करो संसारा निंदक का प्रगट पहारा निंदक सोध साध बिचारिया कहो रविदास पापी नरक सिधारिया जोड़ राम कली।

अकाल मूर्त अजूनी स पंगुर प्रसाद, कोई पढ़ता सहसा करता कोई कड़े पड़े पुराना, कोई नाम जपे जप माली लागे तसे त्याना। अब ही कभी किशु ना जाना तेरा एको नाम पछाना, ना जाना हरे मेरी कवन गते, हम मूर्ख ज्ञान शरण प्रभ तेरी कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहाओ।

मरण लिखाए मंडल में आए जीवन साजै माई। एक चले हम देखे स्वामी पाहे बलंती आई। ना किसी का मीत ना किसी का भाई, ना किसे बाप ना माई। प्रणवत नानक जे तू देवे अंते हुए सखाई। राम कली महला पहला, सर्ब जोत तेरी पसर रही। जै जै देखा तै नर हरी, जीवन तलब निवार स्वामी। अंध कुप माया मन गाड़िया, क्यों कर उतरो पार स्वामी रहाओ। जह पीतर कट पीतर बसया, बाहर काहे नाही। तिन की सार करे नित साहेब, सदा चिंत मन माही। आपे नेड़ा आपे दूर, आपे सरबरया भरपूर। सतगुर मिले अंधेरा जाए, जै देखा तै रया सुमाए। अंतर से सा बाहर माया, नैनी लग सबाणी। प्रणवत नानक दासन दासा, परता पैगा प्राणी। राम कली महला पहला, जित दर वसे कमन दर कहिए। दरा पीतर दर कमन लह, जिस दर कारण फिरा उदासी। सो दर कोई आए कह, किन बिद सागर तरिए। जीव त्याने मरिए रहाओ, दुख दरवाजा रोह रखवाला। आसा अंदेसा दोए पट जड़े, माया जल खाई पानी कर बांधया। सत कह

जब आशा अंदेशा तब ही क्यों कर एक कहे, आशा पीतर रह निराशा तव नानक एक मिले। इन विद सागर तरिये जीवत आयो मरिय रहाओ दूजा, राम कली महला पहला सुरत शब्द साखी मेरी सिंगी बाजे लोक सुने। पत चोली मंगण कह ताई पीखिया नाम पड़े, बाबा गोरख जागे गोरख सोजन गोए उठाली करते बार ना लागे रहाओ। पानी प्राण पवन बंद राखे चंद सूरज मुख दिए, मरण जीवन कौ धरती दीनी एते गुण विसरे। सिद्ध साधक यार योगी जंगम पीर पुरुष बहु तेरे, जेतन मिला ता कीर्त आखा ता मन सेव करे। कागद लून रह कृत संगे पानी कमल रह, ऐसे भगत मिले जन नानक तिन जम क्या करे। राम कली महला पहला सुन माशिंद्रा नानक बोले, वसगत पंच करे नहीं डोले। ऐसी जुगत जो कौ पाले आप तरह सगले कुल तारे, सो अवधूत ऐसी मत पावे अहनिस सुन समाज समावे रहाओ। भिखिया पाए भगत पै चल होवे सो तृप्त संतोख अमुल, ध्यान रूप होए आसन पावे सच नाम ताड़ी चितलावे। नानक बोले अमृत बाणी सुन माशिंद्रा औदू निशानी, आसा महे निरास वलाए निहचो नानक करते पाए। प्रणवत नानक अगमुख सुनाए गुर चेले की संद मिलाए, दिखिया दारू भोजन खाए छे दर्शन की सोजी पाए। राम कली महला पहला हम डोलत बेड़ी पाप भरी है पवन लगे मत जाई, सनमुख सिद्ध पेटन कौ आए निहचो दे वड़ियाई। गुर तार तारन हारिया देह भगत पूर्ण अविनाशी, हाँ तुझ को बलिहारिया रहाओ। सिद्ध साधक जोगी अर जंगम एक सिद्ध जिनी त्याया, परसत पैर सिजते स्वामी अखर जिनको आया। जप तप संजम कर्म ना जाना, नाम जपी प्रभ तेरा गुर परमेसर नानक पेटे ओ साचे शब्द नवेरा। राम कली महला पहला सुरती सुरतर लाइए एत, तन कर तुलहा लंगे जेत। अंतर पाहे तुसे तू रख एनस दीवा बल अथक, ऐसा दीवा नीर तराए जित दीवे सब सो जी पाए रहाओ।

रामकली महला पहला, सागर मैं बूंद, बूंद मैं सागर, कवन बुझै बिद जाना, उत्पो चलते आप कर चीना, आपे तत् पछाण, ऐसा ज्ञान विचारे कोई, तिस्ते मुक्त परमगत होई रहाओ। दिन मैं रहण रहण मैं दिनियर, उसन सीत बिद सोई, ताकि गत मित अवर ना जाने, गुरबिन समझ ना होई। पुरख मैं नार, नार मैं पुरखा, बुझो ब्रह्म ज्ञानी, तुन मैं ध्यान, ध्यान मैं जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। मन मैं जोत, जोत मैं मनुआ, पंच मिले गुर पाई, नानक तिन कै सत बलिहारी, जिन एक शब्द लिवलाई। राम कली महला।

गुण दाते हर संत पगी ले पावै। हौ काटो काट बाढ़ सिर राखो जित नानक संत चढ़ आवै। राम कली

फिरै से नकटे तन कस कस नक वढाया। मोको जग जीवन जीवालै स्वामी हृदय अंतर नाम वसाया। नानक गुरु गुरु है पूरा मिल सतगुर नाम ते आया। आराम कली महला चौथा सतगुर दाता वड्डा वड पुरख है। जित मिले हर उर तारे जी दान गुर पूरै दिया। हर अमृत नाम समारे राम गुर हर हर नाम कंठ तारे। गुरमुख कथा सुनी मन पाई तन तन वड भाग हमारे। रहाओ कोट कोट ते तीस ते आवै ता का अंत न पावै पारे। हृदय काम काम नी मांगै रिद मांगै हाथ पसारे। हर जस जप जप वड्डा वडेरा गुरमुख रखो उर तारे। जे वड भाग होवै ता जपियै हर पौजल पार उतारे। हर जन निकट निकट हर जन है हर राखै कंठ जन तारे। नानक पिता माता है हर प्रभ हम बारक हर प्रतपारे। राग राम कली महला पंजवा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कृपा करहो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना बिचारो कोई। माटी का क्या तोपै स्वामी मानस की गाते ही। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई। जो इच्छा हो सोई फल पावो फिर दुख ना व्यापै कोई। रहाओ काचे पांडे साज निवाजे अंतर ज्योत समाई। जैसा लिखत लिखिया तुर करता हम तैसी किरत कमाई। मन तन थाप किया सब अपना ए हो आवन जाना। जिन दिया सोचित न आवै मोहे अंध लपटाना। जिन किया सोई प्रभ जाने हर काम है लिया पारा। भगत करी हर के गुण गावा नानक दास तुम्हारा। राम कली महला पंजवा पवो चरना तल उपर आवो। ऐसी सेव कमावो आपस ते ऊपर सब जानो तो दरगह सुख पावो। संतो ऐसी कथो कहानी सुर पवित्र नरदे पवित्रा। खिन बोलो गुरमुख बाणी रहाओ। परपंच छोड़ सहज कर बैसो झूठा कहो ना कोई। सतगुर मिलो नवै निध पावो इनबे तत बिलोई। परम चुकावो गुरमुख लिव लावो आत्म चीनो पाई। निकट कर जानो सदा प्रभ हाजर किस्यों कहो बुराई। सतगुर मिले आए मार्ग मुक्ता सहजे मिले स्वामी। तन तन से जन जिन्नी कल मैं हर पाया जन नानक सत कुरबानी। राम कली महला पंजवा आवत हरखना जावत दुखा नह व्यापै मन रोगनी। सदा आनंद गुर पूरा पाया ता उतरी सगल बेयोगनी। एह बिद है मन जोगनी मोह सोग रोग लोग ना व्यापै तै हर हर हर रस भोगनी। रहाओ स्वर्ग पवित्रा मृत पवित्रा पयाल पवित्र अलोगनी। आज्ञाकारी सदा सुख पुंचै जतकत पेखो हर गुनी। नह शिव शक्ति जल नहीं पवना तह आकार नहीं मेदनी। सतगुर योग का तहां निवासा जह अवगत नाथ अगम तनी। तन मन हर का तन सब हर का हर के गुण हो क्या गनी। कहो नानक हम तुम गुर खोई है अंबे अंब मिलोगनी। राम कली महला पंजवा त्रै गुण रहत रह निरारी। साधक सिद्ध ना जाने रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण सतगुर कै खजाने। अचरज किछ कहण ना जाई बसता गोचर पाई। रहाओ मोल नाही कछ करने जोगा क्या को कह सुनावै। कथन कहन को सोजी नाही जो पेखै तिस बन आवै। सोई जाने करने हारा कीता क्या बेचारा।

पंच बचित्र करे संतोखा सात सुरा लै चाल बाजा मान तान ताई ताना पाओ न बिंगा कल फेरी फेर न होवे कभी एक शब्द बंद पाल नारदी नरहर जान हदूरे कुंगर खड़ग त्याग विसूरे सहजानंद दिखावे पावे यो नृतकारी जन्म ना आवे जे को अपने ठाकर पावे कोट मद एहो कीर्तन गावे साध संगत की जावो टेक कहो नानक तिस कीर्तन एक।

कोई कहे तुर्क, कोई कहे हिंदू, कोई बंश है पिस्त, कोई सुरग हिंदू। कहो नानक जन हुक्म पछाता, प्रभ साहेब का तन भेद जाता। राम कली महला पंजवा, पवन मैं पवन समाया, ज्योति मैं ज्योत रल जाया। माटी माटी होई एक, रोवन हारे की कमन टेक।

जप नाथ दिन रह नाई तेरी खिंथा दो दिहाई रहाओ। गहरी बिपूत लाए बैठा ताड़ी मेरी तेरी मुंद्रा तारी। मांगै टूका तृप्त ना आवै नाथ छोड़ जाचे लाज ना आवै। चल चित जोगी आसन तेरा सिंगी वाजै नित उदासेरा। गुर गोरख की तै बूझ ना पाई फिर जोगी आवै जाई। जिसनो होवा

संत हमारी निर्मल रास, संत हमारा राखिया पड़दा, संत प्रसाद मोए कबू ना करदा, संत संग दिया कृपाल, संत सहाई पय दयाल, सुरत मत।

ताप कपट खुलाने भ्रम नाठे दूरे नानक कौ गुर पेटे पूरे। राम कली महला पंजवां कोट जापता विश्राम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनक रूप रंग भोग रसै गुरमुख नाम निमख हृदय वसै हर के नाम की वडियाई कीमत कहण न जाई रहाओ। सूर बीर तीरज मत पूरा सहिस मातुन गहर गंभीरा सदा मुक्त ताके पूरे काम जा कर दे वसे हर नाम। सगल सुख या नांद्या रोग समदर्शी पूर

रहाओ जब उसको कोई देवे मान तब आपस ऊपर रखे गुमान। जब उसको कोई मन पर हरे तब यो सेवक सेवा करे मुख बेरावे अंत ठगावे एक ठौर ओ कई ना सुमावे। उन मोहे बहुते ब्रह्मंड राम जनी कीनी खंड खंड जो मांगे सो भूखा रह इस संग राचे सो कछु ना लह। ऐसे त्याग सत्संगत करे वडभागी नानक हो तरह। राम कली महला पंजवां आत्म राम सर्व मैं पेख पूर्ण पूर रहा प्रभ एक। रत्न मोल हृदय मैं जान अपनी वस्तु पछान पी अमृत संतन प्रसाद। वड़े भाग होवे तो पाइए बिन जेवा क्या जाने स्वाद। रहाओ अठ दस वेद सुने कह डोरा कोट प्रगास ना दिसे अंधेरा। पशु प्रीत का संग रचे जिसने बुझावे सो कित बिद बुझे। जानन हार रहया प्रभ जान ओत पोत भगतन संगान। बिगस बिगस अपना प्रभ गावे नानक तिन जम नेण न आवे। राम कली महला पंजवा दीनो नाम कियो पवित हर तन रास निरास ए बित। काटी बंध हर सेवा लाए हर हर भगत राम गुण गाए। बाजे अनहद बाजा रसक रसक गुण गावे हर जनो अपने गुरुदेव निवाजा। रहाओ आए बनयो पूर्वला भाग।

सदा आनंद न होवी सोग, कबू न व्यापै हमै रोग। खोजो संतो हर ब्रह्म ज्ञानी, बिस्मन बिस्म भय बिस्मादा। परमगत पावै हर सिमर प्राणी रहाओ। गन मिन देखो सगल विचार, नाम बिना को सकै ना तार। सगलो पावना चल संग, पव जल तरिय।

मिट जाए कर कृपा पार ब्रह्म दयाल मानते कबो न विसर गोपाल तेरे दास की हो मातूर नानक की प्रभ सरदा पूर राम कली महल्ला पंजवा तेरी शरण पूरे गुरुदेव तुझ में दूजा नाहीं कोए तू समरथ पूर्ण पार ब्रह्म सो त्याए पूरा जिस कर्म तरण तारण प्रभ तेरो नाओ एका शरण गही मन मेरा तुझ बिन दूजा नाहीं ठाओ रहाओ जप जप जीवा तेरा नाओ आगे दरगे पावो ठाओ दुख अंधेरा मन ते जाए दुर्मत बिनसै रचै हर नाए चरण कमल स्यों लागी प्रीत गुरपुरे की निर्मल रीत पाओ पागा निरपव मन बसै अमृत नाम रसना नित जपै कोट जन्म के काटे फाहे पाया लाभ सच्चा तन लाहे तोट न आवै अखुट पंडार नानक भगत सोहै हर द्वार राम कली महला पंजवा रतन जिवे हर नाम सत संतोख ज्ञान सुख सहज दया का पोता हर भगता हवाले होता मेरे राम को पंडार खात खर्च कष्ट उठ न आवै अंत नहीं हर पारावार रहाओ कीर्तन निर्मोल कहीरा आनंद गुणी गहीरा अनहद बाणी पूंजी संतन हथ राखी कुंजी सुन समाद गुफा तय आसन केवल ब्रह्म पूर्ण तय बासन भगत भगत संग प्रभ गोष्ट करत तय हरख ना सोग ना जन्म ना मरत कर कृपा जिस आप देवाया साध संग तिन हर तन पाया दयाल पुरख नानक अरदास हर मेरी वर

अवतार न जाने अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत, अपनी गाते आप जाने, सुन सुन अवर वखाने रहाओ, संकरा नहीं जाने पेव, खोज तहारे देव, देविया नहीं जाने मर्म, सभी ऊपर अलख पार ब्रह्म, अपना रंग करता केलो, आप बिछोरे आपे मेल, एक परमे एक भक्ति लाए, अपना किया आप जनाए, संतन की सुन साची साखी, सो बोले जो पेखे आखी, नहीं लेप तिस्पुन्ना पाप, नानका प्रभ आपे आप, राम कली महला पंजवा, किशु काजना कियो जान, सुरत मत नाही किश ज्ञान, जाप ताप सील नहीं धर्म, किशु ना जानो कैसा कर्म, ठाकुर प्रीतम प्रभ मेरे, तुझ बिन दूजा अवर ना कोई, भूले चूके प्रभ तेरे रहाओ, रिद ना बुद्ध ना सिद्ध प्रगास, बिखे ब्याद के गाव में बास, करण हार मेरे प्रभ एक, नाम तेरे की मन में टेक, सुन सुन जीवो मन एहो विश्राम, पाप खंडन प्रभ तेरो नाम, तू अगंत जी का दाता, जिसे जनाम है तिन तू जाता, जो उपायो तिस तेरी आस, सगला राधा है प्रभ गुणतास, नानक दास तेरे कुर्बान, बेअंत साहेब मेरा मेहरबान, राम कली महला पंजवा, रखन हर दयाल, कोट पव खंडे निमख ख्याल, सगल अराधय जंत, मिलिया प्रभ गुर मिलमंत, जियन को दाता मेरा प्रभ, पूर्ण परमेश्वर स्वामी, घट घट राता मेरा प्रभ रहाओ, ताकि गही मन ओट, बंधन ते होई छोट, हृदय जप परमानंद, मन माहे पय आनंद, तारण तरण हर शरण, जीवन रूप हर चरण, संतन के प्राण आधार, ऊचे ते ऊचे अपार, सुमत सार।

सगल सियान पिछाड़ कर सेवा सेवक साज अपना आप सगल मिटाए मन चिंदे से ही फल पाए हो सावधान अपने गुर स्यों वासा मनसा पूर्ण होवे पावे सगल निधान गुर स्यों रहाओ दूजा नहीं जाने कोए सतगुर निरंजन सोए मानुख का कर रूप न जान मिली न माने मान गुर की हर टेक टकाए अवरे आसा सब लाहे हर का नाम मांग निधान ता दरगह पावे मान गुर का बचन जप मंत एहा भगत सार तत् सतगुर पै दयाल नानक दास निहाल राम कली महला पंजवा होवे सोई पहलमान अपना तजा मान दिन रहन सदा गुण गाओ पूर्ण ही सो आओ आनंद कर संत हर जप छाड़ सियाणप बहु चतराई गुर का जप मंत निर्मल रहाओ एक की कर आस भीतर निर्मल जप नाम हर हर गुर के चरण नमस्कार भवजल उतरे पार देवन हार दा तार अंतना पारा वार जाके कर सर्ब निदान रखन हार निदान नानक पाया एहो निदान हरे हर निर्मल नाम जो जपे तिसकी गत होए नानक कर्म प्राप्त होए रामकली महला पंजवा दुलभ देह सवार जाए ना दरगह हार हलत पलत तुदोए वड्याई अंत की बेला ले छड़ाई राम के गुण गाओ हालत पलत होहे दो है सुवेले अचरज पुरख ते आओ रहाओ उठत बैठत हर जाप बिनसह सगल संताप बैरी सब होवे मीत निर्मल तेरा होवे चीत सब ते उत्तमे हो कर्म सगल धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर सिमरन तेरा होए उधार जन्म जन्म का उतरै पार पूर्ण तेरी होवे आस जमकी कटिया तेरी फास गुर का उपदेश सुनीजै नानक सुख सहज।

बूढ़त लोहो साध संग तरह नानक छा प्राप्त करै। रामकली महला पंजवा मन माहे जा भगवंत गुरपुरै हो दीनो मंत मिटे सगल पैतरास पूर्ण होई आस सफल सेवा गुरदेवा कीमत किश कहण ना जाई साचे साचा लाखा पेवा रहाओ। करन कराम ने आप तिस को सदा मन जाप तिसकी सेवा करनी तो सच सहि सुख पावे मीत। साहेब मेरा अत भारा खिन मैं था प्यो था पनहारा तिस बिन अवर ना कोई जन का राखा सोई। कर कृपा अरदास सुनी जय अपने सेवक को दर्शन दी जय नानक जापी जब जाप सब ते ऊजा का प्रताप। राम कली महला पंजवा बिरथा प्रवासा लोक ठाकर प्रभ तेरी टेक अवर छूटी सब आस अचिंत ठाकर भेटे गुणतास। एको नाम त्याय मन मेरे कार्य तेरा होवे पूरा हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ। तुम ही कारण करण चरण कमल हर शरण मन तन हर ओही ते आया आनंद हर रूप दिखाया। तिस ही की ओर सदीव जाके कीने है जीव सिमरत हर करत निदान रखन हार निदान। सर्व की रेण हो बीजै या मिटाए मलीजै अंदिन त्याई नाम सफल नानक हो काम। राम कली महला पंजवा कारण करन करीम सर्व प्रतपाल रहीम अल्लै लाख्या पार खुद खुदाए वड बेसुमार। ओ नमो भगवंत गुसाई खालक रव रया सर्व ठाई रहाओ। जगनाथ जग जीवन माधो पौ पंजन रिद माया राधो रिखी केस गोपाल गोविंद पूर्ण सर्वत्र मुकंद।

झूठ ना पावस पाखंड की न बिन गुर शब्द नहीं कर बार नानक गुरमुख तत् विचार। आराम कली महला पहला ज्यों आया त्यों जावै बौरे ज्यों जन्मे त्यों मरण पया ज्यों रस भोग किए तेता दुख लागै नाम विसार पव जल पाया तन तन देख तो गर्भ गया कनक काम निस्यों हेत वधाए हे की नाम विसार आए भरम गया रहाओ। जत सत संजम सील ना रखिया प्रेत पिंजर में काष्ट पाया पुन दान इस ना ना संयम साध संगत बिन बाज जाया लालच लागे नाम बिसारियो। आवत जावत जन्म गया जा जमत आए केस गहे मार सुरत नहीं मुख काल गया अहनिस निंदा तात पराई हृदय नाम ना सर्व दया बिन गुर शब्द ना गद पत पावे राम नाम बिन नरक गया। खिर मैं वेस करे नटुआ ज्यों मोह पाप मैं गलत गया इत्युत माया देख पसारी मोह माया कै मगन पया।

सुख संपत को आवत देख सागत मानो अवमान पाया जिसका हो तन तन सो फिर ले वै अंतर सहसा दुख पाया अंतकाल के साथ ना चल जो दिस है सब तिस है माया आदि पुरख परंपर सो प्रभ हर नाम हृदय लै पार पाया मुए कौ रोवै एक सह सुनावै पैसा गिर असराल पाया देख कुटुंब माया गृह मंदर साकत जंजाल पराल पाया जाए आए ता तने पठाए चाले तने बुलाए लया जो कुछ करना सो कर रहे आ बख्शन हारे बख्श लया जिने हो चाखिया राम रसायण तिन की संगत खोज पाया रिद सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया मुक्त पदार्थ शरण पाया दुख सुख गुरमुख सम कर जाना हर सोख ते ब्रगत भया आप मार गुरमुख हर पाए नानक सहि समाए लया आराम कली दखनी महला पहला जत सत संजम साज दृढ़ाया सा शब्द रस लीना मेरा गुरदयाल सदा रंग लीना अहनस रह एक लिव लागी साचे देख पतीना रहाओ रह गगनपुर दृष्ट समय सुर अनहद शब्द रंगीना सत बंद कुपीन भरपुर लीना जेवा रंग रसीना मिले गुर साचे जिन रच राचे किरत विचार पतीना एक मैं सर्व सर्व मैं एका एह सतगुर देख दिखाई जिन की ए खंड मंडल ब्रह्मंडा सो प्रभ लिखन ना जाई दीपक ते दीपक प्रगासिया त्रिपवन ज्योत दिखाई सच्चा तखत सच महली बैठे निरपव ताड़ी लाई मोहे गया बैरागी जोगी कट कट किंगरी वाई नानक शरण प्रभु की छूटे सतगुर सच सिखाई राम कली महला पहला औहठ हस्त मड़ी कर छाया तरन गगन कल तारी गुरमुख केती शब्द उधारी संतो रहाओ ममता मार हूं मैं सुख त्रिपवन जो तुम्हारी मनसा मार मने मैं राख सतगुर शब्द विचारी सिंगी सुरत अनाहद वाजै घट घट जो तुम्हारी परपंच बेण तही मन राखिया ब्रह्म अगर पर जारी पंच तत् मिल अहनस दीपक निर्मल ज्योत अपारी रव सस लौके होतन किंगरी वाजै शब्द निरारी शिव नगरी मैं आसन औदू अलख अगम्य पारी काया नगरी यह मन राजा पंच वसै विचारी शब्द रवै आसन कर राजा अदल करे गुणकारी काल बिकाल कहे कहे बपरे जीवत मुआ मन मारी ब्रह्मा विष्णु महेश एक मूर्त आपे करता कारी काया सोध तरै पव सागर आत्म तत् विचारी गुरसेवा तेसदा सुख पाया अंतर शब्द रव्या गुणकारी आपे मेल लय गुणदाता हों मैं तृष्णा मारी त्रै गुण मेटे चौथे वरतै इहा भगत निरारी गुरमुख जोग शब्द आत्म चीनै हृदय एक मुरारी मनुआ अस्त्र शब्दे राता एहा करनी सारी वेद बाद ना पाखंड औदू गुरमुख शब्द विचारी गुरमुख जो कमावै औदू जत सत शब्द विचारी शब्द मराए मन मारे औदू जोग जुगत विचारी माया मोह पवजल है अवदू शब्द तरै कुल तारी शब्द सूर जुगचारे उधारे शब्द सूर जुगचारे औदू बाणी भगत विचारी एह मन माया मोया औदू निकसै शब्द विचारी आपे बख्शे मेल मिलाए नानक शरण तुम्हारी राम कली महला तीजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद
ਸਰਮੈ ਦੀਆ ਮੁੰਦਰਾ ਕੰਨੀ ਪਾਏ ਜੋਗੀ ਖਿੰਥਾ ਕਰ ਤੂੰ ਦਇਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਬਭੂਤ ਲਾਏ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਤੀਨ ਪਵਣ ਜਣ ਲਿਆ ਐਸੀ ਕਿੰਗਰੀ ਵਜਾਏ ਜੋਗੀ ਜਿਤ ਕਿੰਗਰੀ ਅਨਹਦ ਵਾਜੈ ਹਰ ਸਿਉ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਏ ਰਹਾਉ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਪਤ ਕਰ ਝੋਲੀ ਜੋਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਭੁਗਤ ਪਾਈ ਧਿਆਨ ਕਾ ਕਰ ਡੰਡਾ ਜੋਗੀ ਸਿੰਘੀ ਸੁਰਤ ਵਜਾਈ ਮਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਆਸਣ ਬੈਸ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕਲਪਨਾ ਜਾਈ ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਚੜ੍ਹੈ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਨਾਮ ਪੱਲੈ ਪਾਈ ਇਤ ਕਿੰਗਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਜੋਗੀ ਨਾ ਸਚ ਪੱਲੈ ਪਾਏ ਇਤ ਕਿੰਗਰੀ ਸਾਂਤ ਨਾ ਆਵੈ ਜੋਗੀ ਅਵਮਾਨ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ

पंडी हुक्म बुझै सो योगी कहिया एक स्यों चित लाए सहसा टूटै निर्मल होवै जोग जुगत इव पाए नदरी आवंदा सब किश बिनसै हर से ती चित लाए सतगुर नाल तेरी भावनी लागै ता एह सोजी पाए एहो जोग ना होवै जोगी जे कुटुंब छोड़ पर पवन करै ग्रह शरीर में हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रबल है एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी इसमें रोग वड्डा तृष्णा माया अनेक जतन पेख करै जोगी रोग ना जाए गवाया हर का नाम औखद है जोगी जिसनो मन वसाए गुरमुख होवै सोई बूझै जो जुगत सो पाए जोगै का मार्ग बिखम है जोगी जिसनो नदर करे सो पाए अंतर बाहर एको वेखै विचों परम चुकाए विण वजाई किंगरी वाजै जोगी सा किंगरी वजाए कह नानक मुक्त होवै जोगी साचे रहै समाए राम कली महला तीजा भगत खजाना गुरमुख जाता सतगुर बूझ बुझाई संतो गुरमुख दे वड़ियाई रहाओ सच रहो सदा सहज सुख उपजै काम क्रोध विचों जाई आप छोड़ नाम लिव लागी ममता शब्द जलाई जिसते उपजै तिसते बिनसै अंते नाम सिखाई सदा हजूर दूर न देखो रचना जिन रचाई सच्चा शब्द रवै कट अंतर सच्चे सो लिव लाई सतसंगत में नाम निर्मोलक वड्डे पाग पाया जाई भरम ना चुकाओ सतगुर सेवाओ मन रखो इकठाई बिन नाम ऐसा पूली फिरदी बिरथा जन्म गवाई जोगी जुत गवाई हंडै पाखंड जोग ना पाई शिव नगरी में आसन बैसै गुरसबदी जोग पाई तातर बाजी शब्द निवारे नाम वसै मन आई एहो शरीर सरवर है संतो इशनान करे लिव लाई नाम इशनान करै से जन निर्मल शब्दे मैल गवाई त्रै गुण अचेत नाम चेतै नाही बिन नामै बिन सजाई ब्रह्मा विष्णु महेश त्रै मूर्त त्रै गुण परम पुलाई गुर प्रसादी त्रिगुटी छूटै चौथै पद लिव लाई पंडित पढ़ै पढ़वाद वखाणै तिन्ना बूझ न पाई बिखिया माते परम पुलाए उपदेश कह किस पाई भगत जना की उत्तम बाणी जुग जुग रही समाई।

मनसा मार मन सह समाणा बिन रसना उस्तत कराई, लोयन देख रहे बिस्मादी चेता दिष्ट लगाई। अदिष्ट सदा रहे निरालम ज्योति ज्योत मिलाई, हाँ गुरसा लाही सदा अपना जिन साची बूझ बुझाई। नानक एक है बेनंती नाम गत पत पाई, राम कली महला तीजा हर की पूजा दुलंब है संतो कहना कछु न जाई। संतो गुरमुख पूरा पाई नामो पूज कराई रहाओ, हर बिन सब किश मैला संतो क्या हो पूज चढ़ाई। हर साचे पावे सा पूजा होवे पाणा मन वसाई, पूजा करे सब लोग संतो मन मुक्ताए ना पाई। शब्द मरै मन निर्मल संतो एह पूजा थाए पाई। पवित्र पावन से जन साचे एक शब्द लिव लाई, बिन नामै होर पूजना होवी भरम भुली लोकाई। गुरमुख आप पछाणै संतो राम नाम लिव लाई, आपे निर्मल पूज कराए गुर शब्दी थाए पाई। पूजा करै पर विद नहीं जाने दूजे पाए मल लाई, गुरमुख होवै सो पूजा जाने पाणा मन वसाई। पाणे ते सब सुख पावै संतो अंते नाम सखाई, अपना आपना पछाणै संतो कूड़ करै वड्याई। पाखंड कीने जम नहीं छोड़ै लै जासी पत गवाई, जिन अंतर शब्द आप पछाणै गत मित तिन ही पाई। एहो मनुआ सुन समाद लगावै ज्योति ज्योत मिलाई, सुन सुन गुरमुख नाम वखाणै सतसंगत मिलाई। गुरमुख गावै आप गवावै दर साचै शोभा पाई, साची बाणी सच वखाणै सच नाम लिवलाई। पै भंजन अत पाप निखंजन मेरा प्रभ अंत सिखाई, सब किछ आपे आप वरतै नानक नाम वड्याई। राम कली महला तीजा हम कुचल कुचील अत अभिमानी, मिल सबदे मैल उतारी संतो गुरमुख नाम निस्तारी। सच्चा नाम वस्या कट अंतर करतै आप सवारी रहाओ, पारस परसे फिर पारस होए हर जीव अपनी कृपा तारी। एक भेख करै फिर अभिमानी तिन जुए बाजी हारी, एक आंदन भगत करै दिन राती राम नाम उर तारी। आंदन राते सहजे माते सहजे हों मैं मारी, पै बिन भगत ना होई कभी पै पाए भगत सवारी। माया मोह शब्द जलाया ज्ञान तत् बिचारी, आपे आप कराए करता आपे बख्श भंडारी। तिस क्या गुणा का अंत ना पाया हों गावा शब्द विचारी। हर जियो जपी हर जियो सा लाही विचों आप निवारी, नाम पदार्थ गुरते पाया खुट सचे भंडारी। अपनिया भगतां नूं आपे तुठा अपनी किरपा कर कल तारी। तिन साचे नाम की सदा भुख लागी गावन शब्द विचारी। जियो पिंड सब किश है तिसका आखण बिख विचारी, शब्द लगे से जन निस्तरे पौजल पारे उतारी। बिन हर साचे को पार ना पावै बूजे को विचारी, जो तुर लिखिया सोई पाया मिल हर शब्द सवारी। काया कंचन शब्दे राती साचै नाए प्यारी, काया अमृत रही पर पूरे पाइय शब्द विचारी। जो प्रभ खोजै से ही पावै होर फूट मोए हंकारी, बादी बिनसै सेवक सेवै गुर कै हित प्यारी। सो जोगी तत् ज्ञान विचारे हम मैं तृष्णा मारी, सतगुर दा

अवर न कर ना जाई, आपे साजे सृष्टि उपाए सिर सिर धंधा लाई, तिसे श्री वो ता सुख पावो सतगुर मेल मिलाई। अपना आप्यो पाए अलख न लखना जाई, आपे मार्जी वाले आपे तिसनो तिल ना तुमाई,

राम कली महला पंजवा जी जंत सब पेखिए प्रभ सगल तुम्हारी धारणा एहो मन हर के।

काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बिदारणा। नाम जपत मन निर्मल होवे सुखे सुख गुदारना। भगत सरण जो आवे प्राणी तिस इहां उहां ना हारना। सुख दुख इस मन की बिरथा तुम ही आगे सारना। तू दाता सबना जिया का अपन किया पालना। अनक बार कोट जन ऊपर नानक वन्य वारना। राम कली महला पंजवा अष्टपदी एको ओंकार सतगुर प्रसाद। दर्शन पेटत पाप सब नासै हर स्यों दे मिलाई। मेरा गुर परमेसर सुखदाई पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए अंते होए सखाई। रहाओ सगल दुख का डेरा पन्ना संत धूर मुखलाई। पतत पुनीत की अखन पीतर अज्ञाना देर वंजाई। करण कारण समरथ स्वामी नानक ते शरणाई। बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाए एक शब्द लिवलाई। अंधकूप बिखिया ते काढ़ियो सात शब्द बने आई। जन्म मरण का सहसा चूका बाहुड़ कतो ना ताई। नाम रसायण एहो मन राता अमृत पी त्रिपताई। संत संग मिल कीर्तन गाया निचल वस्या जाई। पूरे गुर पूरी मत दीनी हर बिनयान ना पाई। नाम निधान पाया वड भागी नानक नरक ना जाई। काल सियाणप उकतना मेरी पूरे गुरु कमाई। जप तप संजम सोच है सोई आपे करे कराई। पुत्र कलत्र महा बिखिया मैं गुर सच लाए।

लभ लोभ अहंकार ता तृष्णा बहुत नाही बोलना खन्यो तिखी वालो निकी एत मार्ग जाना गुरप्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना समाणी कहे नानक चाल भगता जुगो जुग निराली ज्यो तू चलाए हे तिव चले स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे जिव तू चलाए हे तिवै चल है जिन्ना मार्ग पावहे कर कृपा जिन नाम लाए हे से हर हर सदा त्यावहे जिसनों कथा सुना है अपनी से गुरुद्वारे सुख पावहे कहे नानक सच्चे साहेब जो पावै तिवै चलावहे एहो सोहेला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहेला सतगुरु सुनाया एहो तिन कै मन वसिया जिन तुरों लिखिया आया एक फिरै कनेरे करे गल्ला गली कने ना पाया कहे नानक शब्द सोहेला सतगुरु सुनाया पवित होए सेजना जिनी हर त्याया हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया पवित माता पिता कुटुंब सहित स्यों पवित संगत सवाईया कहिंदे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया कहे नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया करमी सहज ना उपजै विण सहजै सहसा ना जाए नह जाए सहसा कितै संजम रहे कर्म कुमाए सहस जियो मलीन है कित संजम तोता जाए मन तोहवो शब्द लागो हर स्यो रहो चित लाए कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै एहो सहसा इव जाए।

राम कली सद एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगदाता सोए भगत वछलते होलोए जियो गुर शब्द समावे अवर ना जाने कोए जियो अवरो ना जाने शब्द गुर कै एक नाम ते आवे प्रसाद नानक गुरु अंगद।

जगदीश इस गोपाल माधो गुण गोविंद विचारी है, बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरैन चितारी है, चरण कमल आधार जन का आसरा, माल मिलख पंडार नाम अनंत तरा, नाम नरहर निधान जिनके, रस भोग एक नारायणा, रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास्ते आयना, किल विखहरना नाम पुनः चरना, नाम जम की त्रास हरा, बिनवंत नानक रास जन की चरण कमल आसरा, गुण बेअंत स्वामी तेरे कोय न जान नहीं, देख चलत दयाल सुन भगत वखान नहीं, जी जंत सब तो इतिहाव है पुरख पत परमेसरा, सर्व जाच के एक दाता करना मैं जगदीसरा, साधु संत सुजान सोई जिसै प्रभ जी मान नहीं, बिनवंत नानक करो कृपा सोए तुझे पिछान नहीं, मोहे निर्गुण अनाथ सरनी आया, बल बल बल गुरदेव जिन नाम दृढ़ाया, गुर नाम दिया कुशल थिया सर्व इच्छा पुनिया, जलने बुझाई सांत आई मिले चिरी विशुन्या, आनंद हरख सह साचे महामंगल गुण गाया, बिनवंत नानक नाम प्रभ का गुर पूरे ते पाया, राम कली महला पंजवा, रुण चुनो शब्दा लाहद नित उठ गाइय संतन कै, केलविक सब दुख बिनासनो हर नाम जपिय गुरमंतन कै, हर नाम लीजे अम्यो पीजे रहन दिन सहारा दिए, जोग दाना नेक किरिया लग चरण कमल ऐसा दिए, पाओ भगत दयाल मोहन दुख सगले पर हरै, बिनवंत नानक तरै सागर त्याए स्वामी नर हरै, सुख सागर गोबिंद सिमरन भगत गावे गुण तेरे राम, आनंद मंगल गुरचरणी लागे पाए सुख कनेरे राम, सुख निदान मिलिया दुख हरिया कृपा कर प्रभ राखिया, हर चरण लागा परमपो पागा हर नाम रसना पाखिया, हर एक चितवै प्रभ एक गावै हर एक दृष्टि आया, बिनवंत नानक प्रभ करी कृपा पूरा सतगुर पाया, मिल रही है प्रभ साध जना मिल हर कीर्तन सुनिए राम, दयाल प्रभु दा मोदर माधो अंत न पाइए गुनिए राम, दयाल दुख हर शरण दाता सगल दुख निवारणो, मोह सोग विकार बिखड़े जपत नाम उदाहरणो, सब जी तेरे प्रभु मेरे कर कृपा सब रेण थीवा, बिनवंत नानक प्रभ मया कीजे नाम तेरा जप जीवा, राख लिए प्रभ भगत जना अपनी चरनी लाए राम, आठ पहर अपना प्रभ सिमरै एको नाम त्याए राम, त्याए सो प्रभ तरे पव जल रहे अवन जाना, सदा सुख कल्याण कीर्तन प्रभ लगा मीठा पाना, सब इच्छ पुनियास पूरी मिले सतगुर पूरिया, बिनवंत नानक प्रभ आप मेले फिर नाही दुख विसूरिया, राम कली महला पंजवा शंत सलोक चरण कमल शरणागति आनंद मंगल गुणगाम, नानक प्रभ आराधी है विपत निवारण राम, शंत प्रभ विपत निवारण तिस बने अवरना कोए जियो, सदा सदा हर सिमरी है जल थल महियल सोए जियो, जल थल महियल पूर रहया एक निमख मनो न विसरै, गुरचरण लागे दिन सुभागे सर्ब गुण जगदीसरै, कर सेव सेव को दिन सरैनी तिस पावै सोहे जियो, बल जाए नानक सुखै दाते प्रगास मंतन होए जियो, सलोक हर सिमरत मंतन सुखी बिनसी दुतिया सोच, नानक टेक गोपाल की गोविंद संकट मोच, शंत पै संकट काटे नारायण दयाल जियो, हर गुण आनंद गाए प्रभ दीना नाथ प्रतपाल जियो, प्रतपाल अचित पुरख एको तिसै सिव रंग लागा, कर चरण मस्तक मेल लीने सदा यंदन जागा, जियो पिंड गृह थान तिसका तन जोमन तन माल जियो, सद सदा बल जाए नानक सर्ब जिया प्रतपाल जियो, सलोक रसना उचरै हर हरे गुण गोविंद वखियान, नानक पकड़ी टेक एक परमेसर रखै निदान, शंत
सो स्वामी प्रभ रख को अंचल ता कै लाग जियो, पज साधु संग दयाल देव मन की मत त्याग जियो। एक ओट की जय जियो दी जय, आस एक तरनी तरे, साध संगे हर नाम रंगे, संसार सागर सब तरे। जन्म मरण बेकार छूटे, फिर ना लागे दाग जियो। बल जाए नानक पुरख पूर्ण, थिर जा का सोहाग जियो। सलोक धर्म

महागर्भ मुठिया जलबाज मछली तड़फड़ावे संग माया रुठिया कर पाप जोनी पै पीत होई दे ससन जाम जियो बिनवंत नानक ओढ़ तेरी राख पूर्ण काम जियो सलोक सरदा लागी संग प्रीत मैं एक तिल रहन ना जाए मन तन अंतर रव रहे नानक सह सुभाए कर गैलीनी सजने जन्म जन्म के मीत चरने दासी कर लई नानक प्रभित चीत शंत रुत बरस सुहेलिया सावन भादवे आनंद जियो कण उन्म उठे जल थल पूरिया मकरंद जियो प्रभ पूर रहया सर्ब ठाई हर नाम नवनित गृह भरे सिमर स्वामी अंतर जामी कुल समूहा सब तरे प्रेरंग जागे ने शिदर लागे किरपाल सद बख्शेंद जियो बिनवंत नानक हर कंत पाया सदा मन पावंद जियो सलोक आस प्यासी मैं फिराऊं कब पेखां गोपाल है कोई साजन संत जानो नानक प्रभ मिलनहार बिन मिल बे सांत ना उपजै तिल पलो रहन ना जाए हर साधे शरणागति नानक आस पुजाए शंत रुत सर्द अडंबरो असू कतके हर प्यास जियो खोजंती दर्शन फिरत कब मिलिए गुणताह जियो बिनकंत प्यारे ने सूख सारे हार कंगण त्रिग बना सुंदर सुजान चतर बेती सास बिन जैसे तना ईत ओत दह दिस्या लोकन मन मिलन की प्रभ प्यास जियो बिनवंत नानक तार कृपा मिलो प्रभ गुणताह जियो सलोक जलन बुझी शीतल पए मन तन उपजी सांत नानक प्रभ पूर्ण मिले दुतिया बिनसी प्रांत साध पठाए आप हार हम तुमते नाही दूर नानक भ्रम पै मिट गए रमन राम भरपूर शंत रुत सिसियर शीतल हर प्रगटे मंगर पोहे जियो जलन बुझी दर्श पाया बिन से माया त्रोह जियो सब काम पूरे मिल हजूरे हर चरण सेवक सेवया हार डोर सिंगार सब रस गुण गाओ लाखा पेवया पाओ भगत गोविंद बांशत जमना साकै जोहे जियो बिनवंत नानक प्रभ आप मेली तहना प्रेम बिश हो जियो सलोक हर तन पाया सोहागणी डोलत नाही चीत संत संजोगी नानका गृह प्रगटे प्रभ मीत नाद बिनोद आनंद कोड प्रे प्रीतम संग बने मन बाइथ फल पाया हर नानक नाम पर।

ओंकार शब्द उधरे ओंकार गुरमुख तरे ओ नम अखर सुनो विचार ओ नम अखर त्रिपवन सार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाओ सस्य सब जग सहज उपाया तीन पवन एक ज्योति गुरमुख वस प्राप्त हो वै चुन लै मानक मोती समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै अंत निरंतर साचा गुरमुख देखै सा समाले बिन साचे जग काचा तदै धर्म धरे धर्मापुर गुणकारी मन तीरा तदै तूल पड़े मुख मस्तक कंचन पहे मनूरा तन तरनी तर आप जोनी तोल बोल सच पूरा करते की मित करता जाने कह जाने गुरसूरा ज्ञान गवाया दूजा पाया गर्भ गले बिख खाया गुरस गीत बाद नहीं पावे सुनिए गहर गंभीर गवाया गुर सच कहया अमृत लहया मंतन साज सुखाया आपे गुरमुख आपे देवे आपे अमृत पी आया एको एक कह सब कोई हम मैं गर्भ व्यापै अंतर बाहर एक पछाण इं कर महर सियापै प्रभ नेड़े हर दूर न जान हो एको सृष्ट सवाई एक अंकार अवर नहीं दूजा नानक एक समाई इस करते कहो क्यों गह राखो अफरियो तुल्यो न जाई माया के देवाने प्राणी झूठ गौरी पाई लब लोभ मोहताज विगूते इब तब फिर पछताई एक सिरे वै ता गतमित पावै आवन जान रहाई एक आचार रंग एक रूप पौन पानी अग्नि अस्वरूप एको पवर पवै तिहो लोए एको बूझै सूझै पत होए ज्ञान ध्यान ले समसर रह गुरमुख एक विरला कोल है जिसनों दे कृपा ते सुख पाए गुरु द्वारे आग सुनाए ऊरम तूरम ज्योति उजाला तीन पवन मैं गुर गोपाला ऊग व्या असरूप दिखावै कर कृपा अपने कर आवै ऊन बरसै निजर तारा उत्तम शब्द सवारण हारा इस एक का जाने पे ओ आपे करता आपे दे उगवै सूर असर संघार है उच्चो देख शब्द विचार है ऊपर आद अंत तिहो लोए आपे करे कथै सुने सोए ओह विधाता मन तन दे ओह विधाता मान मुख सोए प्रभ जग जीवन अवर ना कोए नानक नाम रते पत होए राजन राम रवै हितकार रण में लूजै मनुआ मार राधनंत रह रंगराता तीन पवन जुग चारे जाता जिन जाता सो तिसी जेहा अत निर्मायल सिज सेहा रैसी राम हृदय कपाए अंतर शब्द साच लिवलाए रोस ना कीजै अमृत पीजै रहन नहीं संसारे राजे राय रंक नहीं रहना।

चेतन नित नीत चिंतत ही दिशा सब कोए, चेता एक तही सभोए चित्त वसै राचै हरनाए मुक्त भया पथ।

बंधन काट मुक्त करयाण है। छाया छूछी जगत पुलाना, लिखिया किरत तुरे परवाना। छीजे जोबन जरुआ सिरकाल, काया छीजे पई सिवाल। जापै आप प्रभु तेह लोए, जुग जुग दाता अवर न कोए। ज्यो पावे त्यो राखै राख, जस जाचौ देवै पत साख। जागत जाग रहा तुद पावा, जा तू मेले ता तुझे समावा। जय जयकार जपो जगदीश, गुरमत मिलिया बीसा कीस। चख बोलन क्या जग स्यों वाद, चूर मरे देखे प्रमाद। जन्म मुए नहीं जीवन आसा, आए चले पहे आस निरासा।

पन पन कड़ी है घड़ घड़ भजै टाहे उसार उसरे टाह सर पर सुख है पी पर पुख है समर्थ वे परवाह है भरम भुलाने पय दिवाने विण भागा क्या पाई है गुरमुख ज्ञान डोरी प्रपकड़ी जिन खिंचै तिन जाई है हर गुण गाए सदा रंग राते बहुण न पछो ताई है पब्बै पालै गुरमुख बूजै तनिज कर वासा पाई है पब्बै पौजल मार्ग विखड़ा आस निरासा तरी है गुर प्रसादी आपो चीनै जीवत्या इव मरियै माया माया कर्म ए माया किसै ना साथ हंस चलै उठ डुमण माया पूली आथ मन झूठा जम जो

गुणिया गुण ले प्रभ मिले क्यों तन मिलो प्यार तिन्ही जैसी थी रहा जप जप हृदय मुरार अवगुणी भरपूर है गुण पी वसै नाल विण सतगुर गुण ना जपनी जिचर शब्द ना करे विचार लस्करिया कर संभले आए वजो लिखाए कार कमावै सिर तनी लाहा पल्ले पाए लब लो बुरियाइया छोडे मनो विसार गढ़ दोही पातशाह की कदे ना आवै हार चाकर कहिए खसम का सहोए उत्तर दे वजो गवाए अपना तख्त ना बैसै से प्रीतम हथ वड्याइया जय पावै तै दे आप करे किसे आखिए अवरना कोई करे बीजो सूजै को नहीं बह दुली चा पाए नरक निवारण नर नर साचो साच नाए वन त्रिण ढूंढत फिर रही मन में करो विचार लाल रतनी लाल रतन बहुमान की सतगुर हाथ भंडार ऊतम होवा प्रभ मिले एक मन एक पाए नानक प्रीतम रस मिले लाहा लै परथाए रचना राच जिन रची जिन सिर आया कार गुरमुख बेअंत त्याई है अंत ना पारा वार राड़ै रूड़ा हर जियो सोई तिस्मिन राजा अवर ना कोई राड़ै गारड़ तुम सुनो हर वस है मन माहे गुर प्रसादी हर पाई है मत को परम पुलाहे सो साहो साचा जिस हर तन रास गुरमुख पूरा तिस्सा वास रूड़ी बाणी हर पाया गुरसब दी बीचार आप गया दुख कटिया हर वर पाया नार सोइना रूपा संची है तन का चा बिखशार साहो सदाए संच तन दुबदा होए खुआर सचियारी सच संचया साचो नाम अमोल हर निर्माइल उजलो पत साची सच बोल साजन मीत सुजान तू तू सरवर तू हंस साचो ठाकर मन वसै हम बलिहारी तिस माया ममता मोहनी जिन की ती सो जान बिखिया अमृत एक है बूझे पुरख सुजान खेमा में होने खप गए खून लख्या संख गणत ना आवै क्यों गणी खप खप मोए बिसंख खसम पछाण अपना खूले बंद ना पाए शब्द महली खरा तू खेमा सच सुख पाए खर्च खरा तन ध्यान तू आपे वसै शरीर मन तन मुख जापै सदा गुण अंतर मन तीर हम मैं खपै खपाए सी बीजो वथ विकार जंतो पाए विच पायन करता अलग अपार सृष्टे प्यो न जाने कोय सृष्टा करै सो निश्चय होए संपै कोई सिर त्याई है संपै पुरब लिखे की पाई है संपै कारण चाकर चोर संपै साथ न चाले होर बिन साचे नहीं दरगे मान हर रस पीवै छुटै निदान हेरत हेरत हे सखी होए रही हैरान हाँ हाँ करती मैं मुई शब्द रवै मन ज्ञान हार डोर कंकन कणे करथा की सिंगार मिल प्रीतम सुख पाया सगल गुणा गलहार नानक गुरमुख पाई है हर स्यों प्रीत प्यार हर बिन किन सुख पाया देखो मन विचार हर पढ़ना हर बुझना हर स्यों रखो प्यार हर जपिए हर ध्याइए हर का नाम आधार लेख ना मिटई हे सखी जो लिखिया कर